FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 अगस्त 2026। श्रोताओं, प्रातः के इस समय 5:57 होने को हैं। हमारा आज का ये प्रसारण अब आरंभ होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयंबटूर

श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।

0: में खेले गए 16वीं भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा, महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। दिन की बेहतरीन शुरुआत करने से पहले आइए साथियों वंदन अभिनंदन करें उस माटी का जिसका कण कण है पावन। कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए सुनिए देश वंदना।

समूह स्वर में अभी आपने सुनी देश वंदना, रचना शैलेंद्र की थी। आराधना कार्यक्रम में लीजिए पेश है अगला भक्ति गीत श्रेया घोषाल की आवाज में।

श्रोताओं, आराधना कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत लीजिए, सुनिए सूरदास की रचना जगजीत सिंह की आवाज में।

श्रोताओं, भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना की अंतिम प्रस्तुति हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरिओम व्यास की आवाज़ में।

0: ओम व्यास की आवाज में आराधना कार्यक्रम का ये था अंतिम भक्ति गीत, और इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए, पेश है खेती की बात कार्यक्रम के अंतर्गत टमाटर के उन्नत खेती के विषय में जानकारी। वाचन स्वर नंद कुमार यादव का है, लीजिए सुनिए।
1: किसान भाई हो बिहनिया के, राम राम, जय जोहार। संगवारी हो आज खेती की बात मा, लेके पहुंचे हवन टमाटर के उन्नत खेती के बारे मा जानकारी। संगवारी हो, हमन टमाटर ला आनी बानी के जिनिस बनाए बर उपयोग करथन। एकर ले हमन जूस, सूप, पाउडर, केचप अउ साग सब्जी मा सलाद के रूप मा घलौ उपयोग करथन, जौन मा अब्बड़ कन विटामिन ए, विटामिन सी अउ पोटेशियम के मात्रा पाए जाथे। संगवारी हो, एकर फसल के जौन उपज हे तेला बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एति बर बढ़िया ले लेथे। तो अवौ जानत हन कोन प्रकार के विधि ला चेत करके टमाटर के सुघ्घर उत्पादन ला हमन ले सकत हन। जलवायु बर 10 ले 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के आवश्यकता होते। माटी जौन हे तो अलग अलग माटी के किस्म मा एला हमन लगा सकत हन। फिर रेतीली, चिकनी, दोमट माटी, लाल माटी जेमा पानी के निकासी के व्यवस्था हर बढ़िया रहे, ओ भुइयां हर पताल के खेती बर सुघ्घर होते। माटी के जौन पीएच मान आए तेन हर 7.5 ले 8.5 रहना चाहिए। संगवारी हो, टमाटर के खेती करत हन तो एकर अब्बड़ कन किसम आथे जेला लगा के सुघ्घर लाभ ला ले सकत हन, जेमा पंजाब रत्ता, पंजाब छुहारा, पंजाब ट्रॉपिक, पंजाब उपमा, पंजाब चेरी, पंजाब रेड चेरी, ए नाव के किसम मन बढ़िया रहते। संगवारी हो, भुइया की तैयारी करे बर का करना है, 4 ले 5 पैत बढ़िया ले जोताई ला कर लेना है, जेकर ले जौन माटी है तेन हर भुरभुरा हो जावे। आखिरी जोताई के बेरा सरहा गलहा गोबर के खातु के संग मा कार्बोफ्यूरान 4 किलो ला प्रति एकड़ के दर ले, चाहे नीम के 8 किलो ला प्रति एकड़ के दर ले देना चाहिए। पनीरी के देखरेख करे बर और रोपण करे बर घलौ चेत रखे बर पड़थे। भुइयां ला माटी मा खुल्ला पहली छोड़ देवे, ओकर बाद नर्सरी मा बीजा ला 1.5 सेंटीमीटर के चौड़ा और 20 सेंटीमीटर के ऊंचा बेड मा लगावे। एकर बोवाई करे के जौन बेरा है तेन हर अभी के बेरा हर सुघर माने जाते, जेमा 60x30 सेंटीमीटर के, चाहे 75x60 सेंटीमीटर के, चाहे 75x75 सेंटीमीटर के दूरिया ला बढ़िया ले रख लेवाए। संगवारी हो, नर्सरी मा बीजा ला 4 सेंटीमीटर के गहिला मा लगाथन और माटी ले तोप देथन तो बने रही थे। 1 एकड़ के भुइया मा पनीरी लगाए बर 100 ग्राम बीजा के आवश्यकता होते। माटी ले होवैया जौन बीमारी है, किरवा मकोड़ा है, एकर बचाव करे बर थीरम 3 ग्राम ला, चाहे कार्बेंडाजिम 3 ग्राम ला प्रति किलो बीजा के दर ले उपचारित करके लगाथन तो सुघर रही। खातू माटी के घलौ चेत रखे बर पड़थे, जेमा सरहा गलहा गोबर के खातु ला 10 टन प्रति एकड़ के दर ले, नाइट्रोजन 60 किलो, फास्फोरस 25 किलोग्राम, पोटास 25 किलो प्रति एकड़ के दर ले उपयोग मा लाना चाहिए। खरपतवार के घलौ चेत रखे बर पड़थे, जेकर बर 2-3 पैत निंदाई गोड़ाई ला हाथ ले कर लेवे। ज्यादा होय मा हमन फ्लू क्लोरोलिन 800 मिलीलीटर ला प्रति 200 लीटर पानी के दर ले छींचा थन तो बढ़िया रही। ज्यादा जानकारी बर कृषि वैज्ञानिक के सलाह लेके फसल ला लगाथन तो उपज हर और आमदनी हर बढ़ते।

0: एकरे संग अही कहबो जैसे किसान तय लेहे देहे ओसे झोंक आशीष जी अन्न धन से तुहर घर भरे जुग जीव लाख बरिस जी। जय जोहार राम राम।
1: श्रोताओं नंद कुमार यादव के स्वर में अभी आप सुन रहे थे खेती की बात कार्यक्रम के अंतर्गत टमाटर के उन्नत खेती के विषय में जानकारी। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस कान। आवाजें हैं भूपेंद्र सिंह और महेंद्र कपूर की।

पतित पावनी गंगा का सुहावना तट, अशोक वृक्ष के नीचे कुश और कोमल पत्तों की साथरी पर श्री राम तथा सीता रात्रि विश्राम कर रहे हैं। प्रभु को धरती पर शयन करते देख निषादराज गुह का मन विषाद से भर जाता है। लक्ष्मण ने निषादराज की मनोदशा भांप उन्हें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उपदेश दिया। कहा, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। भले बुरे का योग, मिलन और वियोग, शत्रुता, मैत्री तथा उदासीनता भ्रमजाल हैं। जन्म और मरण, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल इस जगत के जंजाल हैं।

0: भूपिंदर सिंह और महेंद्र कपूर की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के इस वक्त 6:45 हुए हैं। लीजिए, पेश है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन कार्यक्रम में आज का विषय है रचनात्मकता में निष्ठा। लीजिए सुनिए।
1: आदमी की रचनात्मक और विध्वंसात्मक वृत्तियों की नींव प्रायः बचपन में ही पड़ जाती है। इसमें बहुत कुछ माता पिता की ट्रेनिंग और संगी साथियों के स्वभाव का हाथ रहता है। कुछ किशोर आरंभ से ही संयमित दिखते हैं, जबकि दूसरे समवयस्क तोड़ फोड़ करने के अलावा कुछ नहीं जानते। कोई बीमारी अचानक ही बाहर नहीं आया करती, वो पहले भीतर ही भीतर अपना घर बनाया करती है। बुरी आदतों को बीमारी ही समझिए। हर बीमारी की तरह बुरी आदतें भी शुरू में बहुत छोटी होती हैं, जो रोकी न जाने पर उग्र रूप धारण करती जाती हैं। बहुत मामूली उदाहरण है कि कुछ लोग साफ सुथरी दीवार पर कोई भद्दी बात लिखकर उसे गंदा कर देते हैं। उससे उनके मन का विकार भी प्रकट होता है और सामान्य पढ़ने वालों के मन में लिखने वालों के प्रति जुगुप्सा आदि भी होती है। लिखने वाला व्यक्ति यह नहीं सोच पाता कि इससे उसके प्रति सभ्य लोगों का भाव प्रशंसात्मक कभी नहीं हुआ करता। छात्रावासों और विद्यालयों में बिजली के स्विच आदि कुछ छात्र सिर्फ तोड़ने के लिए तोड़ते हैं। उससे होने वाले नुकसान, असुविधा और खतरे के बारे में सोच पाना शायद उन्हें विरासत में नहीं मिला होता। रेल के डिब्बों में भी की गई ऐसी टूट फूट उसे करने वालों की कुत्सित मनोवृत्ति की ही द्योतक होती है। खेतों से चोरी करके उन्हें कम ज्यादा उजाड़ देना और वर्षों की अवधि तथा पर्याप्त मेहनत से तैयार हुए सड़क स्थित पेड़ों की टहनियां और विशेषकर होली पर बड़ी बड़ी शाखाएं तोड़ डालना बिगड़ी हुई औलादों के काम हैं। दूसरों का नुकसान करने में आनंद लेने वाले ऐसे लोगों को खुद अपनी कमीज का एक बटन भी तोड़ने में बहुत दर्द होता है। यही असामाजिक लोग आगे चलकर समाज और राष्ट्र के लिए तब नासूर बन जाते हैं जब इनका हमला रेल की पटरियों के तोड़फोड़ और जगह जगह बम फोड़ने एवं हत्याएं करने तक बढ़ जाता है। बचपन का छोटा सा चोर शह मिलने पर आगे चलकर डाकू बन जाता है। यदि बदनाम छात्र नेता राजनीति में चले जाते हैं तो वहां भी वे बदनामी के ही दायरे में हाथ पैर मारा करते हैं। सांपों से छुटकारा पाने का सही तरीका यह है कि सपोलो को ही नहीं पर अपने दिया जाए। किसी भी चीज को सही दिशा में मोड़ तब तक जरूर दे दिया जाना चाहिए जब तक उसमें लचीलापन विद्यमान रहता है। इसका परोक्ष अर्थ यह निकलता है कि अपने आरंभिक जीवन में सज्जनता और शालीनता का पाठ पढ़ने वाले लोगों के संस्कार उन्हें जीवन भर इंसानियत की रचनात्मक भावभूमि पर बैठाए रखते हैं। जिसने शुरू से ही अच्छी भाषा और अच्छे व्यवहार पर अधिकार कर लिया हो उसे आगे चलकर उससे संबंधित गलतियों के जाल में फंसने की स्थिति नहीं झेलनी पड़ती। रचनात्मकता और विध्वंसात्मकता का संबंध हर घर से है, अड़ोस पड़ोस से है, देश विदेश से है। कहावत है कि चैरिटी घर से ही शुरू होती है। जो आदमी घर में संबंध अच्छे रखना जानता है वह बाहर भी उन्हें अच्छा रख सकता है। प्यार ही प्यार को उपजाता है। सबको पता है कि शक्कर डालने से चीज मीठी होती है। अब अगर नींव के रूप में ही इन बातों का प्रशिक्षण और अभ्यास घर घर में होने लगे तो आदमी के चरित्र के मजबूत होने में कोई संदेह नहीं रहे। अंत में बचपन की आदतों से आगे के जीवन

0: संबंध को एक बार फिर इन शब्दों में दोहरा लिया जाए कि निर्माण के लिए ऊपर की ईंटों का नीचे की ईंटें ही आधार बनती हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। चिंतन में आज का विषय था रचनात्मकता में निष्ठा। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले हम आपको आज सुबह प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। श्रोताओं, 7:05 पर सबसे पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम आज सुबह। 7:30 का समय होगा सदाबहार नगमे का। 8:30 पर माटी के स्वर कार्यक्रम का आप लेंगे आनंद। और आज सुबह 9:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग हमारे ही स्टूडियो से। 10:00 का समय होगा आपकी पसंद कार्यक्रम का। और 10:30 पर नए तरानों के सफर में हम बनेंगे आपके हम सफर। 11:00 आप सुनेंगे एक और प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। और आज शाम 4:00 संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। ये तो थी आज सुबह प्रसारित होने वाली शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए श्रोताओं, हम आपको आज शाम को प्रसारित होने वाले मुख्य आकर्षणों के विषय में अब बतला दें। आज शाम 5:00 पहले आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। 5:05 पर चित्रपट संगीत और संध्या 6:20 पर। और 7:00 आप आनंद लेंगे, ईमेल करें, गीत सुने इस कार्यक्रम का। शाम 5:35 पर महिला सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे जिंदगी की बकेट लिस्ट इस विषय पर चर्चा। और आगे इसी कार्यक्रम में पर्यटन स्थल क्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे उत्तराखंड की यात्रा पर केंद्रित ए साईलता जी से उनके अनुभव मेरी यात्रा प्रसंग के अंतर्गत। और रात्रि 8:00 संसद समीक्षा और इसके पश्चात रात्रि 10:00 संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग का प्रसारण हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं, इसके अलावा संध्या 7:30 पर किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आज करेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ।

0: हाँ बेटा,
1: आप ये अपने अटैची क्यों जमा रहे हैं?
0: मैं 10 दिन के टूर पर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो लौटते हुए मेरे लिए जीन्स और टॉप जरूर लाना।
0: अरे ये तो मैं तुझे यहीं से दिलवा दूंगा।
1: आप जा कहाँ रहे हैं?
0: बेटा वो जगह दूर जंगलों में है, वहाँ हमारे यहाँ जैसे बाजार नहीं है।
1: ओ, तो पापा आपने एक जरूरी चीज तो रखी ही नहीं।
0: जरूरी चीज? अरे वो क्या?
1: अब भी लाती हूँ।
0: पता नहीं क्या ला रही है।
1: ये भी रख लीजिए।
0: अरे ट्रांजिस्टर, मेरी अच्छी बिटिया, ला दे मुझे।
2: घर से दूर भी अपनों के साथ जब हो रेडियो पास।

जी हाँ श्रोताओं, ये है आपकी और हमारी प्यारी आकाशवाणी। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। समाचार अब दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: वदलं च सप्तत्रीणि इत्यंकांतरालेन पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। श्री मोदी ने श्री टेड के साथ मीडिया और मनोरंजन केंद्र पर चर्चा की। नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा की गई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
2: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी और फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी संभव संसाधनों को जुटाना सुनिश्चित किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। इस अवसर पर आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहड़ी ने कहा कि ध्यान चिकित्सा उपचार पर नहीं बल्कि देखभाल पर केंद्रित है और देखभाल उपचार से कहीं अधिक व्यापक है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। डॉक्टर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत होम्योपैथ को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद ने पंजीकरण कराने और 6 महीने का प्रमाण पत्र लेने के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र में डॉक्टर एसोसिएशन ने आगाह किया है कि अगर सरकार बातचीत शुरू नहीं करती तो 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। हालांकि बेहद गंभीर मामलों में इलाज जारी रहेगा। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष

0: चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के इस वक्त 7:05 हुए हैं। लीजिए पेश है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

आज सुबह। कार्यक्रम आज सुबह सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी अंतरा का अनुरागी नमस्कार।

श्रोताओं, सावन कभी अकेले नहीं आता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, सावन कभी अकेले नहीं आता। वो कागजों की नाव साथ लाता है, यादों के हरे भरे गांव साथ लाता है, जिनको धीरे धीरे सहलाया जाए, कुछ मीठे घाव साथ लाता है। जी हाँ, सावन कभी अकेले नहीं आता। छतों पर महफिलें साथ लाता है, आशिकों की मुश्किलें साथ लाता है, जिन राहों पे बेतरह भीगा जाए, कुछ तरबतर मंजिलें साथ लाता है। सावन कभी अकेले नहीं आता। गली में नहाते बच्चे साथ लाता है, जिन्हें संजोकर रखा जाए, दिन अच्छे साथ लाता है। जो कभी पूरे ना हो सके, कुछ वादे कच्चे पक्के भी साथ लाता है। सावन कभी अकेले नहीं आता। ये नदियों की जवानी साथ लाता है, बचपन की कहानी साथ लाता है, जो बारिश की बूंदों में दिखता नहीं, आँखों का पानी साथ लाता है। सावन कभी अकेले नहीं आता। आंगन में बूंदों की रंगोली साथ लाता है, हरियाली की भरी झोली साथ लाता है। आते हैं खाने चाय पकौड़े घर, दोस्तों की टोली साथ लाता है। सावन कभी अकेले नहीं आता। सच, सावन कभी अकेले नहीं आता। मित्रों, ये कविता थी समकालीन हिंदी जगत की चर्चित रचनाकार और पत्रकार रजनी सेन जी की लिखी हुई, जिसमें बचपन के दिनों से लेकर अब तक के परिदृश्यों की हर एक करवट और हर एक सलवट शामिल थी। वैसे इन दिनों पावस भी अपनी धुन और लय को साथ लिए पुरजोर चमकीली बूंदों के संग बरस बरस कर अतीत में बिला गई खुशबुओं की यादों को तरोताज़ा कर रहा है। शश श्यामल धरती पर हरी हरी चादर दूर तलक फैली हुई है और दूर से ही चुपचाप आश्वस्ति प्रदान करती नजर आती है। इन दिनों पानी से लबालब भरे खेतों में दिखाई देते हैं हमारे

अन्नदाता, जिनकी झुकी हुई कमर धरती पर हरियाली को थोड़ा और भरोसे के साथ स्थापित करने में जुटी हुई है। हरा रंग केवल प्रकृति का और खेत खलिहानों का ही नहीं, बल्कि हमारी मनुष्यता का रंग भी है, हमारी मित्रता का रंग है। कृषक भाई बंधु खुश हैं कि बारिश अच्छी हो रही है, और हम खुश इसलिए हैं कि रंग बिरंगी कश्तियों वाला मौसम हमें स्मृतियों की छाँव में सुस्ताने का तनिक अवसर दे रहा है।

श्रोताओं, इस गीत को सुनने के पश्चात चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। 1945 में आज ही के दिन यानी 6 अगस्त को अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक कोड वाला परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया था। इस परमाणु बम का प्रयोग वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों को समाप्त करने और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया।

0: आज का दिन दुनिया को युद्ध की विभीषिका और हिंसा के दुष्परिणामों से अवगत कराता है। आज के दिन को हिरोशिमा दिवस के रूप में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। इसके अलावा आज का दिन विकासशील देशों के विकास संबंधी विशेष चुनौतियों के प्रति जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और लोगों को जागरूक करने का बड़ा काम करता है। अब कार्यक्रम में बारी है छोटी छोटी सी राष्ट्रीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारियों की, जो हम आपको देते चलें। साथियों, 6 अगस्त यानी आज के दिन 1906 में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन स्वाधीनता आंदोलन में अपनी मुख्य भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास और अन्य नेताओं द्वारा शुरू किया गया था। और अध्ययन से ये भी पता चलता है मित्रों कि आज के दिन 1862 में मद्रास उच्च न्यायालय, जो भारत के तमिलनाडु प्रांत में स्थित है, इसकी स्थापना भी आज ही के दिन हुई थी, जिसे वर्तमान में चेन्नई उच्च न्यायालय का दर्जा हासिल है। इसके अलावा ब्रिटिश राज्य के दौरान प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनेता सर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की आज पुण्यतिथि है। भारतीय राजनीतिक संगठनों में से एक भारत सभा की स्थापना सर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने ही की थी। इन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। इनका योगदान हमारे ऐतिहासिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए सदैव याद किया जाएगा। इनकी पुण्यतिथि पर हम इन्हें करते हैं पल पल नमन स्मरण। और इन्हीं कुछ संवेदनशील जानकारियों के साथ ही अब वक्त हो चला है शहर के आवागमन के हाल को जान लेने का। तो इस वक्त आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं ट्रैफिक अपडेट ऑफ बिलासपुर।
1: नमस्कार मित्रों, हमेशा की तरह यातायात संबंधी सूचनाओं के साथ कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट ऑफ बिलासपुर के लिए मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सभी गांव में, सभी कस्बे में या पूरे शहर में, कुल मिलाकर संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। जिले की यातायात व्यवस्था हमेशा सुगम एवं सुरक्षित बनी रहे, इसके लिए आप सभी से अनुरोध है हमेशा यातायात नियमों को अपना कर चले। मित्रों, आप किसी भी वाहन के साथ यात्रा में हो तब सड़क सुरक्षा की नजर से हमेशा वाहन में मानक कल पुर्जे या उपकरण का होना नितांत आवश्यक है, किंतु हमारी नई पीढ़ी आजकल के चकाचौंध में अपने वाहनों में अमानक कल पुर्जे या उपकरण का उपयोग कर रहे हैं, जो पूर्णतः असुरक्षित है, खतरनाक है। यही कारण है कि सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिसमें लोग घायल हो रहे हैं या मारे भी जा रहे हैं। जैसे वाहन कोई भी हो, हमेशा उचित एवं सुरक्षित प्रकार से तो मानक बल्ब का उपयोग करना चाहिए, किंतु अक्सर लोग मेड इन चाइना के चकाचौंध करने वाले बल्ब का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही हेडलाइट के अतिरिक्त कुछ और अलग से आंखों में चुभने वाला तेज प्रकाश युक्त बल्ब लगाते हैं। इन बल्बों का तेज अमानक प्रकाश आंखों को कष्ट पहुंचाता है तथा रात के समय लोग अपने वाहन में अतिरिक्त अमानक प्रकाश वाला अमानक सर्च लाइट लगा कर चलते हैं। इसके प्रकाश से सामने से आ रहे व्यक्ति को सड़क में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, जिससे किसी भी गंभीर सड़क दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः बल्ब मानक लगावें, अमानक नहीं। इसी प्रकार बुलेट जैसे दोपहिया वाहन में लोग मानक साइलेंसर को निकालकर तेज कर्कश एवं कान फोड़ो आवाज वाले अमानक साइलेंसर लगाकर तेज आवाज करते चलते हैं, जो सर्वथा अनुपयुक्त है, घातक हो सकता है। इस अमानक साइलेंसर

0: की तेज कर्कश आवाज नवजात शिशु, बीमार व्यक्ति या वृद्ध के लिए प्राण घातक हो सकती है। अतः हमेशा मानक साइलेंसर का उपयोग करें, अमानक नहीं। वैसे ही लोग अपने वाहनों में अमानक हॉर्न लगाकर शोर शराबा करते, कान फोड़ू एवं कर्कश आवाज के साथ चलते हैं, जो सबके लिए कष्टप्रद है। अतः हमेशा अपने वाहनों में मानक हॉर्न का उपयोग करें, अमानक नहीं। हमेशा यात्रा नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज का ट्रैफिक अपडेट, और इस वक्त हम आपको बतलाना चाहेंगे कि 1996 में आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार मंगल ग्रह पर जीवन होने की संभावना से जुड़े संकेत जारी किए थे, जिससे एक आश्चर्यजनक घटना की ओर पूरे विश्व भर के लोगों का ध्यान गया और इसे किसी चमत्कार के रूप में स्वीकार किया गया। इस खबर को सुनते ही जनमानस में उत्साह और जिज्ञासा की ऐसी लहर दौड़ गई कि उस वक्त क्या बच्चे और क्या ही बुजुर्ग सभी विज्ञान के इस अभूतपूर्व रहस्य को जानने समझने की कोशिश करते नजर आने लगे। ये खुलासा नए द्वार खोलने और नई संभावनाओं के आगमन के लिए पर्याप्त माना गया।

0: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: श्रोताओं, इसके अलावा 6 अगस्त यानी आज का दिन और भी खास इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन बहुत सारे सूने आंगनों में किलकारी की अनुगूंज गुंजित हुई। जिन घरों के माता पिता किसी न किसी शारीरिक अस्वस्थता के कारण संतान के सुख से वंचित रह रहे थे, उनके घरों में कलरवों का आगमन हुआ। जी हाँ साथियों, IVF के सफल प्रयोग से 6 अगस्त 1986 को मुंबई के जसलोक अस्पताल में हर्षा चावड़ा नाम की एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसे भारत की पहली सफलतम टेस्ट ट्यूब बेबी का दर्जा हासिल है। आनंद, भरोसे और सुकून की बात ये है मित्रों कि हर्षा 2016 में प्राकृतिक रूप से स्वयं एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देकर ये साबित कर चुकी हैं कि IVF तकनीक से जन्म लेने वाले बच्चे भी सामान्य जीवन जी सकते हैं। है ना कितनी सुकून और हैरत की बात। भाई, ये जानकर, ये अनुभव करके बहुत अच्छा लगता है कि लोगों के दुख, लोगों की तकलीफें विज्ञान ने दूर की हैं। आज अनगिनत घरों में किलकारियां गूंज रही हैं और जो बच्चे IVF पद्धति के द्वारा जन्म ले रहे हैं वो सामान्य जीवन जीते और सामान्य जिंदगी का उपभोग करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा और डॉक्टर कुसुम को इस सफलतम और श्रेष्ठतम प्रयोग का अग्रदूत माना जा सकता है। इतनी सुंदर बात के साथ जरा सोचिए मित्रों कि विज्ञान ने हमें किस किस रूप से नवाजा।

मजा है। न केवल हमारी परेशानियों को, समस्याओं को और मुसीबतों और निराशाओं का समाधान विज्ञान ने किया है, बल्कि हमारी खुशियों को भी नई उड़ान विज्ञान जगत के अनुपम आविष्कारों और प्रयोगों ने हमें दी है। तो इसी संकल्प के साथ कि हम प्रकृति और विज्ञान का दोहन कभी अतिरिक्त न करें, इसके अति से हम बचे रहें, इसके दुष्प्रयोग से हम खुद को जितना हो सके बचाए रखें, जितनी सुविधाएं, जितनी सहूलियतें हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए ज़रूरी हैं, हम केवल उतने ही संसाधनों का प्रयोग करें। हमें पूरे मनोयोग और पूरे ध्यान और पूरे जागरूकता के साथ विज्ञान के नई तकनीकों के उपयोग का व्यवहारिक तौर पे अपने जीवन में आदतों को आज शुमार करने की आवश्यकता है। आज यही एक छोटी सी अपील हम आप सभी सुनने वालों से भी अवश्य करना चाहेंगे कि हम, चाहे वो प्रकृति हो चाहे वो विज्ञान, उसके प्रयोग तो करें, उपयोग भी करें, लेकिन उसके अति से हम बचें। और अब चलते चलते देश के मौजूदा हालत के विषय में अगर हम बात करना चाहें तो हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे मित्रों कि बारिशें सिर्फ इंद्रधनुष लेकर नहीं आती। बिल्कुल ठीक सुना आपने, आज कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बारिशों की खुशनुमा रंगत के विषय में आपसे बातचीत की, लेकिन अब चलने की बारी जब हो आई है तो हम ये कह रहे हैं कि बारिशें सिर्फ इंद्रधनुष लेकर नहीं आती, अपने साथ लाती हैं कुछ मुश्किलें और इम्तिहान भी। सिर्फ ख्वाबों के महल नहीं सजाती बारिशें, अक्सर ढहा देती हैं हकीकत के मकान भी। देश के जिन इलाकों या प्रांतों में इस वक्त बाढ़ की त्रासदी से असंख्य मनुष्य और मवेशी जूझ रहे हैं, आइए हम छोटी छोटी सी अपनी कोशिशों और सामान्य रूप से दिए गए अनुदानों से उनको संबल प्रदान करने की कोशिश करते चलें। और इसके लिए ज़रूरी है मित्रों कि हम एकजुट होकर उनकी ओर मदद के लिए आगे बढ़ें। हमारे आसपास किसी भी समूह या सहायता केंद्रों द्वारा अगर इस तरह की किसी मदद की गुहार लगाई जा रही है तो हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम भी उस मदद में अपने हाथ, अपने योगदान को शामिल करते चलें। ऐसे अनुग्रहों की मांग में हम अपना भरपूर समर्थन दें ताकि बाढ़ जैसी त्रासदी से लोगों को उबरने का हौसला मिल सके। और हम आपसे ये भी ज़रूर कहना चाहेंगे मित्रों कि दुनिया हमको, आपको, हम सभी को हमारी सफलताओं से जानती है, पहचानती है, लेकिन हमारी और आपकी असली पहचान हमारा आत्मसम्मान है। रिश्ते निभाइए, लोगों की मदद कीजिए, विनम्र बने रहिए, लेकिन याद रखिए किसी को संतुष्ट करने के लिए अपनी इज्जत, अपने सिद्धांतों का सौदा कभी मत कीजिए। जो लोग आपकी अच्छाई की कदर नहीं करते उनके पीछे भागने से बेहतर है कि आप अपनी राह खुद बनाइए और संस्कारों को बचाए रखिए। हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, सूरज की तरह रोज़ चमकते रहिए।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: श्रोताओं, चलते चलते अब हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में खुशियां बरकरार रहे, आपका दिन शुभ हो। इसी दुआ के साथ दीजिए विदा आपकी अपनी अंतरा को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए, पेश है सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे के सुरीले सफ़र का पहला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ में चुपके चुपके फिल्म से। रचना आनंद बख्शी की है और धुन बनाई है SD बर्मन ने। लीजिए सुनिए इस गीत को बारिश के मौसम में। उम्मीद है आज के सफ़र में हमारे सभी सुनने वालों को उनका पहला प्यार ज़रूर याद आएगा।

चुपके चुपके इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला तराना हम आप तक पहुंचा रहे हैं सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर के युगल स्वर में प्यासा सावन इस फिल्म से। संतोष आनंद की रचना है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ की तरंगों के साथ हम लगातार बने हुए हैं आपके साथ, और इस वक्त आपको सुनवा रहे हैं सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम के आज के सफ़र की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि आज के गीतों को सुनते हुए आप बरसात के सुहाने मौसम का लुत्फ तो उठाएंगे ही और अपने पहले प्यार को भी याद करते रहेंगे। आइए सुनते हैं ऐसा ही एक और दिलकश नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में बाबू फिल्म से। राजेश रोशन ने इस गीत की धुन बनाई है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में वारिस फिल्म का गीत। वर्मा मलिक की लिखी रचना है, उत्तम जगदीश ने इस गीत को संगीत से संवारा है।

0: आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: श्रोताओं, सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला सुरीला नगमा लीजिए। पेश है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में अलग अलग फिल्म से। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।
2: कुछ हमको
3: क्या
2: कुछ तुमको।
3: हाँ।

श्रोताओं, ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत जिसे आपने अभी सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में अलग अलग फिल्म से। और इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचारों के लिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे आकाशवाणी दिल्ली की ओर।

0: नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
2: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
1: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
3: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
4: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से

0: कर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के

0: प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्रनाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिस्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हुर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से।

0: लोग लोगों को अलर्ट करते हैं।
1: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता।
2: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है, मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा, पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती हैं महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा। पत्र लिखता है, भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मूज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, ईरान को होर्मूज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडियाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी पूल ऑफ क्रिएटिव टैलेंट कैन बी लीवरेज टू स्ट्रेंथन नेशंस पोजिशन एज ग्लोबल हब फॉर कॉन्टेंट क्रिएशन। Government extends 10 years of Cabinet Secretary T.V. Somnathan and Union Home Secretary Govind Mohan by 1 year. Students intensify their protest.

लोक मिट्टी की सौंधी खुशबू से रचे बसे, कुछ लोकगीतों के आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम में लीजिए पेश है पहला गीत शैलबाला ध्रुव और साथियों की आवाज़ों में। जिन श्रोताओं के फरमाइश हम तक इस गीत के लिए पहुँचे हैं उनके नाम हैं धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता अर्चना, अरुणा अल्पना, इकबाल कुरैशी, रानू खुशी, प्रवीण कुमार साहू, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, पुष्पलता अर्पिता, अभिनव बलदाऊ, राजेश्वरी आस्था और सीएल यादव। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र सेन, खुशी और रौनक सेन। जुराली से देवचरण पटेल, अंजोरमती पटेल, भूपेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, दक्ष कुमार, दिव्यांश कुमार, कुणाल कुमार पटेल। रिंगनी से हमारे साथी हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दतरंगी से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि, पारसमणि और पुष्पेंद्र मणि वर्मा। बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति। भाटापारा से हमारे साथी हैं मिलऊ मानिकपुरी, संतोष, संदीप, अजित, लक्की, भार्गव, नीलक्ष, विवान मानिकपुरी और भाटापारा से ही हैं बिरछा, संजना, संगीता, अंजलि और चारू मानिकपुरी। इसी के साथ इस गीत की मिलीजुली फरमाइश लिख भेजी है बसीबार से शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, आंचल चंचल, चांदनी, विनय कुमार, वर्षा, मनोज कुमार, कंवर ने। शांति नगर पाली से हमारे श्रोता हैं विष्णु सिंह, संतोषी, आरती, पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और उनके बहुत सारे साथी। ततरंगी भाटापारा से इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, छावेंद्र कुमार वर्मा ने। और अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर। तो इन सभी की पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए पेश है कुलेश्वर, माफ़ कीजिएगा, शैलबाला ध्रुव और साथियों की आवाज़ों में।

0: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए। आपकी रक्षा में पूरी।
1: श्रोताओं, माटी के स्वर कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए पेश है कविता हिरकने और कुलेश्वर की आवाज में। पसंद हमारे इन श्रोता साथियों की है। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तराधिवाकर परमेश्वरी योगिता नितिन वंशिका, भाटापारा से हैं पूरनलाल चंद्रिका सोनू कुमार मोनू कुमार, और भाटापारा से ही मोतीलाल देवदास गौतम मुकेश पवन गोलू देवदास। भाटापारा से एक और पत्र है इसी गीत के लिए, अमृता यादव पार्वती ईश्वरी लक्ष्मी प्रेरणा डिम्पी ने लिखा है। नेवधा से हैं दुलारी प्रियंका प्रीति उमेश्वरी और सुनती यादव। बलौदा से दिलहरण गौतम अंजलि आनंद पटेल समृद्धि पटेल। दतरंगी से हमारे साथी हैं विश्राम यदु पार्वती प्रतिमा रीना लक्ष्मीना यदु। लालपुर से कुलेश यदु और समीर यदु। राजिम से अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने भी इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है। पूड़ी लाफा से हमारे श्रोता हैं विद्यानंद साहू त्रिवेणी एनी बबली सुमन मंटू मिष्टी सृष्टि दृष्टि मन्नू गन्नू गणेश कान्हा कृष्णा अंशु साहू। और रोहासी से हैं डगेश्वर साहू नूतन

घनश्याम, अलका जानवी और गौरव साहू। तो इनकी पसंद पर लीजिए पेश है कविता हिरकने और कुलेश्वर के स्वर में कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

श्रोताओं, माटी के स्वर कार्यक्रम का इस वक्त आप आनंद उठा रहे हैं बिलासपुर के हमारे अपने केंद्र से, यानी आपके अपने आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम में लीजिए पेश है नकुल जायसवाल और सावित्री कुमार की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला मीठा संगीत, जिसे पसंद किया है पथरिया से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी नोमेश नेहा और वान्या सिंगरौल ने। कोरबा से हैं विकास, दीप्ति, प्रवीण, चंद्रमणि, बेबी नित्या, डिक्सेना। बेमित्रा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी। बिलगहना से श्याम शंकर, विजय, रागिनी, गीता देवी, कैलाश चंद्रबाई, कुसुम, राधा और महेश काशीपुरी। पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। एक और पत्र है इसी गीत के लिए, पिंडरा से लिखने वाले हमारे साथी हैं मोनेश, सुरेश, मनोज, सावनी और श्री लता। इन सभी साथियों की पसंद पर लीजिए पेश।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: श्रोताओं, माटी के स्वर कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं सावन पर केंद्रित कुछ मीठे मीठे से लोकगीत। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, दुखिया राम मरकाम और साथियों की आवाज़ों में। पसंद हमारे इन श्रोता साथियों की है।

भाटा पारा से हैं बचकामल, मोतीलाल, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, छुवाराम वर्मा, सूरज बारीकर, नारायण यदु, लेखराम, राधेश्याम, लतेल प्रसाद, सियाराम, अश्वनी पांडे, सुब्रत चौधरी, और रायपुर से हैं नीलू मेघ। हथनी पारा भाटापारा से हैं दुर्गा दुर्गेश्वरी, मुकेश वर्मा, हरीश, किरण दुलारी, अनुराधा, यामिनी वर्मा। चिंगराज पारा से राम कुमार देवांगन, दुर्गेश, नंदनी, वर्षा, प्रिया, सुमन, अक्षरा, वंश, शिवांश, प्रांशु और अंशिका। अकलतरा से हमारे साथी हैं जिन्होंने संगीत की फरमाइश लिख भेजी है, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या, डिकेश, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। भाटापारा से हैं दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी, शुभम, सौरभ, नीरज, और रायपुर से सोमनाथ यादव, वंदना, सूर्यप्रकाश और शीला यादव। लुथरा खमरिया से हैं नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज़, और अम्बागढ़ चौकी से हमारे श्रोता हैं ओम प्रकाश, मसीहा, सिलोचनी, खुमेंद्र, तुषारिणी, और यहीं से हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर लीजिए पेश है दुखिया राम मरगाम और साथियों की आवाज़ में कार्यक्रम का ये गीत।

कैसी की मैं हाँ धर दी, कैसी की मैं हाँ धर दी, मन के आ

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए, पेश है सुख सागर सिंह खुसरो की आवाज़ में। इस गीत की मिली जुली फरमाइश

लिख भेजी है कथियापारा जूना बिलासपुर से, सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन ने। बमर चाटीडी से हमारे साथी हैं गंगा देवी देवांगन, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की, मीनाक्षी और निधि देवांगन। देवरी भाटापारा से कन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश, मयाराम, पुनेश्वर, फणेश्वर, मुकेश कुमार रजक, हाव्या और सानिया रजक। भाटापारा से

पुनीश्वर, फणीश्वर, मुकेश कुमार रजक, हाविया और सानिया रजक। भाटापारा से रमज़ान खान सिकंदर, अशरफ खान, नासिर, अयाज अल्फेज, मेज़बीन बानो, सादिया खान, हजरुन्निशा। और भाटापारा से ही हैं दुर्गेश साहू, समीर टंडन और अश्वनी कुमार।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: श्रोताओं, इसके साथ ही माटी के स्वर कार्यक्रम का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विधि एवं न्याय मंत्रालय। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम की पांचवी कड़ी। लीजिए पेश है।
3: वी ब्रिंग यू अ टॉक ऑन सीनियर सिटीजंस केयर सिस्टम वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज वेलफेयर अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस बाय डॉक्टर आभा चौधरी फाउंडर सेक्रेटरी एंड चेयरपर्सन अनुग्रह आरआरटीसी। दिस टॉक वाज पार्ट

0: of a webinar organized by the Department of Justice.
1: Senior citizens care ka, chahe wo gaon mein ho, chahe wo shaharon mein ho, uske prati jagrukta karni ho, ya policy makers, NGOs, civil society ya wider society ko isme integrate karna ho. Ek broad picture ki Bharat dheere se hi sahi, par aging tsunami ki aur hum dheere dheere badh rahe hain. Behtar medical suvidhaein aur jo longevity hai, uski wajah se jo life expectancy hai, wo badh rahi hai. Aur dheere dheere ये जो संख्या है ये चिंता का कारण मेरे विचार से नहीं है. यदि हम सही प्रकार के केयर सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और जो हमारी मल्टीपल पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका क्रियान्वयन सही रूप से करें तो ये चैलेंज नहीं पर बल्कि हमारे लिए एक ये बोन बनकर आ सकता है. हमारी संस्कृति में और हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जो एक संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रहा है और सीनियर सिटीजन्स के प्रति केयर और रिस्पेक्ट की एक भावना रही है, उसमें कुछ हल्की दरारें या कुछ हल्के स्ट्रेन्स हम जरूर देख रहे हैं. 80% लोग हैं वरिष्ठ नागरिक, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और एक सोच का विषय यह है कि उसमें से एक बहुत बड़ा तबका इलिटरेट है, कम पढ़ा लिखा है और सिर्फ फिजिकल लेबर में ही वो एंगेज रहते हैं. 58% से ज़्यादा महिलाएं जो 60 साल के ऊपर हैं कि उनकी जो आर्थिक दशा है या सोशल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, उसके प्रति ज़्यादा हमें काम करने की आवश्यकता है. ब्रॉडली जो चैलेंजेस वृद्धावस्था अपने साथ लेकर आती है वो भावनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग होते हैं. वृद्धावस्था के साथ साथ बीमारियों का घेरना, अकेलापन और बच्चों का बाहर शहरों में चले जाना, बाहर काम करना, और क्योंकि शरीर क्षीण है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप उतने सक्षम नहीं हैं तो घर से ज़्यादा बाहर निकलकर आप काम भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए आजीविका संबंधी परेशानियां भी वृद्धावस्था के साथ एक चैलेंज के रूप में उभर रही हैं. कुछ साल पहले अखबारों में ये भी पढ़ा था जो बेगरी करते हैं काफ़ी सारी वरिष्ठ नागरिक महिलाएं, वो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तक का वो शिकार हुई हैं. फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन या फाइनेंशियल अब्यूज़ ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी से संबंधित है. उनको डरा के, धमका के या बहला फुसला के उनके चेक साइन करवा लेना, प्रॉपर्टी के कागज़ अपने नाम करवा लेना, फिर उनको घर से बाहर निकाल देना, ये अक्सर आप समय समय पर मीडिया में चर्चा में पढ़ते रहे हैं. जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहे हैं, पारिवारिक ढांचा एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से जा रहा है, तो पहले जो एक साइलेंट प्रॉब्लम हुआ करती थी या घर के बंद दरवाज़ों के पीछे ये बात होती थी, अब धीरे धीरे मीडिया और बाकी अवेयरनेस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन एंड इवन NGOs इस चीज़ को बाहर अब ला के खुले में बात कर रही हैं. अब ये प्रश्न आता है जब ये सर्वे हुआ पिछले 7 साल से कि ये एल्डर अब्यूज करते कौन हैं, तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि कम से कम जो सर्वेक्षण ने शो किया पूरे इंडिया में 82% एडल्ट जो उनके बच्चे हैं, सन्स और डॉटर्स, वही इसको और डॉटर इन लॉ के बाद जो उनके देखभाल करता है, चाहे वो फॉर्मल देखभाल करता है या इनफॉर्मल देखभाल करता है, जो बेड रिडन लोग हैं वो इसके शिकार पाए गए. तो ये सवाल उठता है कि अब्यूज़ तो बच्चों का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, तो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति ज़्यादा हम क्यों वल्नरेबल होते हैं, क्यों ससेप्टेबल होते हैं एल्डर अब्यूज़ के, तो उसके कुछ कारण हैं. आपने सभी ने ये शब्द ज़रूर सुना होगा, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया. तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफ़ी ज़्यादा अब प्रोनाउंस होते जा रहे हैं और यदि व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने खान पान के बारे में सुदबुद्ध ही नहीं है, भूलने की समस्या आ रही है, तो वो अब्यूज़ के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं. दूसरा, खासकर शहरी इलाकों में अकेलापन या बच्चे बाहर चले गए, सोशल आइसोलेशन, अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर देना, बाहर निकलना कम कर देना, उससे भी एक वल्नरेबिलिटी अब्यूज़ के प्रति बढ़ती है. और एक और जो सर्वेक्षण में बात सामने आई, जो केयर गिवर्स का स्ट्रेस है उसमें भी जो उनकी देखभाल करते हैं लोग, कई बार वो प्रेशर नहीं झेल पाते और उस फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों के प्रति, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अत्याचार या दुर्भावना उनके प्रति आती है.

0: इसमें एक चीज और देखी गई है कि वो वरिष्ठ नागरिक जो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, या अपने अधिकारों या जो स्कीम्स हैं सरकार की या कानून है उनके प्रति बिल्कुल कम जानकारी है, वो ज्यादा फिजिकली और इमोशनली वल्नरेबल रहते हैं एल्डर अब्यूज के प्रति। और जो डिपेंडेंस भी, जो एक निर्भरता है केयर गिवर के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं उनकी इस वल्नरेबिलिटी को बढ़ाती है। एक अब्यूज है वो जो उनके केयर गिवर समाज या परिवार के लोग करते हैं, एक वो प्रकार का अब्यूज है जो सेल्फ निग्लेक्ट है। व्यक्ति जब बहुत ज्यादा निराश हो जाता है या समाज के प्रति या परिवार के प्रति उदासीन हो जाता है तो वो स्वयं अपने प्रति भी उदासीन हो जाता है, और ऐसे में सही समय पे दवाई लेना, खाना लेना, अपनी हाइजीन मेंटेन करना, अपने लिए भजन पूजन, बाहर जाना, वो सब चीजें जो स्टॉप कर देते हैं वो अपने प्रति भी निग्लेक्ट या अब्यूज माना जाता है। जो एक ब्रॉड साइंस हम सब जानते हैं फिजिकल अब्यूज के, निग्लेक्ट के, वो चोट के निशान हो सकते हैं, बर्न्स के निशान हो सकते हैं, या किसी भी वरिष्ठ नागरिक जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं पर एकदम से वो विड्रॉ कर गए, बातचीत उन्होंने बंद कर दी, बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना या रोज की जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल बंद कर दी, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में मान लीजिए अचानक से आप कोई बहुत ज़्यादा बदलाव देखते हैं कि पहले वो ठीक ठाक थे और अब बिल्कुल ही उनके लिए कोई खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, या वो घर में से आपको उनके मारपीट की या उनके आर्ग्यूमेंट्स की अगर आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनकी देखभाल करता और वरिष्ठ नागरिक के प्रति उनका हाइजीन, उनकी डेली ज़रूरतें, उनकी दवाई, ये सब, और अनएक्सप्लेन्ड अगर उनकी तबीयत खराब बहुत लंबे समय तक चल रही है तो ये कुछ सिम्टम्स या साइंस होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक के साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा है। इंटिमिडेशन, किसी भी बात पे उनको साइडलाइन करना, उनको उनके बारे में चर्चा नहीं करना। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है और अब काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारी जो मंत्रालय की नेशनल हेल्पलाइन है 14567 एल्डर लाइन जो है उस पर इसके बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, जिसमें या तो बरगला के या प्यार से या उनको बहला फुसला के, चाहे वो उनके घर में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प हों, चाहे परिवार के लोग हों, देखभाल करता हों, तो एक बार अपने नाम कर लेते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस प्रकार की जागरूकता वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समय पर अपनी वसीयत बनाएँ, अपने नाम पर सेविंग्स रखें और चीज़ों को सभी के सामने उजागर या डिस्क्लोज ना करें।
1: You have been listening to a talk on Senior Citizens Care System, Vulnerability to Abuse, Welfare, Awareness and Strengthening Access to Justice from the webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वी कंटिन्यू विद द टॉक ऑन सीनियर सिटीजंस केयर सिस्टम, वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज, वेलफेयर अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस।
2: हम किस प्रकार से न्याय उन तक पहुंचाएं, तो ये केवल एक ही वर्ग का दायित्व नहीं है, एक ही वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तीन लेवल्स आपके सामने ज़रूर बात करना चाहूँगी। एक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सीनियर सिटीजन्स देमसेल्व्स, स्वयं की जिम्मेदारी लेना समय पे, जब वो 40s में है या 50s में है या अर्ली 60s में है, तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी, समय पे खान पान की जिम्मेदारी, अपनी सेविंग्स, बचत, इन सब का ध्यान रखना, सारे पैसे बच्ची की शादी में या घर बनाने में व्यय नहीं कर देना, ये हम लोगों की रिटायरमेंट काउंसलिंग, ये हमारे मेन मुख्य दायित्व हैं। दूसरा, जो उनके लिए काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हुए, हेल्थ वर्कर्स हुए या फाइनेंशियल वर्कर्स हुए, उनके लिए जागरूकता प्रसार करना, जो एजेंसीज उनके लिए काम करती हैं, लॉ मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस हो गई, एनजीओज हो गई, पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके प्रति एल्डर अब्यूज़ क्या है, मेंटेनेंस एक्ट क्या है, इस प्रकार की जानकारियाँ उन्हें देना, और जो ग्रासरूट स्तर पे जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो RWAs हैं, चाहे वो बाकी एसोसिएशन हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो वहाँ कोई ना कोई इस प्रकार का सुविधा

0: बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बदलते परिवेश में केवल ओल्ड एज होम होना हमारे लिए एक जवाब नहीं है। आने वाले समय में डे केयर सेंटर्स, मल्टी सर्विस सेंटर्स या ऐसी जगह इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग, कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस में इस प्रकार का उनके लिए स्थान निर्धारित हो, एक क्रिटिकल भूमिका जो नोडल मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसकी रही है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति। और सन 2010 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन एजिंग। और हमारा इसमें मुख्य रोल जो रहता है वो ये रहता है कि टेक्निकल सपोर्ट और इनपुट्स हम मंत्रालय को प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे अंडर हमें स्टेट्स आवंटित किए जाते हैं उन एजेंसीज को हम ट्रेन करते हैं, और मल्टीपल एजेंसीज, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पंचायतें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर वो विभाग जो वरिष्ठ नागरिकों से डील करता है, हम उन्हें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। वाइड स्केल पे कैंपेन्स रन की जाते हैं। हर वर्ष जब 1 अक्टूबर आता है वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो उसमें थीम्स डिसाइड की जाती हैं, कभी फाइनेंशियल, कभी लीगल, कभी हेल्थ, और एजिंग विद डिग्निटी, गरिमामय वृद्धावस्था हमारा मुख्य ध्येय है। सो दिस इज अ ब्रॉड मैंडेट, फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू रिसर्च टू एडवोकेसी टू डेटा बैंक जनरेशन। और उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एंश्योरिंग मॉडल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड एज होम्स। मंत्रालय के अंडर जितने ओल्ड एज होम्स आते हैं उनमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं, सीसीटीवी या जितने वहां वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनमेट्स हैं, उनकी सुपरविजन और हैंड होल्डिंग भी हमारा एक कार्यक्षेत्र में आता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मास अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को आता है, कृपया आप सभी इसको नोट कर लीजिए, और जितने आपके सर्कल है उसमें ज़रूर इसका ऑब्जर्व होना चाहिए। इसमें हम रैलीज निकालते हैं, रोड शोज करते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करते हैं, और मंत्रालय एक बहुत अहम भूमिका जो निर्वहन करते हैं, एक ओथ एडमिनिस्टर की जाती है, एक शपथ ग्रहण किया जाता है यंग जनरेशन के थ्रू कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का जीवन पर्यंत ध्यान रखेंगे, और वो हमारे नॉर्मली मंत्री जी और बाकी वरिष्ठ लोग इसका संचालन करते हैं। स्वच्छता दिवस, योग दिवस और एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन, जैसे मैंने कहा, इसके अलावा एक एक दिन के अलग अलग पॉलिसीज पे हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं। एल्डर्स मंथ होता है अक्टूबर में, पूरा महीना अलग अलग एक्टिविटीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं भारत के ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके। इसमें महिलाओं का कार्यक्रम में हम खासकर तवज्जो देते हैं, जो मातृशक्ति कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन्स वुमेन के ऊपर। जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख और दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूथ, नुक्कड़ नाटक, हर प्रकार के जेल्स में, एक और वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अलग अलग जेलों में वरिष्ठ नागरिक 70 साल के, 80 साल के, 90 साल तक के हैं, उनकी किस प्रकार से कंडीशन है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और ये एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन अब पैन इंडिया कैंपेन है। दिल्ली में हमारी संस्था अनुग्रह, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दिल्ली हाईकोर्ट के साथ मिलकर भारत का एकमात्र यूनिक सेंटर हम रन करते हैं, स्वाभिमान परिसर। इस प्रकार की जो जागरूकता प्रसार कार्यक्रम है, जो उनके दरवाजे तक उनके पास जाए, दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग टू। सो इट बेसिकली फोकसेस लीगल एड, काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक केयर, इंडियाज फर्स्ट मॉडल वेलफेयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन। जैसे मैंने आप सबसे कहा, वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली टूवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज an age-friendly India and age-friendly society, and especially I would say youth has a very important responsibility, not only government but all the stakeholders in this.
1: You had been listening to a talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, Founder Secretary and Chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे विधि एवं न्याय मंत्रालय। आज आपने सुनी इस कार्यक्रम की 5वीं कड़ी। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:15 हुए हैं। अब से लेकर सुबह के 9:55 तक हम विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे, और ठीक 9:55 पर प्रादेशिक समाचार के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

आइए अब आपको सुनवाते हैं मैं प्रेम की दीवानी हूँ इस फिल्म का गीत। चित्रा और केके की आवाजें हैं, गीतकार हैं देव कोहली और संगीतकार अनु मलिक।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह? तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए
5: अगला गीत बेफिक्रे फिल्म से सुना रहे हैं आपको, अरिजीत सिंह की आवाज में, जयदीप साहनी का लिखा गीत है, तर्ज बनाई है विशाल एंड शेखर ने।

कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत दे दे प्यार दे इस फिल्म से अरमान मलिक की आवाज है। कुणाल वर्मा ने इस गीत को लिखा है, अमाल मलिक ने संगीत से सजाया है।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ लेती हूं विदा। मैं पूजा नरानिया, नमस्कार।

ये है विविध भारती। आज की फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25%

0: टैलेंट जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में, बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
1: ऐसी अद्भुत यादें

आज के फनकार कार्यक्रम में आज केंद्रित है एक ऐसे संगीतकार को जो अपने कॉलेज के जमाने में अच्छे क्रिकेटर रहे थे, लेकिन क्रिकेट के मैदान में जाने की बजाय वो आ गए फिल्मी दुनिया के मैदान में और बन गए संगीतकार और निर्देशक। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है जाने माने संगीतकार, निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर विशाल भारद्वाज पर।

0: चाहे जी।
1: विशाल भारद्वाज का जन्म हुआ था बिजनौर उत्तर प्रदेश में। उनके पिता राम भारद्वाज एक जाने माने कवि और गीतकार थे। विशाल की शिक्षा दीक्षा हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। अपनी जवानी के दिनों में विशाल भारद्वाज कुछ गुमनाम गजल गायकों के लिए हारमोनियम बजाया करते थे। दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले बहुत सारे फूड फेस्टिवल्स में उन्होंने अपने प्रोग्राम किए। आगे चलकर आरवी पंडित से उनकी जान पहचान हुई और इस तरह से विशाल भारद्वाज एक म्यूजिक कंपनी में आ गए। एक दोस्त ने विशाल भारद्वाज का परिचय जाने माने गीतकार और निर्देशक गुलजार से करवाया।

उसके बाद विशाल ने जंगल बुक, एलिस इन वंडरलैंड और गुच्छे जैसे कई सीरियल्स में गुलजार के लिखे गानों को स्वरबद्ध किया। जंगल बुक का टाइटल गीत तो आपको याद ही होगा, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। ये गाना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। इसके बाद जब गुलजार बना रहे थे फिल्म माचिस, तो बतौर संगीतकार उन्होंने विशाल भारद्वाज को साइन किया। फिल्म माचिस का संगीत एकदम अलग तरह का था, ये एक ताजगी भरा संगीत था। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए, जैसे ये गाना।

इन सभी गानों को सुनकर लगता नहीं है कि किसी नवोदित संगीतकार की रचनाएं हैं ये। और फिर गुलजार के गानों को स्वरबद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। ये बात तो जाने माने संगीतकार राहुल देव बर्मन पहले ही कह चुके थे। जाहिर है कि विशाल भारद्वाज ने कई चुनौतियों के बीच काम करके अपने आप को साबित किया। विशाल भारद्वाज की दूसरी बड़ी फिल्म थी सत्या।

सत्या के बाद विशाल भारद्वाज ने कमल हासन की फिल्म चाची 420 में भी संगीत दिया और कई अलग अलग फिल्में उनकी आईं। लेकिन जिस फिल्म का संगीत ज्यादा लोकप्रिय हुआ और सुना गया वो थी एक बार फिर गुलजार की फिल्म हू तू तू। इस फिल्म का छई छप छई गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ था।

इसके बाद विशाल भारद्वाज ने सोचा कि वो संगीत की दुनिया से फिल्म निर्माण की दुनिया में आ जाएंगे और फिर उन्होंने साल 2002 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था मकड़ी। शबाना आजमी के अभिनय वाली इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण और इसके अलावा संगीत, ये सारी जिम्मेदारियां खुद विशाल भारद्वाज ने संभाली थी। इसके बाद वो फिल्मी दुनिया में बाकायदा चले आए और उनकी निर्देशित पहली बड़ी फिल्म कहलाई मकबूल। मकबूल के बाद विशाल भारद्वाज ने एक और फिल्म का निर्माण किया। ये बच्चों की फिल्म थी और रस्किन बॉन्ड की कहानी पर आधारित थी। ये फिल्म थी द ब्लू अम्ब्रेला। इसके बाद विशाल भारद्वाज ने एक धमाकेदार फिल्म बनाई। ये फिल्म थी ओंकारा।

इस दौरान विशाल भारद्वाज का संगीत देने का काम लगातार जारी रहा और उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में आईं, जैसे लव के लिए कुछ भी करेगा।

विशाल भारद्वाज के बारे में आगे बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली में पढ़ाई के दिनों में विशाल भारद्वाज की मित्र बनी रेखा, जो अब उनकी पत्नी और फिल्मी दुनिया की एक जानी मानी गायिका हैं। रेखा भारद्वाज की आवाज में सुनिए ओमकारा फिल्म का ये

विशाल भारद्वाज की फिल्में बड़ी अनूठी हुआ करती हैं। वो फिल्मी दुनिया के सामान्य चलन से अलग हटकर अपनी फिल्में पेश करते हैं। जैसे फिल्म कमीने एक अलग तरह की कहानी थी और इसका संगीत भी अपने आप में बिल्कुल अलग था।

हम आपको बताएं कि विशाल एक अच्छे गायक भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विशाल कितनी बहुमुखी प्रतिभा है। एक तरफ संगीत देते हैं, दूसरी तरफ कथा पटकथा संवाद लिखते हैं, निर्माण निर्देशन भी करते हैं और गायक भी हैं। जी हाँ, फिल्म यू मी और हम का ये गाना सुनिए।

अमिताभ बच्चन की अभिनय वाली फिल्म निशब्द की गाने विशाल भारद्वाज ने तैयार किए थे। फिल्म हाले दिल का ये शीर्षक गीत सुनिए, कमाल का गाना है ये और विशाल भारद्वाज की प्रतिभा को अच्छी तरह से दर्शाता है।

अब विशाल भारद्वाज निर्माता भी बन चुके हैं और अपनी कंपनी के जरिए नई प्रतिभाओं को उतार रहे हैं। जैसे कि विशाल भारद्वाज ने बतौर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म बनाई है इश्किया। फिल्म इश्किया के गाने भी गुलजार ने ही लिखे हैं और इनका संगीत खुद विशाल ने तैयार किया। जरा इब्ने बतूता सुनिए।

विशाल भारद्वाज अपने खास तरह के सिनेमा के लिए और अपने खास तरह के संगीत के लिए जाने जाते हैं। साल 2011 में वो लेकर आए फिल्म सात खून मां।

साल 2013 की शुरुआत विशाल भारद्वाज ने की अपनी एक दिलचस्प फिल्म के जरिए, जिसका नाम था मटरू की बिजली का मंटोला। इस फिल्म का ये दिलचस्प गाना सुनिए, विशाल भारद्वाज की जीवन संगिनी रेखा भारद्वाज ने।

विशाल भारद्वाज लेकर आए एक बड़ी ही चर्चित फिल्म जिसका नाम है एक थी डायन। विशाल भारद्वाज अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। आज उनकी गिनती हिंदी फिल्म उद्योग के संवेदनशील निर्देशकों में होती है। साल 2014 में विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर की कृति हेमलेट पर बनाई अपनी फिल्म हैदर 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते।

0: विशाल भारद्वाज की एक और फिल्म आई डेढ़ इश्किया, जो इश्किया का सीक्वल है। आपको बता दें कि इन दोनों ही फिल्मों के निर्देशक।
1: श्रोताओं, सुबह के 9:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए इस वक्त हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
2: आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य शासन ने शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत आज रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने की नीति के तहत 20 खेलों के कुल 156 खिलाड़ियों को सूची में शामिल किया गया है। इस सूची को मुख्यमंत्री

देवसाय की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में मंजूरी दी गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स की पहली बैठक हुई। बैठक में दोनों कानूनों के बेहतर समन्वय और अनुसूचित क्षेत्रों के विकास पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा और वन अधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने राज्य स्तरीय कार्ययोजना समिति के गठन और जिला स्तरीय पेसा निगरानी समितियों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वन महोत्सव का शुभारंभ करते हुए नवा रायपुर में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी मां के नाम पर पीपल का पौधा लगाकर प्रदेशव्यापी पीपल फॉर पीपल अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में 2500 से अधिक पीपल के पौधे रोपे गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक पौधरोपण करने की अपील की।

0: इस अभियान के तहत लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में 2,500 से अधिक पीपल के पौधे रोपे गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक पौधरोपण करने की अपील की। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर आज सुबह 11 बजे से रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र के सहयोग से पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे। कार्यक्रम में राज्य की 10 माताओं को माता यशोदा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इन माताओं ने मातृ दुग्ध दान या अन्य शिशुओं को स्तनपान कराकर मानवता और मातृत्व की प्रेरक मिसाल पेश की है। प्रदेश के आबकारी विभाग ने शराब दुकानों में तय दर से अधिक कीमत पर बिक्री के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त ने राज्य स्तरीय उड़न दस्ते की जांच रिपोर्ट के आधार पर 2 आबकारी उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। इनमें बालोद जिले के गुरूर और बलौदाबाजार भाटापारा जिले के एक शराब दुकान के प्रभारी अधिकारी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार पात्र विद्यार्थी राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित की गई है। विद्यार्थियों के आवेदनों का सत्यापन संबंधित स्कूल और जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार 8 अगस्त से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC ने सूबेदार, उपनिरीक्षक और संवर्ग प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के लिए आयोजित प्रारंभिक लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा के लिए 7,301 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य शासन ने शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत आज रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के इस वक्त 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी पसंद, फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों को अंतरा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, कार्यक्रम का पहला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में रंगीला फिल्म से। शब्द रचना महबूब की है और संगीत AR रहमान का। जिन श्रोता साथियों की पसंद इस गीत के लिए हम तक पहुंची है, उनके नाम हैं बसीबार से शिवनारायण नामदेव, सविता देवी, आंचल चंचल, चांदनी, विनय कुमार, वर्षा, मनोज कुमार, शांतिनगर पाली से विष्णु सिंह कोरम, संतोषी, आरती, पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्र शेखर, बिलगाना से श्याम शंकर, विजय, कैलाश, राजकुमार, गोलू, श्याम, बुधगिरी और ताराचंद साहू, पिंडरा से कैलाश चंद्रबाई, बाबली, प्यारेलाल सोनवानी, श्याम शंकर और मदनलाल राठौर, भाटापारा से हमारे साथी हैं अनीता, वीणा, नेहा, मोनिशा, अकलतरा से हैं रमेश कैवर्त, राजकुमारी, सूरज सुरभि और आरती कैवर्त, बेमित्रा से पूर्णिमा सारथी, पूजा, आरती, भाव्या, सुषमा और करघी फदर से

पुरुषोत्तम निर्मलकर, शारदाबाई लोचन और गिन्नी। भाटापारा से हैं मिलऊ मानिकपुरी, संतोष, संदीप, अजित, लक्की, भार्गव, नीलक्ष, विवान मानिकपुरी। और भाटापारा से ही एक और पत्र है, इसी गीत की फरमाइश लिखी है, जिसमें साथी हैं बिरछा मानिकपुरी, संजना, संगीता, अंजलि और चारु मानिकपुरी। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए पेश है कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, रंगीला फिल्म से।

श्रोताओं, सुरेश वाडेकर और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना रंगीला फिल्म से। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में, राजा हिंदुस्तानी फिल्म से। बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। और जिन श्रोता साथियों की पसंद हम तक पहुंची है पोस्ट कार्ड के ज़रिए, उनके नाम हैं अमलेश्वर से टुमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश, तारिणी सूरज, सुजला ज्योति, रेयांश दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मयाराम, पुनेश्वर फनेश्वर, मुकेश कुमार रजक, हाव्या और सानिया रजक। एक और पत्र है भाटापारा से ही प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत राघवेंद्र, अकलतरा से हैं अभिनव और अभिषेक साहू। राजनंदगांव से हमारे साथी हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। बुलंदशहर से बदरूप वली अंसारी, फरजू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। लुधियाना से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिबा कौर। और सुभाष वार्ड भाटापारा से हैं एमएल यादव, अजय कुमार, अमित अमिन, गिरीश करण, युवान दाबेश, निवधा से सेवक राम, टुपेंद्र कुमार, तुलेंद्र कुमार, देव कुमार यादव। और अकलतरा से हमारे साथी हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, कीर्ति कुमार, संध्या, डिकेश, वासु, डॉली और पूर्वेश। इन सभी की पसंद पर लीजिए पेश है राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत।

0: ना कोई मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
0: आपकी रक्षा में पूरी।
2: श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का आनंद ले रहे हैं। इस वक्त आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से कार्यक्रम में लीजिए पेश है कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर में दलाल फिल्म का गीत। अनजान की रचना है, बप्पी लाहिड़ी का है संगीत और पसंद हमारे इन श्रोता साथियों की है। अगलतरा से हैं रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक, खुशी सेन। अगलतरा से ही दिलीप सिंह चंदन, चुवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। चिरमिरी से हैं एलपी साहू, नंदनी, निधि, कामेश्वर प्रसाद साहू और शिवरी नारायण से भुवनेश्वर, पार्वती, दीप्ति और हरीश कुमार, इन्हीं की मिली जुली पसंद पर हमारे इन साथियों ने भी हमें पत्र भेजा है इसी गीत के लिए। राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, शशिकांता प्रजापति, दतरंगी से हैं नोखेलाल वर्मा।

श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, पेश है मासूम फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीत संगीत आनंद राज आनंद का है और पसंद हमारे इन साथियों की। भाटापारा से हैं बचकामल मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, छुआराम, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम, राधेश्याम, लतिल प्रसाद, सियाराम, अश्वनी पांडे, सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा और रायपुर से नीलू मेक। हथनी पारा भाटापारा से हैं दुर्गा दुर्गेश्वरी, मुकेश वर्मा, हरीश किरण दुलारी वर्मा, अनुराधा और यामिनी वर्मा। नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, दामिनी वर्मा और राजनंदगांव से नारायण लाल साहू, मनहरण, जीवेंद्र प्रताप साहू, कुलवंतिन बाई, यशोदा, नेहा और मिलिंद कुमार साहू। रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय, तुषार, डॉली, पूजा, प्रभा देवी तामुरिया और राजनंदगांव से हैं योगेश, आशा, नीरज, नीलेश और अंजलि। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है लुथरा खमरिया से हमारे इन साथियों ने, नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अजीज़। तो लीजिए पेश है इन सभी की पसंद पर मासूम फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए, पेश है अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में, दाग द फायर फिल्म से, समीर की रचना, राजेश रोशन का है संगीत, और पसंद इन श्रोता साथियों की, पोड़ी लाभा से विद्यानंद साहू।

त्रिवेणी रानी बबली सुमन मंटू मिष्टि सृष्टि दृष्टि गन्नू गणेश काना कृष्णा अंशु करेली से रामधार सिंह ध्रुव संजय कुमार संजू कुमार जांजगीर से दुर्गा प्रसाद हेमदेव उमाबाई मीनाक्षी अंजुलता अमन कुमार विष्णु प्रसाद मोगरा देवी मिश्रा और प्यारे लाल मिश्रा। इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गज भैये राधिका अनिष्का तन्मय और बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन कौशल्या हेमलता और डिंपल देवांगन ने।

श्रोताओं, ये था आपकी पसंद कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे आपने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वर में दाग द फायर फिल्म से। और अब इसके साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के इस वक्त 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है नए तराने, नए तरानों के सफ़र का पहला नया तराना। हम आपकी नज़र करते हैं हैदर फिल्म से सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। शब्दों के मोती पिरोए हैं गुलजार ने और इस गीत को संगीत से सवारा है विशाल भारद्वाज ने। लीजिए पेश है।

0: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए। आपकी रक्षा में
1: पूरी। श्रोताओं, नए तराने इस कार्यक्रम का अगला तराना हम आपकी नजर कर रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में, ओ रोमियो, इस फिल्म से।

श्रोताओं, नए तरानों के सफर का अगला तराना लीजिए, सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में रंगून फिल्म से।

0: श्रोताओं, नए तरानों के इस सफर का अगला गीत आप तक पहुंचाने से पहले आइए इस वक्त सुनते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार मित्रों, हमेशा की तरह यातायात संबंधी सूचनाओं के साथ कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर के लिए मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सभी गांव में, सभी कस्बे में या पूरे शहर में, कुल मिलाकर संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। जिले की यातायात व्यवस्था हमेशा सुगम एवं सुरक्षित बनी रहे, इसके लिए आप सभी से अनुरोध है हमेशा यातायात नियमों को अपना कर चले। मित्रों, आप किसी भी वाहन के साथ यात्रा में हो तब सड़क सुरक्षा की नजर से हमेशा वाहन में मानक कलपुर्जे या उपकरण का होना नितांत आवश्यक है, किंतु हमारी नई पीढ़ी आजकल के चकाचौंध में अपने वाहनों में अमानक कलपुर्जे या उपकरण का उपयोग कर रहे हैं जो पूर्णतः असुरक्षित है, खतरनाक है। यही कारण है कि सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिसमें लोग घायल हो रहे हैं या मारे भी जा रहे हैं। जैसे वाहन कोई भी हो, हमेशा उचित एवं सुरक्षित प्रकाश हेतु मानक बल्ब का उपयोग करना चाहिए, किंतु अक्सर लोग मेड इन चाइना के चकाचौंध करने वाले बल्ब का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही हेडलाइट के अतिरिक्त कुछ और अलग से आंखों में चुभने वाला तेज प्रकाश युक्त बल्ब लगाते हैं। इन बल्बों का तेज अमानक प्रकाश आंखों को कष्ट पहुंचाता है तथा रात के समय लोग अपने वाहन में अतिरिक्त अमानक प्रकाश वाला अमानक सर्च लाइट लगा कर चलते हैं। इसके प्रकाश से सामने से आ रहे व्यक्ति को सड़क में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, जिससे किसी भी गंभीर सड़क दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः बल्ब मानक लगावें, अमानक नहीं। इसी प्रकार बुलेट जैसे दोपहिया वाहन में लोग मानक साइलेंसर को निकालकर तेज कर्कश एवं कान फोड़ो आवाज वाले अमानक साइलेंसर लगाकर तेज आवाज करते चलते हैं, जो सर्वथा अनुपयुक्त है, घातक हो सकता है। इस अमानक साइलेंसर की तेज कर्कश आवाज नवजात शिशु, बीमार व्यक्ति या वृद्ध के लिए प्राण घातक हो सकती है। अतः हमेशा मानक साइलेंसर का उपयोग करें, अमानक नहीं। वैसे ही लोग अपने वाहनों में अमानक हॉर्न लगाकर शोर शराबा करते, कान फोड़ू एवं कर्कश आवाज के साथ चलते हैं, जो सबके लिए कष्टप्रद है। अतः हमेशा अपने वाहनों में मानक हॉर्न का उपयोग करें, अमानक नहीं। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज का ट्रैफिक अपडेट। लीजिए पेश है कार्यक्रम में लापता लेडीज फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना लापता लेडीज़ फिल्म का ये गीत। अब लीजिए पेश है एक थी डायन, इस फिल्म का गीत पद्मनाभ गायकवाड़ और रेखा भारद्वाज की आवाज़ें हैं। गुलजार के लिखे बोल हैं, विशाल भारद्वाज का संगीत है। लीजिए सुनिए।

एक थी डायन, इस फिल्म का गीत रेखा भारद्वाज की आवाज में अभी आपने सुनी। ये था नए तराने कार्यक्रम का अंतिम नजराना, और इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के इस वक्त 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी हमारे ही केंद्र से।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है। इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिर परिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं, अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओं, आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओं, एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के

किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहाँ। जी हाँ श्रोताओ, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओं, आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें, पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है, और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे 2 मिनट बात तो कर ले। श्रोताओं, ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओं, एक सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? अब क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओं, आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या? तो श्रोताओं, वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकालकर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें? तो मैं कहूंगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से, अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है, फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओं, अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है? यही तो बात है श्रोताओं, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे, इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं, मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं, जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, और आपको जो खुशी मिलेगी, उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए 5 आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है। नहीं, ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह। जी, उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।

0: सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं जी। और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: May I come in, Mr. Henry?
2: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी, मैंने आपको बुलाया था। I have a good news for you. आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
2: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
3: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
1: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है, जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
3: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
4: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
5: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
3: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
5: भाई जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
6: बिल्कुल सही कहा आपने।
3: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
6: जी जी, चलो चलो देखते हैं।
3: चलो चलो चलो चलो, चलो चलो जल्दी चलो।
7: अहोम के महाराज की जय हो।
8: जय हो, जय हो।
7: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बिशु के साथ।
9: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: अति सुंदर। हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में ये संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से

0: फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
1: महाराज की
2: जय हो।
1: महाराज की
2: जय हो।
1: महाराज की
2: जय हो।
3: तो साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
4: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
5: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
3: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
5: अच्छा।
3: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
5: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
3: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
5: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
3: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
5: ओह।
3: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
5: अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
3: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
5: ओह।
3: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है, जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है, जहां भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
5: अच्छा।
3: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
5: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
4: जी।
5: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
3: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है।
5: जी।
3: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
5: बहुत सुंदर। मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा, तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी, खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

0: वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।
1: वाओ, कितना सुंदर बाग है, कितने सुंदर फूल हैं, और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं, मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही है।

जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?

0: खुशी के पापा, पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
1: कमजोर भी हो गई है।
0: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
1: ठीक कह रही हो तुम, पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
0: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया इसे।
1: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई? अरे नमस्ते दीदी।
1: अरे भैया
2: नमस्ते। नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे,
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटे, जीते रहो। शाबाश
2: बेटा, मामा जी आए हैं। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया।
2: हाँ। है,
0: देखोगी? एक मिनट, कहाँ गया मेरा डब्बा? ये रहा। देखो बेटा, ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है। आई पसंद? और देखो ये भालू, ये डमरू बजाता है। देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये देखो, ये तो भूल ही गया था, कितनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। नो शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी आखिर हो क्या गया ऐसे? पहले तो ये ऐसे नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर। पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी, पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे इतनी कमजोर हो गई है।
2: मोहन जी, हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
2: दिखाया था
0: तो फिर?
2: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: हैं? कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा, देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो, इसे इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
3: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मगर मैं जा रही हूं।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा, ओफो, चली गई बिना खिलौने लिए।
3: आंटी आंटी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा।
3: अंकल नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
1: खुशी खुशी, देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
3: क्या है मामा?
1: देखो ना ताशु आई है।
3: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
4: नहीं ताशु, आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
3: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलती भी नहीं हो।
4: नहीं ताशु, मेरा खेलने का मन नहीं है।
3: खेल लो प्लीज।
4: प्लीज ताशु, मुझे नहीं खेलना है।
3: प्लीज।
4: नहीं।
3: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
4: ठीक है जाओ।
5: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है, वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
3: वाह चिड़िया, कितनी अच्छी है। तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी हैं। फूल फूल फिर से, वाह। तोते, तितलियां रंग बिरंगी, लाल पीली हरी।

0: अच्छा है नजारा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी,
1: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
0: मैं तो बाहर जा रही हूँ। अरे वहाँ देखो चिड़िया, तोते कितने सुंदर हैं।
1: अरे सुन तो,
0: नहीं मैं तो जा रही हूँ।
1: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
2: एक बात देखी तुमने?
1: हाँ।
2: यहाँ हम जब से आए हैं, खुशी की खुशी वापस आ गई है, तो वो बहुत खुश रहती है।
1: सही कहते हो आप।
2: हे ईश्वर, हे भगवान, तुमने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
3: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे, वहाँ पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे, तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे और ठीक 11:55 पर हम प्रादेशिक समाचार के लिए एक बार फिर से जुड़ेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। तो चलिए श्रोताओं, फिलहाल इस वक्त जुड़ते हैं विविध भारती से।

चंदन दास की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे, कलाम था बशीर बद्र का। लीजिए पेश है ये कव्वाली, यूसुफ आजाद कव्वाल और साथियों की आवाजें हैं।

शरत है कि जिसमें मर्द को ललकारने की हिम्मत है, पहन के सर पे दिलेरी का ताज बैठी है, जो घर में थी वो सिंहासन पे आज बैठी है, अगर झुके तो ये दिल क्या है जान भी दे दे, जो सर उठाए तो मर्दों की जान भी ले ले, अगरचे फूल का एक हार है यही औरत, जो जिद पे आए तो तलवार है यही औरत, ये पुतली बन के जमाने को मोड़ सकती है, उठे तो मर्द का पंजा मरोड़ सकती है।

0: सुनो जरा रायमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों क्यों नहीं जा सकते?
1: वो मैं
0: साहब बताओ क्या करना है 3 बजे?
1: करना नहीं है, सुनना है।
0: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
1: वो मुझे सखी सहेली सुनना है।
0: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
2: सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
3: सखी सहेली।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

gagareza, mama gagareza, dada mama gagareza, nini dada mama.

श्रोताओं, विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। सुबह के 11:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार के लिए एक बार फिर से हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। मुंगेली जिले में छत्तीसगढ़ का पहला हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा और सिपाही रक्षा सूत्र अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के से 1,11,000 राखियां देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए भेजी जा रही हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। मुंगेली जिले में BEML का हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित होगा। इसके लिए पथरिया तहसील के ग्राम चंद्रगढ़ी में शासकीय भूमि रियायती दर पर आवंटित करने के प्रस्ताव को राज्य मंत्री परिषद ने मंजूरी दे दी है। ये छत्तीसगढ़ का पहला हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र होगा। इससे जिले में औद्योगिक निवेश, रोजगार, कौशल विकास और सहायक उद्योगों के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर आज सुबह 11 बजे से रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र के सहयोग से पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कर रहे हैं। कार्यक्रम में राज्य की 10 माताओं को माता यशोदा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इन माताओं ने मातृ दुग्ध दान या अन्य शिशुओं को स्तनपान कराकर मानवता और मातृत्व की प्रेरक मिसाल पेश की है। रक्षाबंधन पर देश की सीमाओं पर तैनात वीर सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से महिला और बाल विकास विभाग ने ऑपरेशन

सिपाही रक्षा सूत्र अभियान के अंतर्गत 1,11,000 राखियां तैयार कराई हैं। गुढ़ियारी स्थित भारत माता चौक पर आयोजित कार्यक्रम में विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी शैल ठाकुर और अभियान के संयोजक महेंद्र प्रताप सिंह राणा को प्रतीकात्मक रूप से राखियां सौंपी गई। कोंडागांव से भी सिपाही रक्षा सूत्र अभियान के तहत भारत स्काउट और गाइड जिला संघ द्वारा 1,000 से अधिक रक्षा सूत्र देश के सैनिकों के नाम भेजे गए हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में विभागीय बैठक लेकर पारस राज्य प्रगति पोर्टल की समीक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वर्ष 2026 में आयोजित की गई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्य बोर्ड परीक्षा और दूसरे बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र 5 अगस्त से 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड सीएसएमसीएल घोटाले के सिलसिले में

0: 1000 से अधिक रक्षा सूत्र देश के सैनिकों के नाम भेजे गए हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में विभागीय बैठक लेकर पारस राज्य प्रगति पोर्टल की समीक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने वर्ष 2026 में आयोजित की गई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्य बोर्ड परीक्षा और दूसरे बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र 5 अगस्त से 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड CSMCL घोटाले के सिलसिले में कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार जेल से रिहाई के बाद अनवर को छत्तीसगढ़ छोड़ना होगा। ये निर्वासन सुनवाई पूरी होते तक जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग की 2021 में हुई राज्य सेवा परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक और भर्ती घोटाले में गिरफ्तार आयोग के पूर्व सचिव और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी जीवन किशोर ध्रुव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। रक्षाबंधन के अवसर पर राखी समय पर पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने 22 अगस्त तक राखी डाक से भेजने के लिए विशेष व्यवस्था की है। शासकीय ITI दुर्ग में 18 अगस्त को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और जगदलपुर के आड़ावाल स्थित जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में 10 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। मुंगेली जिले में छत्तीसगढ़ का पहला हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा और सिपाही रक्षा सूत्र अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से 1,11,000 राखियां देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए भेजी जा रही हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। अब से लेकर शाम के 4 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे और ठीक 4 बजे हम संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो चलिए श्रोताओं, फिलहाल इस वक्त जुड़ते हैं विविध भारती से।
2: सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
3: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
2: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होना निर्धारित है। वहीं राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा होनी है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कथा कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को कंटेंट क्रिएशन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। श्री मोदी ने कल नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। श्री नड्डा ने असम नागालैंड सीमा से लगे

0: सागर जिले के नेपाली खुटी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। भारत में श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो में श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने सुषमा स्वराज को सौम्यता और सादगी की मिसाल बताया। श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए में भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। लता मंगेशकर के स्वर में यह है पद्मा सचदेव का लिखा गीत, संगीत जयदेव का है फिल्म प्रेम पर्वत।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मशाल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल थे, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था। इजाजत फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। उमरा जान फिल्म की गजल सुनिए, तलत अजीज की आवाज में, शहर यार के बोल, खयाम का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी

0: नहीं दिल्ली क्या करोगे जाके? पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह? तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
1: एक और
0: गया
1: आ गई।
0: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

किताब फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं राहुल देवबर्मन की आवाज में। गुलजार के बोल हैं, संगीत राहुल देवबर्मन का।

नाम फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। मनहर उदास मोहम्मद अजीज की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। ये शराबी फिल्म का गाना है।

शराबी फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। तो दोस्तों, अब तक तो आपको प्रोग्राम का स्वरूप पता ही चल चुका होगा कि इसमें हम एक इबारत टेक्स्ट लिखते हैं फेसबुक पेज पर, विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और हमारे बहुत सारे श्रोता या कहें कि अनगिनत श्रोता टिप्पणी लिखते हैं और वो टिप्पणी इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। तो चलिए आज की इबारत हम पढ़कर सुना देते हैं, जो अभी तक विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं हैं उनके लिए खास तौर से। और इस इबारत में से आपको शब्द चुनने हैं और गाने चुनने हैं। अब ये नहीं कि बात विदाई की पकड़ ली और उसी पर बातें लिखें, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों के भावों को भी पकड़िएगा। तो अब हम इबारत पढ़ के सुना रहे हैं। वो भीगी दोपहर थी, रिमझिम फुहार पड़ रही थी, आंगन में रखी गुड़िया को देखकर अम्मा की आंखें भर आई। उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई, जिसकी विदाई को कई बरस बीत चुके थे। अब इसमें एक शब्द है बरस, इस पर कौन से गाने होंगे बताइए। उसने अम्मा से विदाई के समय कहा था, मेरी गुड़िया रख तो संभाल के, मोरा नहीं खेलन का चावरे बाबुल। और अब ये गाने की लाइन मैंने लिख दी है क्योंकि ये गाना आप कभी कभार सुनते हैं। तो क्या आपने इस गाने को कभी पहले सुना था? फिल्म का नाम जरा बताइए। और अब आगे इबारत आगे पढ़ रही हूं। फिर उसने कहा था, अम्मा मोरे बाबा को भेजो रे के सावन आया, फिर घर सूना हो गया। कभी इसी घर में भाई बहन की हंसी गूंजती थी, छोटी छोटी बातों पर रूठना मनाना चलता रहता था। आज पूरा परिवार साथ होते हुए भी घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। तभी बेटी का फोन आया, उसकी हंसी

सुनते ही अम्मा का चेहरा खिल उठा। सावन की फुहारों के साथ जैसे घर में फिर वही पुरानी रौनक लौट आई। सबने महसूस किया कि रिश्तों में प्यार बना रहे तो हर विदाई के बाद मिलन खुशियों से भर देता है। अब यहाँ पर बताइए, रिश्ता शब्द आपके पास आ रहा है और याद आ रही है, घर है, प्यार है, विदाई है, तो हमने आपको हिंट दे दिया, मतलब यूं कि हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, तो प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ बल्कि ये आपको हम हिंट दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। तो आप बताइए कि कौन से वो शब्द हैं जिनसे आपको गाने सूझ रहे हैं और कौन से वो भाव हैं जिनसे आपके भीतर जज्बात पैदा हो रहे हैं, तो वो जज्बात भी साझा करते चलिए और साथ में हमारी पहेलियों के जवाब भी। अब भला बताइए कि कौन है ऐसा जिसने विदाई की पीड़ा को न सहा हो, तो अपने अनुभव साझा कीजिए। आपने विदाई की, आप विदा हुए कहीं अपने घर से। विदाई सिर्फ बेटी की नहीं होती है, ससुराल जाते समय विदाई वो भी होती है जब आप कहीं पढ़ाई के लिए देश विदेश की यात्रा करते हैं, शहर छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, हॉस्टल में जाके रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, वो यादें, वो बातें, तमाम बातें साझा कीजिए। और अब हम शुरू कर रहे हैं सिलसिला और देखिए कि क्या यही गाना आपने सोचा था कि हम पहले नंबर पर रखेंगे, यही गाना या कोई और गाना। तो चलिए आज के शब्दों को चुनिए, गानों को चुनिए और यादों को चुनिए, यादों को खंगालिए। शुरू कर रहे हैं सिलसिला परख फिल्म का गाना। बताइए हमें गीतकार और संगीतकार का नाम क्या है।

परख फिल्म का गाना था। गीतकार संगीतकार शैलेंद्र और सलील चौधरी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, त्वरित जवाब दिया, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने कोई जवाब नहीं दिया है। और एक श्रोता नहीं बल्कि अनेक श्रोता लिख रहे हैं अब के बरस भेज मतलब बंदिनी फिल्म का गाना। तो इतने सारे श्रोताओं ने ये गाना लिखा है तो हमें लगता है वही गाना अब बजाया

जाए, लेकिन उससे पहले कुछ टिप्पणियां भी पढ़कर सुना दी जाए। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दिल को छूने वाली है, पर पढ़ के मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया है। समझ में नहीं आ रहा कि अपने बचपन की यादें बताऊं, बेटी की यादें साझा करूं। खैर, हमारा बचपन तो बहुत संघर्षमय रहा। माँ को तो कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी खेती बाड़ी के काम से, पर जब भी कभी नागपंचमी या राखी आती तो बाबा फोन करके पूछते रहते थे। आज भी पूछते हैं, बाई तू कभी ये, मतलब तुम कब आ रही हो। और बहुत सारे श्रोता विदाई पर कुछ बातें लिख रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि विदाई सिर्फ बेटी की विदाई नहीं होती है, या जो लड़कियां हैं औरतें हैं सिर्फ आपकी विदाई नहीं होती, बल्कि आप अपने बेटे को भी विदा करते हैं। आप अपनी बेटी को विदा करते हैं जब वो पढ़ने के लिए घर छोड़ते हैं, तो वो बातें भी साझा कीजिए। आप खुद हॉस्टल में रहे होंगे, वो यादें भी साझा कीजिए। और इसमें हम मिली जुली टिप्पणियाँ शामिल करते हैं, मिले जुले विषय को रखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि उस समय बरखा की कुछ बूंदें उन आँखों से भी छलक जाएंगी जब एक माँ अपनी बेटी की विदाई के समय को याद करते हुए उसकी यादों की गुड़िया के खिलौने को बड़े प्यार से निहार रही होगी। और एक श्रोता ने लिखा है अब के बरस तुझे धरती की रानी, मतलब बरस शब्द से इन्होंने ये गाना चुना है। तो शब्दों को पढ़ते रहिए और गाने चुनते रहिए। अब अगला गाना सुनते हैं बंदिनी फिल्म का। बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने को लिखा है। अब इसके बाद बंदिनी फिल्म के गाने के बाद कौन सा वाला गाना आना चाहिए वो भी जरा आप चुनिए, बताइए हीरोइन कौन है इसमें। इस फिल्म में हीरोइन का नाम पूछना है आपको। फिल्म है बंदिनी।

बंदिनी फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत और हीरोइन होती है फिल्म में नूतन। सभी श्रोताओं ने ये भी जवाब सही दिया है।

और एक श्रोता ने लिखा है कि ये गजब, आपने तो शुरुआत की फिल्म परख के गाने से ओ सजना बरखा बहार आई, बिल्कुल ये तो सोचा ही नहीं था। लेकिन क्यों नहीं सोचा था, इसमें फुहार शब्द कहीं आता है ना, और इबारत में है, इबारत में जो कुछ लिखा है उसमें कोई ना कोई ऐसा शब्द होगा जिसमें आपको गाना जरूर याद आएगा। हालांकि अब एक गाना हम ऐसा सुनवाने वाले हैं जो शायद आपने बहुत कम सुना होगा, और उस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात होगी, कोई खास याद होगी, तो जरूर साझा कीजिएगा। जरा इंतजार कीजिए, हम पहले टिप्पणी आपकी पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हमने पहली जॉब जहां थी उसी नगर से दूसरी जगह जाना हुआ, तब हमारे मकान मालिक और उनकी पत्नी ने हमें अपने बच्चों को विदाई देते हुए ऐसे रोते हुए ढेरों प्यार बरसाते विदाई दी थी। क्या बात है भाई, जब दरअसल अभी भी छोटे शहरों में जब बच्चे घर से पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी शामिल हो जाते हैं, या फिर जब बेटी अपने मायके आती है तो अड़ोसी पड़ोसी छतों से झांकते हैं, और जो जिनसे बहुत घनिष्ठ रिश्ता होता है वो मिलने भी तुरंत आ जाते हैं कि बेटी अपने ससुराल से मायके आई है। ऐसा ही कुछ समा होता है अड़ोस पड़ोस के साथ। हालांकि महानगरों में ये चीज़ें कम होती हैं क्योंकि महानगरीय व्यस्तता आड़े आ जाती है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि सावन का महीना बड़ा अच्छा माना जाता है, खास तौर से बहन बेटियों की यादें ताजा कर देता है। ये महीना एक तरह से प्रेम उमंग का महीना होता है। हमें वो दिन याद आते रहते हैं जब बहनें इस महीने में झूला डालकर झूला झूला झूला झूलती थीं, हम भी उनके साथ झूले पर झूलते थे। उधर रक्षाबंधन की भी याद दिला देता है, और सावन मास की तीज का त्यौहार तो एक बहनों का खास दिन हुआ करता था। मोहल्ले की सब बहनें मिलजुल कर इस दिन को खास तौर से एक पर्व के रूप में आज भी मनाया करती हैं। जब बहनें ससुराल जाती हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। ससुराल में चाहे उन्हें कितना भी सुख हो, पर वो आंगन याद आता है जब साथ साथ खेला करते थे। पुराने बचपन की याद ताजा हो जाती है, और वो गुड़िये वाले दिन कैसे नहीं याद आते हैं कि गुड़िया गुड़िया का एक संसार होता था, गुड़िया गुड्डे का। तो जब एक बेटी विदा होती है तो अपने माँ से क्या कहती है कि मेरी गुड़िया संभाल के रख दो, अब खेलने का समय नहीं रहा। लेकिन मन में ये आस जरूर होती है कि माँ गुड़िया संभाल के रखेंगी और जब मैं लौट कर आऊँगी तो इन्हें खेलूँगी। कुछ यही बात ये गाना कहता है, जरा सुनिए। फिल्म है तुम लौट आओ। अगर आपको पता है तो किसकी आवाज़ में ये गाना है जरूर बताइए। इस गाने से जुड़ी कोई खास बात हो, कोई खास याद हो तो साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

तुम लौट आओ फिल्म का ये गीत था, सरला भिड़े और शोभा जोशी के स्वर थे। अभी तक हमारे श्रोता नहीं बता पाए किन की आवाजें थी, हमने आपको बता दिया। चूंकि ये गाना आपको बहुत कम सुनने को मिलता है, इसलिए हमने जानकारी दे दी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज से 30 बरस पहले बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए अपने दो बच्चों को छोड़ने गई थी, वो याद आ गया आंख में आंसू के साथ। शायद लेडीज समझ पाएंगी कि बच्चों के जन्म के समय कैसा दर्द होता है। बिल्कुल वही दर्द मैंने उस दिन महसूस किया जब बच्चों को छोड़ा था। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि विदा दुनिया के सबसे मार्मिक शब्दों में से एक है। एक विदा ऐसी भी होती है कि अब इस जन्म में उससे मिलने की आस खत्म हो जाती है। ऐसी विदा जीवन भर दुख दे जाती है। बेटियों की विदाई में तो सुखम दुखम का क्रम चलता रहता है। विदा कैसी भी हो, जाने वाले कभी पूरी तरह से नहीं जा पाते। वे रह जाते हैं कोई पुरानी तस्वीर में, कोई अधूरी बातों में, और उन जगहों में जहां हमने साथ मिलकर एक वक्त गुजारा था। एक श्रोता ने लिखा है कि परिवार में माता पिता भाई बहन का रिश्ता एक मजबूत डोर से बंधा होता है। रूठना मनाना चलता रहता है। बेटी की विदाई एक सूनापन सा एहसास देता है। बेटी के फोन पर हंसी सुनकर घर में खुशी और रौनक फिर से सबके मन में खिल उठती है। बस इन्हीं शब्दों से गाना चुनिए आप। बेटी शब्द इसमें आया है, विदाई तो है ही, रूठना मनाना है, हंसी है और फोन भी है। तो फोन शब्द से कौन सा गाना आपको याद आ रहा है, हम सुनवाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी कुछ गाने सुझाएं। फिलहाल चोरी चोरी फिल्म का ये गाना सुनिए। रचना किसकी है आप बता सकते हैं, और संगीतकार का नाम भी बताइए।

बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, बहुत ही भावुक गाना सुनाया। और इसके पहले जो गाना सुनवाया था, बिछड़ी मेरी सहेलियां तुम लौट आओ, इसके लिए भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और ज़्यादातर श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना हमने पहली बार सुना, ये गाना हमने कम सुना, और बहुत ही भावुक कर देने वाला ये गाना था। सचमुच कई बार हम गीत सुनकर ही जज्बाती हो जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा भी है कि आज मुझे 35 साल पुरानी बात याद आ गई, जब हम छत्तीसगढ़ से ट्रांसफ़र होकर आ रहे थे तो जो मकान मालकिन थी, जिसे वहाँ दाई कहते थे, वो इतना रोई और एक बेटी की तरह मुझे विदा की। रास्ते के लिए खाना भी रखा और साड़ी भी दी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सावन के गीतों को सुनने का आनंद मिलेगा। सावन के दिनों में अपनों से बिछड़ने का दुख होता है, पर याद कर घर जाकर मिलने की आस भी रहती है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब वो खुद विदा की जाती है और बेटी होगी तो उसे शादी करके विदा किया जाता है, वो मंजर बहुत भावहीना होता है। अगर बेटी या बेटा पढ़ने या नौकरी के लिए विदा होते हैं तो एक एहसास होता है लौट के फिर आएंगे। मेरी बेटी पुणे से कोंकण नौकरी के लिए गई थी, तब पहली बार उसके पापा की आंखों में आंसू देखे थे। सचमुच विदा किसी भी तरह का हो, विदा दुख देता है, आंखों में आंसू ला देता है। बहरहाल अब चलिए जरा बरखा की बूंदों में भीगा जाए। चिराग फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और इसमें पहेली है। पहेली ये कि आपको बूझना है कौन है हीरो हीरोइन और साथ में गीतकार संगीतकार। हीरो हीरोइन का नाम बूझिए और गीतकार संगीतकार का नाम बूझिए। फिल्म चिराग। और भी कोई गाना याद आ रहा है इन शब्दों पर इबारत वाले, वो भी आप लिखते चलिए। अगर बहुत सारी फरमाइश आ जाएगी कि इन यही गीत है जो इबारत वाले शब्द है, तो वो गाना हम आपको सुनवाएंगे।

इसके बाद बताइए फोन वाला गाना कौन सा याद आ रहा है आपको, जिसमें जिस गाने में फोन शब्द हो। बेटी जब जाती है ससुराल तो फोन करती है ना, टेलीफोन, तो बताइए वो गाना।

0: चिराग फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था, हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, आशा पारिख और सुनील दत्त। एक श्रोता ने लिखा है कि विदाई की बात आई तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब माता पिता पढ़ाई करने या जॉब करने अपने बच्चों को स्टेशन छोड़ने जाते हैं, मम्मियों के आंसू नहीं रुकते, जिसकी मैं स्वयं साक्षी हूँ। भोपाल से हम सफर एक्सप्रेस पुणे मुंबई चलती है, उन माओं में मैं भी शामिल थी जिनके आंसू सबको जानते हुए रुक नहीं रहे थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो सावन की बात है, ऐसा लगता है कि ममता जी की आंखों में भी सावन होगा। तो एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने रुला दिया वो गाने सुनाकर, मेरे ख्याल से इस गाने की बात है, बिछड़ी मोरी सहेलियां और अम्मा मेरे बाबुल को भेजोरी। ये ऐसे गाने हैं जिन्हें सुनकर किसकी आंखें नम नहीं होती हैं। तो इन्होंने आगे लिखा है कि आज न मम्मी है न पापा है, एक भाई है, हमसे बहुत प्यार करता है लेकिन वो अपने परिवार के लिए मजबूर है, इसलिए फोन पर ही बात हो जाती है। आज मन बहुत भावुक हो रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि परख फिल्म का जो गाना आपने सुनवाया, बेहद लोकप्रिय गीत, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना और बरखा से जुड़ा हुआ, बारिश की रस भरी फुहार, किस तरह से पेड़ पौधों के साथ साथ हमारे दिलों में भी प्रेम रस का संचार करता है ये गाना, उसी का वर्णन है इस गीत में। सलिल चौधरी के शास्त्रीय लोक और पहाड़ी धुनों को मिलाकर बनाए हुए गाने इतने ज्यादा मीठे लगते हैं सुनने में कि जब भी हम इन्हें सुने तो कितने भी तनाव में हो मन प्रसन्न हो जाता है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि आप ये गाना सुनवा देंगे। कई बार उम्मीद के विपरीत गाना सुनवाने में भी बड़ा आनंद आता है, लेकिन अब जो गाना सुनवाएंगे वो हम आपकी उम्मीद के मुताबिक ही सुनवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है। हमने पूछा था कि कौन सा गाना फोन पर याद आ रहा है, टेलीफोन पर, कि जब बेटी विदा होती है, जो अम्मा है इस इबारत में, कि अम्मा कहती हैं कि फोन आया बेटी का और उनके सामने यादें साझा हो गई, तो फोन वाले गाने हमने आपसे पूछे थे। अभी तक तो सिर्फ इसी गाने की फरमाइश आई है। फिल्म का नाम बता सकते हैं तो बताइए, जरा जल्द बताइएगा फिल्म का नाम।
1: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ।
0: किसकी है आवाज ये भी बताइए।
1: देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। आप बताइए अपने अनुभव कि टेलीफोन जब करते हैं तो कितनी देर बतियाते हैं, और टेलीफोन से जुड़ी हुई कौन सी याद है, कोई खास बात है तो वो आप साझा कर सकते हैं। हमने पूछा था फिल्म का नाम पतंगा, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया, और शमशाद बेगम और चितलकर की आवाजें थी, ये भी सही बताया हमारे श्रोताओं ने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बात 1974 की होगी, जब हम नौकरी की खोज में जम्मू गए थे, जहां एक मित्र मिल गया जिसने महीने भर अपने घर रखा, और नौकरी न मिलने पर वो हमें छोड़ने जम्मू रेलवे स्टेशन पर आया था। ट्रेन चढ़ने पर भी मैं रो रहा था और वो भी रो रहा था। कुछ वर्षों तक बातचीत पत्रों से होती रही, लेकिन कुछ समय बाद उसके खत नहीं आए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज भी जब सावन की पहली फुहार पड़ती है तो उसकी विदाई का दिन याद आ जाता है, भीगी आंखों से उसे विदा किया।

किया था और मुस्कुरा कर कहा था, खुश रहना। उस दिन समझ आया कि माँ बाप की दुआओं में कितना साहस छिपा होता है। बेटी चली जाती है लेकिन उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी यादें हमेशा घर के आंगन में गूंजती रहती हैं। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत पुरानी यादों में ले जाकर आंखों में आंसू ले आए। आज माता पिता बहन इस दुनिया में नहीं, लेकिन यादें ताजा हो गईं। उस घर की जो जन्मभूमि रही, जहां छोटा सा परिवार हंसी खुशी सपनों के साथ रहता था। सावन माह कुछ ज्यादा ही याद आता है। ऐसा कोई सावन नहीं गुजरा जब माँ के पास नहीं गई। छुट्टियां नहीं मिलने पर भी एक ही दिन में आना जाना कर लेती थी। अब बरसों से सावन उदासी लेकर आता है, बस यादें ही शेष हैं। यादों में विदाई सबके बसा हुआ। सारे श्रोता आज विदाई की बात लिख रहे हैं और अपनी अपनी यादें खंगाल रहे हैं। जरा अब एक और गाना सुनिए इसी तरह और साझा कीजिए अपनी यादें, और साथ में हमें ये भी बताइए कि किसकी है ये आवाज। हीरो हीरोइन का नाम तो आपको पता ही होगा। फिल्म हम आपके हैं कौन,

हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, सभी श्रोताओं ने बूझा, शारदा सिन्हा की ये आवाज़ थी और कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। हालांकि इसमें हीरो हीरोइन होते माधुरी दीक्षित, सलमान खान के भी बताया है श्रोताओं ने। और विदाई से जुड़ी हुई बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का टॉपिक बहुत ही भावुक कर देने वाला है, अभी मेरी बिटिया की विदाई का समय तो दूर है पर आज ही अपनी विदाई का वक्त याद कर आंखों में आंसू आंसू जरूर आ जाते हैं। और

0: और इन्होंने बाबुल मोरा नैहर छूटा जाए ये गाना भी लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत आज की इबारत हर बेटी के मन में बसे सावन की साझा स्मृति है। सावन केवल पेड़ों पर नहीं उतरता, वो यादों की शाखों पर भी झूलता है। भीगी दोपहर, आंगन में रखी गुड़िया और अम्मा की नम आंखें मिलकर उस रिक्तता को स्वर देती हैं जिससे हर बेटी की विदाई घर की चौखट पर छोड़ जाती है। वो गुड़िया महज एक खिलौना नहीं, बचपन की आखिरी अमानत है। और सावन आया केवल ऋतु का संदेश नहीं, बल्कि उस बेटी की मौन पुकार है जो मायके की दहलीज, अम्मा की गोद और बाबुल के स्नेह को एक बार फिर जी लेना चाहती है। पर माँ का मन वहीं ठहरा रहता है जहाँ विदा होती बेटी ने आखिरी बार मुड़कर देखा था। चलिए, अब हमने आपसे पूछा था भाई बहन वाला कौन सा गाना आपको याद आया, तो कहीं ये गाना तो नहीं है? सुनिए और बताइए फिल्म का नाम।
1: मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया।
0: हीरो हीरोइन का नाम भी आपको पूछना है।

इस गाने को सुनते हुए बहुत सारे श्रोताओं को भाई बहन वाले गाने याद आए, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है किसी महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो भाई बहन वाले गाने बहुत याद आते हैं। और शारदा सिन्हा के लिए लिखा है कि शारदा सिन्हा बिहार की कोकिला कही जाती थी। और एक श्रोता ने और लिखा है, भाई बहन का त्यौहार आने वाला है, रक्षाबंधन का गीत, बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, फूलों का तारों का सबका कहना है, और बाबुल की दुआएं लेती जा, ये गाना लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि शायद वो सावन भी आए जो बहन सा रंग ना लाए, बहन पराए देश बसी हो अगर वो तुम तक पहुंच ना पाए, ये कविता की पंक्तियां लिखी हैं इन्होंने। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई बहन पर फिल्म छोटी बहन का गाना याद आ रहा है, वो बहुत अच्छा लगता है। और गाने सुनते जा रहे हैं, एक श्रोता ने लिखा है, गाने सुनते जा रहे हैं, आंखें साफ हो रही हैं, भावुक हो रहे हैं, बस यही चल रहा है आज के प्रोग्राम के साथ। और एक श्रोता ने लिखा है, सच्चा झूठा फिल्म का ये गाना था, और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, मुमताज इस फिल्म में हीरो हीरोइन होते हैं। और टेलीफोन से जुड़ी हुई हमने बात पूछी थी कि टेलीफोन वाला जो गाना सुनवाएं तो आप अपनी यादें साझा कीजिए, तो श्रोताओं ने लिखा है कि अगर फोन पर पिता पुत्र बात कर रहे हैं तो केवल कुछ मिनट मतलब की बात होती है, अगर माँ बेटी की बातें हों तो समय असीमित होता है, यूं समझ लीजिए घंटों घंटों कुछ मिनट के समान होते हैं। एक श्रोता ने, बिल्कुल सही बात है कि जब माँ बेटी बतियाने लगती हैं तो भूल जाती हैं कि हम टेलीफोन पर बतिया रहे हैं, लेकिन आजकल जो दो दोस्त बात करते हैं तो वो भी अनलिमिटेड बातें होती हैं, पता नहीं चलता समय का। एक श्रोता ने लिखा है कि हम 8वीं कक्षा में पढ़ने के लिए भेजा था अपने बड़े बेटे को, तो पति पत्नी दोनों को कहीं कई दिनों तक याद आती थी, सभी समझते थे कि पढ़ाई करने गया है, लेकिन परिवार से अलग होने का बिछोह ज्यादा होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने 2002 में लैंडलाइन फोन के लिए आवेदन किया था, बहुत इंतजार के बाद हमें फोन मिला था। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं अनाउंसर बनी थी, इलाहाबाद से रीवा जा रही थी, 3 जुलाई 1987 को सुबह 6 बजे की बस पर बैठी थी और 9:30 पर रीवा पहुंची थी, बस की खिड़की के बाहर मुंह करके बैठी रही, पानी बरसता रहा और घर छोड़कर मैं रोती रही कि कहीं हमारे पापा हमारी रोती हुई शक्ल ना देख लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब जरा रूठने मनाने की बात भी इबारत में हुई थी, तो ये गाना सुनिए और बताइए कौन है हीरोइन, और साथ में गीतकार संगीतकार का नाम भी बूझिए। फिल्म का नाम सीमा।

सीमा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था। और हमने पूछा था कौन है कलाकार, सभी श्रोताओं ने बताया नूतन। और कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां हम शामिल कर दें, उससे पहले जो अब हम गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं उसके बारे में एक सवाल पूछ लें। दाता फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, उसमें आपको पूछना है कौन है इस फिल्म में कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम आपको पूछना है। और आपको बता दें, एक श्रोता ने लिखा है, सच्चा झूठा फिल्म का जो गाना आपने सुनवाया ये अमर रहेगा, क्योंकि जैसा किशोर दा ने गाया है ऐसा कोई गा नहीं सकता, उन्होंने जो भाव से गाया है वो भाव अमर है। एक श्रोता ने लिखा है कि विदाई शादी के बाद तो विदाई होती है, विदाई भाई बहन से, बिछड़ने का वो बचपन जहां हम मिलकर खेले, झगड़े किए, फिर मिल गए। जब जब मायके जाती हूं तो आते समय आंखें अपने आप भर आती हैं, सालों बीत जाने के बाद भी एक दूसरे से बिछड़ने का दुख आज भी हमें सताता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बेटी जब अपने ससुराल से पीहर मेरे घर आती है और कुछ दिन रहने के बाद जब उसे वापस ससुराल जाना होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि घर पूरा सूना हो गया है। चलिए सुनते हैं ये गाना।

दाता फिल्म का ये गाना सुनते हुए बहुत सारे श्रोता फिर भावुक हो गए और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आने लगी। एक श्रोता ने अभी भी लिखा कि मैंने अपनी विदाई की बातें तो बताई ही नहीं। मेरी विदाई पर सारे घर वाले हम लोगों को ट्रेन पर छोड़ने आए थे, ट्रेन चल रही थी और वो लोग भी रोते रोते चलते रहे। आज कोई भी न छोड़ने वाले हैं न रोने वाला है। अब दरअसल व्यस्तताएं इतनी बढ़ गई हैं लोगों के घरों में कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि एक कोई जाता है परिवार से और 10 लोग परिवार के छोड़ने आते हैं। बहरहाल अब प्रोग्राम का सफ़र हो रहा है ख़त्म। प्रोग्राम का सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

श्रोताओ नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी मुस्कुराहट पर। मुस्कुराहट चेहरे का केवल एक भाव नहीं बल्कि मन की सुंदर भाषा है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। एक छोटी सी मुस्कान किसी उदास मन में आशा का दीप जला सकती है और किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी अपनापन जोड़ सकती है। मुस्कुराहट वो फूल है जो बिना मौसम के भी खिलता है। ये चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ व्यक्तित्व में भी आकर्षण भर देती है। कठिन परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति मुस्कुराना जानता है वो जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और विश्वास के साथ करता है। कभी कभी किसी की एक सच्ची मुस्कान थके हुए मन को सुकून दे जाती है। ये रिश्तों में मिठास घोलती है, दूरियों को कम करती है और वातावरण को सकारात्मक बना देती है। मुस्कुराने के लिए किसी बड़े कारण की आवश्यकता नहीं होती। कई बार छोटी छोटी खुशियां भी होठों पर मुस्कान ले आती है।

मुस्कुराहट ईश्वर का दिया हुआ ऐसा उपहार है जिसे बांटने से कम नहीं होता बल्कि और भी बढ़ता जाता है। ये जीवन की राहों में आशा, प्रेम और विश्वास का प्रकाश फैलाता है। मुस्कुराहट वो खामोश कविता है जिसे चेहरा लिखता है और दिल पढ़ लेता है। कहते हैं एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हजार शब्दों से अधिक प्रभाव डालता है। किसी परेशान व्यक्ति को दी गई छोटी सी मुस्कान उसके मन का बोझ हल्का कर सकती है। ये वो अनमोल उपहार है जिसे देने में कोई खर्च नहीं होता, फिर भी इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। मुस्कुराहट जीवन की कठिन राहों में एक सहारे की तरह होती है। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, तब भी चेहरे पर बनी रहने वाली मुस्कान हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है।

मुस्कुराहट रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ाती है। घर में माता पिता की मुस्कान बच्चों को सुरक्षा का एहसास देती है, दोस्तों की मुस्कान मित्रता को गहरा बनाती है और किसी

अनजान व्यक्ति की मुस्कान भी पल भर में एक सकारात्मक संबंध बना सकती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग चिंता और तनाव से घिरे रहते हैं, ऐसे में मुस्कुराहट मन को शांति देने वाली औषधि के समान है। ये वातावरण को हल्का बनाती है और जीवन को सुंदर दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। मुस्कुराहट केवल खुशी के समय की पहचान नहीं है, बल्कि ये संघर्षों के बीच भी उम्मीद बनाए रखने की ऐसी शक्ति है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छुपकर भी अपनी रोशनी नहीं खोता, वैसे ही मुस्कुराता हुआ इंसान कठिनाइयों के बीच भी अपनी सकारात्मकता बनाए रखता है। एक सच्ची मुस्कान चेहरे की सुंदरता से अधिक हृदय की सुंदरता को दर्शाती है। मुस्कुराहट वो दीपक है जो स्वयं जलकर भी दूसरों के जीवन में उजाला भर देता है। इसे बांटते जाइए, क्योंकि यही जीवन को सरल, सुंदर और मधुर बनाती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मोकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की। और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
2: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जैसा

0: पाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा मुंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जांच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान 2 चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नियत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
2: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a Viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, दैट शुड बी द कमिटमेंट।
1: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
3: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान

0: राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
1: अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है, क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे, ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। से इश्फाक शाह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
2: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गदेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
3: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
2: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं, वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे

0: के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।
2: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में राजा मेहदी अली खां के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। आइए अब सुनते हैं माय लव फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, दान सिंह का संगीत है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: साज और आवाज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। कुमार बाराबंकी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: परवाना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: Thank you.

मुकेश की आवाज में, गुलशन बाबरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सुनिए के प्रोग्राम का आखिरी गाना, और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हमराही फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल थे। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं विश्वास फिल्म का गाना।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है आरती श्रीवास्तव, तो आरती भी तुम्हें मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: मंजरी आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: और आरती बताओ कैसी हो, कैसा लग रहा है आज का दिन तुम्हें, कैसा लग रहा है?
2: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बीच में जब धूप खिल जाती है ना तो मौसम एकदम खुशगवार हो जाता है।
1: और खिली धूप में जब बारिश के भीगे हुए पत्ते होते हैं ना तो बिल्कुल चमकदार लगते हैं, धूले साफ लगते हैं, तो मन बड़ा वैसे भी आनंदित हो जाता है। और बारिश लगातार होती है तो लगता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भाई धूप थोड़ी निकले, क्योंकि कपड़े वपड़े सूखे, जो सीलन है वो सब गायब हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। और देखो आज हम लोग बात भी करने वाले हैं, विषय बता देते हैं पहले कि उपयोगी टिप्स में हम बात करने वाले हैं बारिश में घर की सफाई।
2: तो आप लोग किस तरीके से बारिश में अपने घर की सफाई करते हैं, या क्या आप उपाय अपनाते हैं अपने घर को साफ रखने के, और जो थोड़ी सी सीलन वाली एक महक सी आ जाती है उसको दूर करने का आप क्या उपाय करते हैं, तो आप हमें लिख कर भेजिए।
1: और देखो बहुत सारे हमारे साथियों ने संदेश भी भेज रखे हैं इस पर, और मुझे कुछ कहना है जो आज हम सेगमेंट लेते हैं उसमें, वो चिट्ठियों का जमाना।
2: तो भाई वो चिट्ठियों का जमाना जो था ना वो कभी पुराना हो ही नहीं सकता,
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी यादें बसी हुई हैं,
2: मन में बसी हुई हैं। और हम चाहेंगे कि जो भी आप भेजते थे चिट्ठियां और आपके पास चिट्ठियां आती थी, तो उसका जो आपका अनुभव है वो आप अपना अनुभव जो है वो हमें लिख कर भेजिए, हमारे साथ साझा करिए उन यादों को, तो हम एक बार फिर से उन पलों को जी लेंगे।
1: बिल्कुल जी लेंगे। और आज और क्या हम लेकर के आए हैं?
2: आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत कोलक कैल देवी की अम्मा जो पराणविद हैं, और साथ ही हम लेकर आए हैं लुप्त होती पारंपरिक कलाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो आपके पास जो भी इनके बारे में जानकारी है आप हमें लिखकर भेजिए, और आप किस तरह से इनसे जुड़े हुए हैं अगर ऐसा भी कुछ है तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं।
1: तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं हम लोग गीत, फिर आगे करेंगे बातें।
2: बिल्कुल।

0: रुक अदाओं के साथ फिरते कदम पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
1: ओ केटिको बर्फ बदन है।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
2: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
2: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
0: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से।

0: और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
1: निकला गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
2: हाँ तो मंजरी, अब हम बात करते हैं अपने जो नया सेगमेंट जो हम ये लेते हैं कहानी पद्मश्री की। तो इसमें हम आज बात करेंगे कोलक कैल देव की अम्मा, जो कि पर्यावरणविद हैं, यानी पर्यावरण की रक्षा कह समझ लीजिए। तो देव की अम्मा के दादाजी जो थे वो एक वैद्य थे। उनका देव की अम्मा के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था और उन्हीं की वजह से देव की अम्मा में पर्यावरण के प्रति प्रेम जागृत हुआ। उनका विवाह हुआ गोपाल कृष्ण पिल्लई से, जो एक अंग्रेजी के शिक्षक थे। उनके परिवार में सभी महिलाओं को कृषि कार्य करना अनिवार्य था।
3: और देव की अम्मा 1980 तक अपनी सास के साथ धान की खेती में सहयोग करती रहीं। जब उनके पैर में चोट लग गई और उन्हें चलने फिरने से मना कर दिया गया, उसके 3 साल बाद उन्होंने अपने घर के पीछे एक पौधा लगाया और इस तरह उनकी बागवानी की शुरुआत हुई।
2: बिल्कुल। और केरल के अलप्पुझा जिले में उनके घर के आंगन में उन्होंने थोड़े ही समय में एक हरा भरा जंगल उगा लिया था। देव की अम्मा याद करते हुए कहती हैं कि मैं पहले धान की खेती बड़े चाव से करती थी, लेकिन दुर्घटना के बाद मैं लगभग 3 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही और मुझे धान की खेती छोड़नी पड़ी, लेकिन इससे मुझे एक और महत्वपूर्ण काम करने का मौका मिला।
3: परिवार के सदस्यों की मदद से मैंने 35 साल पहले पौधे लगाना शुरू किया था। तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जगह जो है वो जंगल बन जाएगी। उनके पति और परिवार ने उनका मनोबल बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनके पति हर दिन उनके लिए बीज और पौधे लाते थे। आज भी उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और दोस्त उन्हें नियमित रूप से पौधे और बीज भेंट करते हैं।
2: बहुत बहुत ही अच्छी बात है। एक इतनी अच्छी चीज की शुरुआत करी है ना, कि बीज और पौधे देना मतलब कि आप पूरी प्रकृति को सुरक्षा दे रहे हैं। और देवकी अम्मा कहती हैं कि वन संरक्षण में मुझे अपने बच्चों, पोते पोतियों और उनके बच्चों से भरपूर सहयोग मिलता है और वो इसमें बड़ा योगदान देते हैं और वन की सर्वोत्तम तरीके से रक्षा करना चाहते हैं। उनकी पोते पोती छुट्टियों के दौरान उनसे मिलने आते हैं और उनके इस नेक काम में पूरे उत्साह से उनकी मदद करते हैं। उनसे प्रेरित होकर उनकी एक पोती ने पढ़ाई के लिए वनस्पति विज्ञान को चुना ताकि देवकी अम्मा के इस नेक काम में वो योगदान दे सकें।
3: और उनकी बेटी प्रोफेसर डी थैंक मड़ी, जो तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज में पर्यावरण विभाग में प्रमुख हैं, कहती हैं 4 पीढ़ियों ने मेरी माँ के वृक्षारोपण के इस सफर में अपना योगदान दिया। स्कूल की छुट्टियों के दौरान अम्मा की पोती पोते और उनके बच्चे पुराने पौधों की स्थिति देखने और नए पौधों को लगाने के लिए घर आते थे। और वो कहती हैं कि वृक्षारोपण को लेकर जो उत्साह और उमंग होती है वो किसी त्योहार जैसी होती है। पर्यावरण संरक्षण को अपना लक्ष्य मानते हुए देव की अम्मा पेड़ पौधों को उगाने और उनकी देखभाल करने के लिए केवल हरी जैविक खाद का ही उपयोग करती हैं। उनके इस जंगल में सागौन, महोगनी, इमली, आम, चीड़, बांस और उनके जैसे तमाम, करीब गिनती नहीं कर सकते लेकिन अधिक से 3,000 से भी अधिक वृक्ष वहां पर हैं।
2: बिल्कुल। और लक्ष्मी थारू, चीनी संतरा जैसे कुछ दुर्लभ पौधे भी पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में फल, सब्जियां और फूल देने वाले 200 विभिन्न प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों के अलावा इस जंगल में तालाब, एक आर्द्र भूमि और गाय, भैंस, बैल जैसे पशु भी हैं। और देव की अम्मा अपने काम पर गर्व करते हुए कहती हैं, पक्षियों और जानवरों को जाल लगाकर प्रतिबंधित करने के बजाय मैंने उनके लिए पानी और घोंसले की व्यवस्था की है।
3: परिणाम स्वरूप हम जंगल में मोर, बंदर और अमूर बाज, नील गाय, काला पंख वाला स्टिल्ट और पन्ना कबूतर जैसे विदेशी पक्षी भी देख सकते हैं। पर्यावरण के क्षरण को रोकने और प्रदूषण को कम करने के लिए वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता पर जोर देती हैं और कहती हैं पेड़ लगाना सबसे प्रभावी और व्यवहारिक विकल्प है।
2: बिल्कुल। उनका कहना है, हमारा परिवार पिछले 4 दशकों से पेड़ लगाकर कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहा है। उन्होंने जल समस्याओं से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है और अब ये वन एक शैक्षिक और पर्यटन स्थल बन गया है। बड़ी संख्या में वनस्पति विज्ञानी, पर्यटक, शोधकर्ता, छात्र देवकी अम्मा से सामाजिक वानिकी के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आते हैं
3: और देवकी अम्मा उन्हें विभिन्न वृक्षों के बारे में बताती हैं, उन्हें उनके महत्व को समझाती हैं और सतत उपयोग

0: योग एवं विकास के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के तरीके बताती हैं। अनुरोध करने पर देव की अम्मा जरूरतमंदों को पौधे भी उपलब्ध कराती हैं। उम्र के कारण अब वो नए पेड़ नहीं लगा सकती हैं और ना ही जंगल की देखभाल कर सकती हैं।
1: बिल्कुल। और लेकिन पेड़ों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए वो नियमित रूप से टहलने जरूर जाती हैं। उनकी बेटी ठेंकमड़ी कहती हैं, 5 एकड़ जमीन की देखभाल करना आसान काम नहीं है, लेकिन हर सुबह वो 5 मिनट के लिए ही सही टहलने जरूर जाती हैं। क्योंकि वो बहुत कम ही पौधे लगा पाती हैं, इसलिए वो पेड़ों से बातें करती हैं। इस तरह उन्हें जंगल की उपेक्षा का एहसास नहीं होता।
0: और देखिए, अम्मा को उनके समर्पण और अथक परिश्रम के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार और नारी शक्ति पुरस्कार, उन्हें राज्य सरकार द्वारा भी कई पुरस्कार प्राप्त हैं, जैसे वन मित्र पुरस्कार, हरि व्यक्ति पुरस्कार और स्वदेशी विज्ञान पुरस्कार, भू मित्र पुरस्कार और साथ ही अलापुझा जिले का सामाजिक वानिकी पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ है।
1: बिल्कुल। और पर्यावरण के प्रति उनके 4 दशकों के समर्पित योगदान को मान्यता देते हुए बेटर इंडिया ने 2019 में उन्हें हम सभी को बचाने वाले 10 नायकों में से एक के रूप में भी शामिल किया था। और अब 2026 में देवकी अम्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
0: देखो क्या कितनी अच्छी सी उन्होंने ये चीज करी कि पौधे लगाने शुरू किए। और उनकी इस कहानी से हम सभी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी आसपास की जगहों को हरा भरा रखें, पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि हमारा जो गांव है, हमारा घर है, शहर है, उसके आसपास का सभी वातावरण बहुत खूबसूरत
1: और ये
0: हो
1: देख
0: सके।
1: के भी अच्छा लगेगा ना कि कितना रचनात्मक कार्य हमने किया है कि देखो जो बीज बोए थे, जो छोटे छोटे से पौधे लगाए थे, वो कितने बड़े पेड़ बन गए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं।

0: मंजरी डोर से तो प्यार की बंध जाते
1: बिल्कुल
0: हैं
1: बंध जाते हैं, क्योंकि
0: ना।
1: प्यार चीज ऐसी है कि वो हर को अपने आप में बांध लेता है, और जब जहां पर पेड़ पौधों से प्यार होता है
0: बिल्कुल।
1: तो उसका अलग ही, उसकी अलग ही बात होती है। और जो हमारी जो कलाएं होती हैं उनका भी एक अलग रंग होता है
0: बिल्कुल।
1: ना।
0: और जो हमारी परंपरागत जो कलाएं थी ना, वो आज थोड़ी बहुत ऐसे हो रहा है ना कि लुप्त सी होती जा रही है। कुछ कलाएं ऐसी हैं जो लुप्त सी होती जा रही हैं, और उनको सहेजना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: जिससे कि हमारी जो पहचान है वो बनी रहे।
1: बिल्कुल
0: तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही कुछ कलाओं की जो लुप्त हो रही हैं, और पूरी दुनिया से हमारा देश अलग ही इसीलिए है क्योंकि ये जो है वो विविध तरीके की संस्कृतियों और समृद्ध परंपराओं का देश माना जाता है। और इस सांस्कृतिक ताने बाने के केंद्र में हमारी समृद्ध लोक कलाएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। हालांकि आधुनिकीकरण की जो इस समय दौर चल रहा है उसमें, उसकी तेज गति के बीच में इनमें से कई पारंपरिक कलाएं विलुप्त होने के खतरे का सामना भी कर रही हैं। और
1: बिल्कुल
0: इस देश के हर क्षेत्र और समुदाय ने अपनी एक विशिष्ट कला को जन्म दिया है, चाहे वो मधुबनी हो चित्रकला, और या फिर वारली कला, पट्टचित्र, फड़ चित्रकला, कठपुतली, मिट्टी के खिलौने, हथकरघा, बुनाई, लोक नृत्य, लोक संगीत और बांस बेत की शिल्पकला जैसी अनगिनत कलाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। लेकिन आज समय के बदलते प्रवाह में ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर पहुंच रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आरती तुमने। और इसी के साथ ही कश्मीर की जटिल लकड़ी की नक्काशी से लेकर बंगाल और उड़ीसा के जीवंत पट्टचित्र कला, हर एक कला के रूप में अपने साथ सदियों का एक इतिहास है, उनका परंपरा और कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। फिर भी जैसे जैसे शहरीकरण फैलता जा रहा है, हमारी सदियों पुरानी विरासत और उनके जीवन के पारंपरिक तरीके लुप्त होते जा रहे हैं। और जैसे कि पट्टचित्र, जो कि उड़ीसा की एक लोक कला है जिसमें कपड़े या कैनवास पर जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं, इन चित्रों के विषय अक्सर पौराणिक कथाओं से प्रेरित होते हैं और रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाते हैं। पट्टचित्र चित्रों की जो अनूठी विशेषता होती है, और इनमें पौधों और खनिजों से बने प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जिससे ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
0: बिल्कुल, ये पर्यावरण को देखो, जो परंपरा आगे हमारी जो कलाएं थी पर्यावरण के अनुकूल हुआ करती थी, लेकिन संरक्षण की कमी और घटती मांग के कारण ये कला विलुप्त होने के कगार पर है। और बिदरी वेयर, जो कि एक धातु शिल्प है जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक के बीदर में हुई थी, इससे इसमें क्या होता है कि जस्ता और तांबा के काले मिश्र धातु पर चांदी या पीतल के तार जड़े जाते हैं, और जटिल डिजाइन और पैटर्न तेज छेनी की सहायता से धातु पर उकेरे जाते हैं। बिदरी वेयर का उपयोग परंपरागत रूप से बर्तन, आभूषण और सजावटी सामान बनाने में किया जाता था। हालांकि श्रम साध्य प्रक्रिया और कच्चे माल की उच्च लागत के कारण ये शिल्प भी अब कुछ ही कारीगरों द्वारा किया जाता है।
1: और इसके साथ ही सुजनी, जो कि बिहार की एक कढ़ाई कला है जिसमें सूती कपड़े पर रंगीन धागों से ज्यामितीय पैटर्न बनाए जाते हैं, ये शिल्प परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता था और रजाई और चादरों को सजाने का एक तरीका था। हालांकि सस्ती मशीनी कपड़ों की उपलब्धता के कारण सुजनी कढ़ाई की मांग में गिरावट आई है। इसके अलावा धोकरा कला, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में उत्पन्न धातु ढलाई की एक कला है, इसमें मोम ढलाई तकनीक का उपयोग करके जटिल डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और
0: और बिल्कुल इसके साथ में हम ढोकरा कला अपनी अनूठी शैली के लिए भी जानी जाती है, और इसका उपयोग होता है अक्सर मूर्तियां और सजावटी वस्तुओं को बनाने में। और कठपुतली कला, जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला है जो आज भी कहीं कहीं होती है, तो जो कभी गांव गांव के लोगों का मनोरंजन करती थी, कठपुतली के माध्यम से लोक कथाएं, वीर गाथाएं और सामाजिक संदेश प्रस्तुत किए जाते थे। लेकिन आज क्या है कि मोबाइल और डिजिटल मनोरंजन के दौर में ये कला भी कहीं ना कहीं खोती जा रही है।
1: बिल्कुल। और इसी प्रकार बहुरूपिया कला भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है आरती। कलाकार विभिन्न पात्रों का रूप धारण कर लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ सामाजिक संदेश भी देते थे। लोक नाट्य की कई विधाएं भी आज संकट में है। महाराष्ट्र की तमाशा, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, कर्नाटक का यक्षगान, बंगाल की जात्रा, उत्तराखंड की पांडवानी जैसी अनेक प्रस्तुतियां कभी जनजीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी, आज इनके दर्शक और कलाकार दोनों घटते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और हम बात करें तो इसके अलावा पिंजराकारी, जो कि कश्मीर की एक अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ हस्तकला है, जिसमें देवदार जैसी मजबूत जो लकड़ी होती थी उस पर बिना कीलों या धातु के सहारे, सोचिए, अत्यंत बारीक जालीदार डिजाइन तैयार किया जाता है। ये कला

0: मुख्यतः खिड़कियों, दरवाजों, रोशनदानों, बालकनियों और धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतों की सजावट में प्रयोग की जाती रही है।
1: और इसकी विशेषता यह है कि ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को इतनी कुशलता से जोड़ा जाता है कि उनसे सुंदर ज्यामितीय आकृतियां बन जाती हैं, लेकिन बढ़ती लागत, सीमित बाजार और नई पीढ़ी की घटती रुचि के कारण पिंजराकारी और पारंपरिक लकड़ी की नक्काशी आज संकट का सामना कर रही है। पिंजराकारी और कश्मीरी नक्काशी केवल हस्तकला नहीं बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, धैर्य, सृजनशीलता और शिल्प कौशल का जीवंत प्रतीक है। आर्टिक कलाएं तो इतनी सारी हैं कि एक एक उसमें समेटना बहुत ही मुश्किल होता है।
0: तो हम बिल्कुल इसकी तैयारी करेंगे कि हम अगली बार और कलाओं को लेकर आएं जो लुप्त होती जा रही हैं। तो ये जो पिंजराकारी जो जो कला है सच में बहुत ही ज्यादा जटिल होती है। तो इस तरह की जो कलाएं होती हैं जटिल तो होती ही हैं डिजाइन और पैटर्न से, लेकिन इनको हम फिर भी करते हैं तो इनको इनका इनको सहेजना जरूरी है।
1: बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम
0: एक गीत
1: गीतों
0: सुन
1: को
0: लेते
1: भी
0: हैं।
1: सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो, कितना प्यारा सा ये गीत हम लोग ने सुना, और जो हमारी लोक कलाएं हैं उसके बारे में क्या संदेश लिखा हुआ है?
1: बहुत से संदेश आए हैं। तो एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि भारत की लुप्त होती पारंपरिक कलाएं हमारी प्राचीन संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली का अनमोल हिस्सा हैं, जो आधुनिकता और मशीनी युग के प्रभाव से धीरे धीरे

0: गायब हो रही हैं। इनमें मुख्य रूप से कठपुतली कला है और सिक्की घास की कला और आला गायन शामिल हैं।
1: और देखो, बातें करते करते समय हो चला है एक अंतराल का, तो लेते हैं एक अंतराल, और छोटे से अंतराल के बाद फिर हम लोग सखी सहेली कार्यक्रम में हाजिर हो जाएंगे।
0: बिल्कुल।

0: अंतराल के बाद सखी सहेली कार्यक्रम में फिर सभी का करते हैं स्वागत। तो आरती बताओ, कौन सा संदेश हम लेकर पढ़ने वाली हो?
1: बिल्कुल, लेख हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना भी गजब था, जब बहुत ही सुंदर लिखाई से चिट्ठी के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने। और चिट्ठियों की इतनी इतना बढ़िया उन्होंने लिखा था कि हमने सोचा कि पहले इन्हीं ले लेते हैं सीखो, फिर हम कलाओं की बात करेंगे।
0: हाँ
1: तो चिट्ठियों का जमाना भी गजब था, जब बहुत ही सुंदर लिखाई से मन के जज्बात जो थे वो कागज पर उकेर दिए जाते थे। डाके जब घर के सामने घंटी बजाते हुए निकलते थे तो दौड़कर दरवाजे पर आ जाते थे कि शायद हमारी भी कोई चिट्ठी हो। रक्षाबंधन पर भाई को लिफाफे में रख कर सुंदर राखियां, कुमकुम, अक्षत भी भेजे जाते थे। फिर जब जब जवाब आता था तो उस चिट्ठी को भी बार बार पढ़ते थे और बहुत संभाल कर रखते थे। ऐसे कितने ही पत्र हैं जिन्हें आज भी किसी की यादगार के तौर पर संभाल कर रखा है।
0: और देखो
1: तो इतना
0: हमारे
1: प्यारा सा था ना कि
0: यहाँ
1: रुका ही नहीं
0: देखो हमारे साथी लिखते हैं, आरती,
1: गया।
0: पारंपरिक कलाएं हमारी संस्कृति, इतिहास और लोक जीवन की अमूल्य धरोहर हैं। और लोकगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, कठपुतली, चित्रकला और कई अन्य कलाएं हमारी पहचान को जीवंत बनाए रखती हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली, मशीनों के बढ़ते उपयोग और बदलती रुचियों के कारण ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। अनेक कलाकारों को उचित सम्मान और आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाने से नई पीढ़ी भी इन कलाओं से दूर होती जा रही है। यदि समय रहते इनका संरक्षण, प्रचार प्रसार और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाए तो हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकती है। पारंपरिक कलाओं को बचाना केवल कलाकारों की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बहुत सही बात आपने
1: बिल्कुल
0: लिखी है और हमें अपनी कलाओं को बचाने का प्रयास पूरा पूरा करना
1: बिल्कुल,
0: चाहिए।
1: बहुत जरूरी भी है क्योंकि हमारी जो पीढ़ी आ रही है उसको भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या कलाएं थी हमारे यहाँ। तो एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि लुप्त होती जो पारंपरिक कलाएं हैं, ये विषय बहुत ही अच्छा लगा। आजकल हमारी जो पारंपरिक कला है जैसे कि लोक थे, लोक संगीत का ये बहुत ही सुनने में ज्यादा अच्छा लगता था, वो भी कम हो गया है। नुक्कड़ नाटक भी हुआ करते थे, वो भी अब कम हो गए हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग इन सब जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको देखना ज्यादा नहीं पसंद करते हैं, तो सुनना ही पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन सब चीजों की वापस जाना चाहिए जो इस पारंपरिक कला के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए हमें। और ऐसे ही हम उनको कर सकते हैं जब हम जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको जीवित रखें, तभी हम उनकी सहायता कर सकते हैं इस तरह से।
0: बिल्कुल। और लुप्त होती है पारंपरिक कलाएं के बारे में लिखते हैं हमारे साथी, भारत अपने समृद्ध कलाकारों का एक महत्वपूर्ण देश रहा था और रहा है भी, और अब वो भी है। भले ही पूजा स्थलों पर उकेरी गई कला को अब उतने तन्मयता से हम आज के इस मोबाइल युग में नहीं उकेर रहे हैं, किंतु समय के साथ लुप्त हुई कलाओं की तरफ अग्रसर तो हम हो ही रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भी विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रमों के जरिए अपने विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित करने में आगे आते हुए विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर प्रदर्शित भी कर रहे हैं, किंतु अभी भी बहुतेरी कलाएं लुप्त प्राय ही हैं। और उस तरफ भी हमें अग्रसर होते रहना चाहिए क्योंकि अभी हम अपने रोजी रोटी के लिए ही इनके वर्णन कर रहे हैं, जबकि इन कलाओं का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और बहुत ही विशाल है।
1: बिल्कुल
0: और कहना चाहिए कि आपके अंदर जो भी कला है आपको आती है, या आपके परिवार में किसी बुजुर्ग को जो कलाएं आती हैं, तो उनको सबको सिखाना शुरू करें, और सीखने की एक ललक भी होनी चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं, तो आप कला को बहुत आगे तक जीवंत रख सकते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: क्योंकि जो ये कलाएं हैं ना ये हमारे देश की पहचान है। इनको इसलिए इनको हमें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो अब हम एक गीत सुने।

0: जब
1: जब
0: जब
1: जब
0: तुम मेरे सामने आए, लेकिन
1: जब
0: हम
1: जब ये चिट्ठियों के
0: हाँ,
1: संदेश मेरे सामने आए तो बिल्कुल मन पे संयम रहता ही नहीं है।
0: और जब जब चिट्ठियां घर में आती हैं तो उनको लेने के लिए, उनको कि आज हम सबसे ज्यादा चिट्ठी उठा ले, हम पढ़ेंगे, तो उसका एक अलग ही मजा आता है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो हमारे साथी क्या लिखते हैं इसके
1: हमारे
0: बारे में?
1: साथी लिखते हैं, चिट्ठियों का वो जमाना भी क्या खूबसूरत था, कागज पर लिखे हर शब्द में दिल की धड़कन बसती थी, डाकिये की आहट सुनते ही उम्मीदें दरवाजे तक दौड़ जाती थीं, स्याही से लिखे अल्फाज बरसों तक यादों की खुशबू महकाते रहते थे, ना कोई जल्दबाजी थी, ना एक पल में जवाब पाने की चाह, बस इंतजार था, अपनापन था और रिश्तों की सच्ची गर्माहट थी। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन हाथों से लिखी चिट्ठियों जैसा एहसास, अपनापन और भावनाओं की गहराई आज भी बेमिसाल है।
0: क्या बात है। और बहुत लोगों ने चिट्ठियां संभाल कर भी रखी होंगी आती। और
1: बिल्कुल।
0: हमारे साथी लिखते हैं कि मुझे भी कुछ कहना है, जो मजा खत यानी चिट्ठियों के इंतजार में हुआ करता था, अब वो कहाँ। चाहे वो माता पिता हो या पति पत्नी या हो भाई बहन, अब मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से सब छिन गया है। और
1: बिल्कुल।
0: वाकई में सही बात है, चिट्ठियां लिखना लोगों का कम हो गया है। और एक साथी लिखते हैं कि आज विषय वस्तु अच्छे हैं, खासकर चिट्ठियों का जमाना, उंगलियों के कुछ स्पर्श से मीलों दूर बैठे व्यक्ति का संदेश पलक झपकते ही पहुंच जाता। आज का संचार माध्यम के तीव्र शोर के बीच कहीं पीछे छूट गया है वो शांत, धैर्यवान और आत्मीय चिट्ठियों का जमाना। वो एक ऐसा दौर था जब संदेश सिर्फ सूचना नहीं, बल्कि हृदय की धड़कन और भावनाओं का सजीव दस्तावेज हुआ करते थे। डाकिया जब खाकी झोला टांगे गली में आता था तो ऐसा लगता था जैसे पूरे मोहल्ले की उम्मीदें और खुशियां उसके साथ चल रही हों। चिट्ठी का आना एक उत्सव होता था। डाकिया सिर्फ कागज का पुर्जा नहीं लाता था, वो दूर देश से सहेज कर भेजी गई अपनों की सांसें और सिसकियां लेकर आता था।
1: वाह।
0: कागज का चुनाव स्याही का रंग और कलम की बनावट में लिखने वाले का व्यक्तित्व झलकता था। चिट्ठियों में एक अद्भुत इंतजार का सौंदर्य था। संभाल कर रखी गई वे पीली पड़ चुकी चिट्ठियां आज भी जब खुलती हैं तो गुजरे जमाने की खुशबू पूरे कमरे में बिखेर देती है। क्या बात है।
1: बिल्कुल। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि चिट्ठियों के जमाने का मेरा अनुभव जीरो है, मैंने आज तक कभी किसी को चिट्ठी नहीं लिखी, जबकि मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे, उसके बावजूद कभी मौका नहीं आया, क्योंकि हमारे जमाने में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। अरे फिर भी आपको लिखना चाहिए था ना।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं आते कि चिट्ठिया या पत्र सबसे पहले स्कूल में सिखाया जाता था, उसके बाद हम लोग घर में अपने से बड़ों को देखकर सीखते हैं कि क्या क्या लिखना है। मैंने भी अपने बड़ों से सीखा है। मेरे बड़े भाई बड़े बहुत बढ़िया चिट्ठी लिखा करते थे, सुंदर सुंदर लिफाफे आदि थे और खूबसूरत खूबसूरत लेटर पैड भी ले लेते थे। जब बड़ा हो गया, किसके पत्र लिखने लगा, तो मैं भी सुंदर सुंदर लिफाफे लाता था और सुंदर सुंदर लेटर पैड। मैंने शुरू में कभी लिखा हुआ नहीं तो, मतलब उन्होंने शुरू किया था, हमेशा खूबसूरत लिफाफा खूबसूरत लेटर पैड लिया करता था और अच्छी सुगंध लेटर में तो खूबसूरत पाउडर भी डाल दिया
1: अरे
0: करता,
1: वाह।
0: महकता हुआ यानी कि पाउडर डाल दिया करता था। इन्होंने खूबसूरत लिखा है तो बाद में तरीके से साफ भी कर दिया जाता था। कभी कभी सुगंध के लिए करता था और कभी कभी उसमें इत्र भी
1: क्या
0: डाल
1: बात
0: दिया
1: है,
0: करता
1: महकती हुई
0: था।
1: चिट्ठी जिस तक भी पहुंचती होगी, वाह क्या बात है।
0: बिल्कुल।
1: और एक और साथी जो लिखते हैं कि वो भी क्या दौर था, और उस समय जब कहते हैं कि लिफाफे में गुलाब की सूखी गुलाब की पत्तियां, तो कभी चिट्ठियों में हाल चाल के साथ कुछ शायरियां भी लिखी होती थी, एक ही चिट्ठी को ना जाने कितनी बार पढ़ा जाता था, उन हाथों से लिखी चिट्ठियों में आत्मीयता भी होती थी और स्याही की सौंधी जो महक होती थी उसमें अपनापन भी होता था। आज भी जब कभी फुर्सत में पुरानी चिट्ठियों को पढ़ती हूँ, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आंखें भीग जाती हैं।
0: क्या बात है। और इसके साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं, उस जमाने में चिट्ठी सिर्फ कागज ही नहीं पूरा परिवार हुआ करती थी। पिताजी का प्रेम, माँ की ममता और बहन का प्यार उसमें घुला होता था। बेटा समय से खा लेना, तबीयत का ध्यान रखना, बहन की खुशी राखी और गुलाब की पंखुड़ी के साथ आती, भैया त्योहार पर आ जाना, पड़ोस की खबर, खेत की फसल, गांव का मेला, सब उसी दो पन्नों में समा जाता। चिट्ठी आने में महीना लग जाता था, इसलिए हर शब्द तौल कर लिखा जाता था। डाके की घंटी बजते ही घर में हलचल मच जाती।

0: खत को पहले बड़े पढ़ते फिर सबको सुनाते। एक चिट्ठी महीनों का इंतजार और सुकून हुआ करती थी। मैंने अपने पिताजी को बहुत पत्र लिखे क्योंकि सर्विस के चलते वो बाहर रहते थे। उनके लिखे पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। आज मोबाइल में तुरंत सब कुछ मिल जाता है, पर उस कागज में जो परिवार बसता था, जो दर्द और दुआ होती थी, वो अब मोबाइल की स्क्रीन में कहीं खो गई है। वाकई सही बात है, उस जमाने में जो चिट्ठी का मजा था वो अलग ही था।
1: बिल्कुल
0: लेकिन आज भी कोशिश कीजिए कि अपनों को आप चिट्ठी लिखिए, क्यों व्हाट्सएप पे भेज दे
1: हाँ बिल्कुल।
0: है ना।
1: अब एक साथी हैं जो लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना बहुत ही अच्छा था, जब भी मन हो निकाल लो और पढ़कर खुश हो जाओ। मैंने तो ढेर सारी चिट्ठियां अभी भी संभाल कर रखी हुई हैं और जब मन होता है निकाल कर पढ़ लेती हूँ। रिश्तेदारों के जो उनके जो खत आते थे, जो चिट्ठियां होती थी है ना, वो जो अपनी सहेलियों को लिखती थी, तो जबकि वो इस शहर में थी पर जब भी कॉलेज बंद होता तो उसे भी चिट्ठी लिखती थी। मेरे पापा जी बोलते थे कि कितनी जितनी देर में चिट्ठी मिलेगी उससे जल्दी तो तुम उसके घर पहुंच जाओगी, घर में मिल लोगी जाके।
0: चलो फिर इसी बात पर एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे
1: बिल्कुल
0: बढ़ते हैं।

0: उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी।

0: लेकिन -10
1: तनिष्ठा चटर्जी सेल्यूलॉइड के सितारे 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती देखो कितनी सारी हम लोग की बातें हैं है ना,
3: और हमारे जो साथी हैं वो लिखते जा रहे हैं। तो एक हमारे साथी हैं लिखती हैं कि चिट्ठी लिखना, अपने मन की भावना अपनों तक पहुंचाना बड़ी पुरानी परंपरा है, और पुराण कथा में विरह व्याकुल दमयंती ने अपनी पीड़ा कमल पत्र पर लिखी थी और राजहंस के साथ अपने प्रियतम नल राजा के पास पहुंचाई थी। पौराणिक ऐतिहासिक काल में भोज पत्र और ताड़ पत्र, ताम्रपट या कपड़े पर संदेश लिखकर भेजे जाते थे। बाद में कागज कलम स्याही वाले चिट्ठियों का सुहाना जमाना आ गया। चिट्ठी में प्यार भाव भावनाएं, मूर्त अमूर्त कल्पनाएं, सुंदर सुहाने सपने, सब कुछ साकार होता है, और साथ ही साथ अपनी प्रिय व्यक्ति का हस्ताक्षर, उसकी लिखाई से स्पर्श का व्यक्ति की अस्तित्व का एहसास भी मिल जाता है। संजोई ही चिट्ठियां जब भी चाहे हम देख सकते हैं। चिट्ठी का इंतजार, बेचैनी, रंग रूप, रस गंध, ये सारी बातें आज की डिजिटल चैट और इन सब चीजों में कहां मिलती हैं।
2: और हमारे साथी एक लिखते हैं कि पहले चिट्ठियों को एक नुकीली तारनुमा जिसमें आधार में गोल लकड़ी रहता रहती थी उसमें घोप कर सुरक्षित रखा जाता था। 4 महीने पहले गांव में मुझे 1978 को पिताजी को मेरा लिखा स्याही वाला अंतर्देशी मिला। अब पिताजी तो नहीं, मगर उस चिट्ठी को संभाल कर रखा है इन्होंने। और लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना भावनाओं, सब्र और एक खास अपनापन का दौर था। लोग पोस्टकार्ड, अंतर्देशी पत्र पर लिफाफों का इंतजार करते थे।
3: बिल्कुल। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि कभी एक वक्त था जब चिट्ठियां रिश्तों की सबसे प्यारी आवाज हुआ करती थी। हर शब्द सोच समझ कर लिखा जाता था और हर पन्ने में अपनेपन की गर्माहट बसती थी। शायद यही वजह है कि आज भी पुरानी चिट्ठियां हाथ में आते ही बीता हुआ समय फिर से मुस्कुरा उठता है। पहले चिट्ठियां सिर्फ खबरें नहीं लाती थी, वो दूरियों को भी थोड़ा कम कर देती थी। कागज पर लिखे शब्दों में धड़कनों की सच्चाई होती थी और स्याही में अपनेपन का रंग। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इंतजार, वो मिठास बिल्कुल छूट जाती है। तो पुरानी चिट्ठियों की सबसे खास बात यही है कि उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें फेंक नहीं सकते हम। वो किताबों में, संदूकों में, यादों में बरसों तक संभाल कर रखी जाती थी, क्योंकि वो कागज के टुकड़े नहीं, किसी के अपने दिल से निकले हुए शब्द हुआ करते थे।
2: चलो एक गीत सुन।

0: आती बारिश के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं कि बारिश जब आ जाती है तो सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और घर में
1: बिल्कुल
0: कैसे रखें सफाई, तो इसके लिए देखो घर के जो पावदान हैं उनको आप नियमित धोएं, गीले हो तो हटाएं, और जो बाहर पहनाने वाली चप्पलें होती हैं उनको बाहर रखें, घर में अलग चप्पलों का यूज करें, और घर में कहीं भी अगर आपको टूट फूट लग रही है या छत पर भी टूट फूट लग रही है, तो नालियों में कुछ कचरा फंसा है तो वहां पर भी आप ध्यान दें कि उसकी सफाई नियमित करते रहें, और घर की
1: बिल्कुल
0: दीवारों दीवार जो होती है वो कहीं चूना पपड़ी कहीं टूट फूट दिख रही है तो उसको समय रहते ही उसमें आप पेंट कलर वगैरह करा ले तो अच्छा रहता है।
1: बिल्कुल।
0: और
1: और एक
0: इसके
1: हमारे
0: साथ ही
1: बिल्कुल हमारे एक
0: हाँ
1: साथी हैं जो लिखते हैं कि बारिश के मौसम में नमी, सीलन और कीचड़ की वजह से घर जल्दी गंदा होता है, तो फर्श को एकदम सूखा रखें, पोछे के पानी में कीटाणुओं को दूर करने वाला कोई लिक्विड मिलाइए, या बदबू और कीड़ों से बचाने के लिए कपूर रख सकते हैं, या फिर नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। आप ये सब चीजें करें।
0: बिल्कुल। और जो चीजें फिसलने का बहुत डर रहता है तो जहां भी आप देखें तो वहां पर आप इस कपड़े से पोछा लगाएं, और पोछे में नमक या कपूर डालकर भी आप पोछा लगा सकते हैं जिससे
1: बिल्कुल
0: कि कीटाणु नहीं आएंगे, और घर के दरवाजे खिड़कियों की नियमित पोछाई पोछाई करते रहे जिससे कि वहां पर नमी से क्या होता है धूल गर्दा जमा हो जाती, तो इस तरह का बारिश के मौसम में हमें ख्याल रखना चाहिए। और फिलहाल तो एक सुनते हैं गीत।

0: तो आरती देखो, प्रोग्राम बातें करते करते
1: बिल्कुल।
0: समापन की ओर हो गया है, तो आज सभी से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा
1: और
0: और
1: आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

चार बज चुके हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। ये विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों

0: पर केंद्र के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन 13वें दिन भी जारी। तमिलनाडु विधानसभा में 2026-27 का संशोधित कृषि बजट पेश किया गया। किसानों के लिए कई नई योजनाएं की घोषणाएं। रेलवे ने आदर्श रियायत करार ने सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सेवाएं बाधित। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। ईरान ने कहा हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ओमान के साथ समझौते का मसौदा अंतिम चरण में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी सप्ताह समझौते की संभावना जताई। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों को शीघ्र रिहाई का आग्रह किया। और खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के डिवीजन ए में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश सेमीफाइनल में पहुंचे। एफएम रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार। स्टे ट्यून्ड फॉर संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: वो वादे वो इरादे, वो कस्में वो गुजारिश, वो कविता वो गीत, वो नहर वो आकाश, वो पहाड़ वो समुद्र, वो खिलखिलाते चेहरे, वो फूल वो पत्तियां और वो मिट्टी जिसके ऊपर आप और हम खड़े हैं, वो मिट्टी जो हमें अनाज देती है, वो मिट्टी जो रहने के लिए घर, काम करने की ऊर्जा, एक पहचान देती है। उस मिट्टी का तिलक कर अगर हम सर उठा के खड़े हों तो कोई भी पहचान लेगा कि हम भारतीय हैं। और इसी मिट्टी में जहां हम अनाज उगाते हैं, हरी भरी वादियों में उसके लुत्फ उठाते हैं, यहां पर देश की रक्षा करने के लिए फौलाद भी जन्म लेते हैं। और ऐसे ही जांबाज इंडियन आर्मी के अफसर ब्रिगेडियर सुशील तमर हमारे साथ, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, आज संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। देशवासियों के साथ हमारे इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस के साथ मैं ब्रिगेडियर सुशील तमर जी का स्वागत कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू, और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग।
0: सबसे पहले तो पूरे देश की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि यू आर सर्विंग इन द इंडियन आर्मी बट यू डिड फाइंड द अपॉर्चुनिटी। आपने जो भी रेगुलर नेसेसरी परमिशंस थी वो ली और अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: नहीं, मेरे लिए खुद भी एक बहुत खुशनसीबी का मौका है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी

0: मिले कि मैं आपसे मुखातिब हो सकूं, आपके श्रोताओं से बात कर सकूं। इट्स रियली एन ऑनर।
1: मुझे ये बताइए कि क्या हमारे इंडियन आर्मी के अंदर जो जांबाज अफसर होते हैं जिन्होंने बहुत एक काबिल तरीके से एक ऑपरेशन या बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, वो इसी तरह मीठी जुबान बोलते हैं? मतलब कभी कभी वो कड़क साउंड नहीं करते, वो इट्स समवॉट लाइक अ कैमोफ्लेज।
0: नहीं, मेरे ख्याल से ये संगति का असर है। आपका लहजा खुद इतना सुहाना है कि शायद हमारे लहजे में भी आपकी मिठास आ गई है।
1: ओके, तो दुश्मन को मीठा मीठा कह के थोड़ा सा उसको सॉफ्ट डाउन करो एंड देन टारगेट है। इज दैट द आईडिया?
0: या, दैट्स इट।
1: तो अपने सुनने वाले को बता दूं कि ब्रिगेडियर सुशीन तंवर एक अलुमनाय है मिलिट्री स्कूल अजमेर के, नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे खड़गवासला के और इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के। आप प्रेस्टीजियस मिलिट्री कोर्सेज करने के लिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस डायरेक्टर्स कोर्स IIDC जो किंग्स कॉलेज लंदन में होता है वो करने भी जा चुके हैं, और ये महारत हासिल करके आपने ये कहूं कि वो द कोवेटेड यूनिफॉर्म ऑफ द इंडियन आर्मी यू पहनी।
0: बिल्कुल, मेरे लिए बहुत खुशनसीबी का मौका है। मैं तो एक्चुअली बचपन से ही हम मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़ा हुआ हूँ जैसे आपने बताया, और हमारे स्कूल का ये मकसद था कि छात्रों को डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर्स के लिए ट्रेन किया जाए
1: जी।
0: उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी चले गए, सो बचपन से ही यूनिफॉर्म हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी एंड दैट इज़ वाई वी फील ब्लेस्ड कि हमें मौका मिला देश की सेवा करने का, वर्दी पहनने का।
1: और इसके साथ साथ अपने देशवासियों को बता दें कि आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं ब्रिगेडियर सुशील तंवर, आपने 17 साल जो योगदान दिया भारतीय आर्मी को अभी तक, उसमें काउंटर टेररिज्म एनवायरनमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर में था वहां पे इलीट 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट को कमांड किया है। यंग ऑफिसर होने के नाते इन्होंने बहुत सारे जोखिम झेले। ऑपरेशन रक्षक में आप एक बैटल कैजुअलिटी के शिकार हुए लेकिन शरीर शिकार हुआ, हौसला नहीं हारा और आगे बढ़ते गए। नॉर्दर्न कमांड की कमीशन कार्ड और साथ ही साथ इन्हें COAS कमेंडेशन कार्ड दो बारी मिल चुका है। इनके बारे में और हम बात करेंगे लेकिन विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी, ये सफर शुरू कहां हुआ आपका? व्हेन डिड यू वांट टू कम टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस?
0: जैसा मैंने पहले बताया कि हम मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़े हुए हैं
1: जी।
0: 10 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन हो गया था।
1: ओके।
0: तो मेरे ख्याल से शायद मैं 5वीं 6वीं क्लास में रहा होऊंगा जब मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे भी फौज में जाना है, सेना में जाना है। और एक बार हम स्कूल में आ गए तो हमारा रूटीन, लोग कहते हैं कि मैंने 17 साल फौज में दिए, 20 साल दिए, 25 साल दिए, लेकिन हम स्कूल वाले, हम जो फौज में आ गए, हम कहते हैं कि हम तो बचपन से ही PT परेड करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आई थिंक इट वॉज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड दैट आई रियली वॉन्टेड टू जॉइन।
1: तो बचपन से ही आप एक डिसिप्लिन माहौल में रहे होंगे?
0: हाँ, डिसिप्लिन था, काफ़ी डिसिप्लिन था जो हमारे जीवन में था। सुबह टाइम पर उठना, PT करना, क्लासेस टाइम पे जाना, शाम को गेम्स, स्टडी पीरियड। और वैसे पुराने जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनका एक अलग डिसिप्लिन और एक रूटीन था, खासकर हमारे मिलिट्री स्कूल्स, 5 मिलिट्री स्कूल हैं पूरे देश में। तो मैं अजमेर में पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारे स्कूल में बचपन से ही ये शिक्षा दी जाती थी कि डिसिप्लिन में रहें और फौज की तैयारी करें और हम आगे फौज में।
1: ओके, पर साथ साथ में और भी बहुत सारे सवाल पूछता रहूँगा लाइफ की फिलॉसफी से जुड़े। आपको लगता है कि तब का डिसिप्लिन, बड़े होने के बाद जो डिसिप्लिन है, यू हैव नो रिग्रेट्स की डिसिप्लिन से ही जो जिंदगी है ना वो थोड़ी सी और निखरती है, लुक्स मोर कलरफुल?
0: हाँ, मे नॉट बी कलरफुल बट सर्टेनली डिसिप्लिन ब्रिंग्स एन ऑर्डर। मुझे लगता है कि डिसिप्लिन रहने से आपकी जिंदगी काफ़ी हद तक निखर जाती है।
1: ओके।
0: उसमें एक तरीका आता है, एक सलीका आता है, आपका आपके आसपास वाले लोगों पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है ऐसा मुझे लगता है। और सेना में तो डिसिप्लिन ही जिंदगी है।
1: yes.
0: तो इसीलिए अगर हम ना भी चाहें तो भी हमें डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा।
1: पर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, दैट्स द रीजन कि इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द टॉप आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड।
0: सर्टेनली एंड हम लोग UN जाते हैं, बाहर जाते हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ हमारी एक्सरसाइज होती हैं।
1: एब्सोल्युटली।
0: और वैसे तो वर्ल्ड ओवर आर्मीज

0: फॉर डिसिप्लिन। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी सेनाओं में इतना अनुशासन नहीं है, लेकिन भारतीय सेना की बात ही कुछ और है।
1: सो क्योंकि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे मिले जुले सवाल भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे सिविलियन हमें सुन रहे हैं, हमें पूरा देश इस समय सुन रहा है, क्योंकि आकाशवाणी के लगभग सारे स्टेशन इस समय ट्यून्ड इन हैं। न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से बहुत सारे हमारे NRIs जो हैं वो इस प्रोग्राम को बहुत सुनते हैं। हमारा व्हाट्सएप का जो मशीन है वो मैं खोल लेता हूँ, एंड ऑफकोर्स अभी अभी मेरे पास मैसेज आया कि ऑस्ट्रेलिया से कोई हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे, और उनका नाम है जोया। खैर, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, वो तो मैं बाद में पढ़ता हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या ख़ास बात है इंडियन आर्मी में आज की डेट में, इतने मॉडर्नाइजेशन पीरियड में हम लोग जा रहे हैं, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हैं, ये कहना सही होगा?
0: बिल्कुल सही है, हम ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हैं और दुनिया बदल रही है, साथ में सेना बदल रही है, दी वॉर्स आर चेंजिंग, दी एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बैट इज चेंजिंग, तो काफ़ी बदलाव आ रहा है।
1: जब आपने पहली बार आपने वर्दी पहनी, उसके बाद आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई?
0: हाँ, जब हम 97 में कमीशन हुए थे तो हमारी यूनिट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थी, मणिपुर में, तो कुछ साल मैंने वहाँ गुजारे, लेकिन उसके बाद जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, ज़्यादातर वक्त मैंने जम्मू कश्मीर में गुजारा, लेकिन शुरुआती 2-3 साल मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गुजारे थे।
1: तब का नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अब का बहुत फ़र्क आ गया होगा?
0: फ़र्क तो हर जगह आया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया मुझे जाने का इतना मौका नहीं मिला, बीच बीच में जाता रहा, बट एज ए ट्रैवलर, एज ए टूरिस्ट, नॉट एक्चुअली सर्व नहीं किया मैंने वहाँ पे इतना ज़्यादा। लेकिन जो हमारे साथी हैं वो बताते हैं कि सब कुछ बदल चुका है, तरक्की हुई है, लोगों के नज़रिया बदला है, सड़कें बदली हैं, डेवलपमेंट हुई है, तो आपके मीडल ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुए हैं, तो ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही बदल गई है, और साथ ही ज़िंदगी जीने के तरीके भी बदल गए हैं।
1: सो टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर पोस्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, उस समय बड़ा डिफिकल्ट पीरियड था जब आप वहाँ आपकी पोस्टिंग।
0: जी, मैंने जम्मू कश्मीर में 15 साल से ज़्यादा गुजारे हैं, और पुंछ, मेंडर, सुरनकोट, रजौरी, आपने बात की 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट की, बारामूला में मैं रहा, तो तकरीबन जम्मू एंड कश्मीर से मेरा एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है वहाँ के लोगों के साथ, बहुत मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि मैंने इतना वक्त गुजारा है, और मैं कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा जो फर्स्ट होम इज जम्मू एंड कश्मीर।
1: वाओ, ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा, मतलब फौलाद भी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की बात ही कुछ और है।
0: बात ही कुछ और है, वहाँ के लोगों के साथ हमने बहुत काम किया, उनके साथ हमारे जाति ताल्लुकात हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर सोल्जरिंग के सारे पहलू वो सामने आते हैं, चैलेंजिंग है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं, और लोगों के साथ एक मिलने जुलने का सिलसिला है। तो अगर हम कहते हैं कि पी स्टेशन में कोई दिल्ली में है, कोई मथुरा में है, कोई पूना में है, इसके बनस्पत कोई जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहने से उसको सोल्जरिंग का जो रियल वैल्यू है वो सामने आती है। सो इट्स टफ बट इट इज़ ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइंग।
1: तो आप हमारे सिविलियंस को इस वार्ता के, आपके और मेरे बीच जो वार्ता चल रही है उसके माध्यम से आप ये बताना चाहें कि चाह रहे हैं कि जब हमारी इंडियन आर्मी वहाँ, जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे जवान हैं, हमारे अफसर हैं, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप यूनिफॉर्म पहने और आपने गन पकड़ी एंड यू आर अ ड्रेडेड यू नो मैन इन अ यूनिफॉर्म। आप लोगों से मिक्सअप भी होते हैं, जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ है, अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली यूथ के लिए।
0: बिल्कुल, और आपने एक ड्रेडेड वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि थोड़ा सा नकारात्मक होता है उसके मायने, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हिसाब से देखते हैं तो वी आर नॉट सीन एज ड्रेडेड, आई थिंक वी आर सीन मोर एज प्रोटेक्टर।
1: और हमारा
0: यस, या ड्रेडेड, इट इज ड्रेडेड फॉर पीपल, या वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, सो दैट वे यस, बट अदरवाइज आजकल जिस तरीके का माहौल है, कई तबकों में सेना को एक ड्रेडेड आइडेंटिटी भी दी जाती है, लेकिन आई थिंक वी आर वेरी टफ विद पीपल हुम वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, बट वेरी फ्रेंडली टू एवरीवन हु इज ऑन आवर साइड।
1: तो आप इतना टाइम थे जम्मू कश्मीर में, वहाँ की लैंग्वेज वगैरह कुछ सीखी?
0: हाँ बिल्कुल, वो तो जरूरी है,

0: लोगों के साथ अगर हमारे को रिश्ते जोड़ने हैं तो फिर वहाँ की भाषा भी सीखनी पड़ेगी।
1: राइट कुछ बताइए ना वहाँ पे अब जब आपकी पहले पोस्टिंग हुई या कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो आपको याद आता हो एंड यू सेइंग फाइनली मैं अब आर्मी के साथ हूँ और मैं ऑपरेशंस में हूँ।
0: देखिए वहाँ तो डे वन से ऑपरेशंस चलते हैं मुझे okay. अभी मैं बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा किसी ऑपरेशन के okay. लेकिन जैसे आपने बताया मुझे वहाँ पर गोली भी लगी एक एनकाउंटर में
1: okay.
0: जो सूरनकोट में हुआ था
1: oh,
0: इसके अलावा
1: एलाबोरेट करना चाहेंगे?
0: नहीं okay. एक जगह थी जहाँ पर हमें सर्च ऑपरेशन करना okay. था और ना. वहाँ पर जैसा कि किसी भी ऑपरेशन में हो सकता है आतंकवादियों से सामना हो गया और मुझे गोली लग गई बट नॉट इट वॉज नॉट वेरी सीरियस इंजरी और ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था और इसमें बाद में हमें आइडेंटिफाई किया हमने कि कौन था इसके पीछे
1: okay.
0: लेकिन इस तरीके के वाक्य मेरे साथ हुए हैं मैं बच गया लेकिन हमारे बहुत बहादुर जवानों और अफसर्स ने अपनी जान की बाजी लगाई है अपनी जान का बलिदान दिया है। मेरे बहुत साथी मैं जिस बैच से बिलोंग करता हूँ उस बैच में वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट 30 ऑफ अवर बैचमेट्स फॉर वेरियस रीजंस सो द कॉस्ट इज क्वाइट हाई बट दैट इज अ कॉस्ट दैट नीड्स टू बी पेड
1: फॉर द नेशन
0: या फॉर द नेशन एंड फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री।
1: एक नशा है ना आप लोगों को कि नहीं यार वर्दी पहनी है अब बस अब सिर्फ देश ही दिखता और कोई नहीं दिखता।
0: नशा है जुनून है एंड आई थिंक दिस इज आवर फर्स्ट लव।
1: मैंने नशा इसलिए बोला क्योंकि आपने एक सॉन्ग सेलेक्ट किया हुआ है उसके बोल ही कुछ ऐसे हैं।
0: हाँ पहला नशा
1: जी
0: और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना।
1: एनी स्पेसिफिक रीजन?
0: हाँ इसका रीजन दो तीन रीजन है। पहला रीजन उसका ये है कि ये मूवी जो जीता वही सिकंदर मैंने यही दिल्ली में रिड्स थिएटर होता था कश्मीरी गेट के बाहर तो मेरे भाई के साथ मैंने ये मूवी देखी थी। मैं आई थिंक 11th या 12th में था और वो मुझे याद है वो गाना पूरा इट इज इम्प्रिंट ऑन माय माइंड। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब मैंने इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून भी लगाया था तो सब लोग सोचते थे ये क्या है पहला नशा। तो आई यूज्ड टू से जो मैंने अभी आपको कहा है कि आर्मी इज आवर फर्स्ट लव।
1: सर बात तो आर्मी के आगे भी होगी। इस गाने को सुनते हैं फिर पूछता हूँ किसके लिए आपने गाया था। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप और हमारे साथ ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं स्टूडियो में।

0: तो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आप सुन रहे हैं ये खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो अभी इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं, ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित और इंडियन आर्मी की शान। और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, माध्यम व्हाट्सएप का ही है। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उसमें व्हाट्सएप भेजकर अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स। मैं जानता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस की जो सेलिब्रेशंस हैं, जो तैयारियां वो शुरू हो चुकी हैं, तो आप अपने भाव यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं। नंबर है 9868107070, 9868107070। यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी से मैं अभी जानना चाहूँगा कि आपने बात की जम्मू कश्मीर की, तो बहुत लंबा अरसा आपने वहाँ पे बिताया है। यू मस्ट हैव सीन द समर्स एंड द विंटर, सारे वेदर आपने वहाँ पे देखे होंगे, तो कुछ शायरी वारी भी तो निकली होगी कभी ना कभी, कुछ मन तो किया होगा ना कुछ गुनगुनाने का, जैसे आपने ये गीत हमें सुनवाया, कुछ और भी आपने कुछ लिखा, कुछ भाव प्रकट किए वैसे?
1: हाँ, जम्मू कश्मीर में मैंने वक्त गुजारा, वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बनाए
0: जी,
1: और दो किताबें मैंने लिखी हैं।
0: ओके।
1: एक किताब है मुखबिर, विच इज़ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज।
0: मुखबिर,
1: मुखबिर।
0: ओके।
1: मुखबिर मतलब इन्फॉर्मर होता है, और ये 17 कहानियाँ हैं इसमें।
0: ओके।
1: सब जम्मू कश्मीर की कहानियाँ हैं।
0: अच्छा।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस की कहानियाँ हैं।
0: ओके।
1: वहाँ के लोगों की कहानियाँ हैं।
0: ओके।
1: और दूसरी किताब मेरी अभी आई है, अमन के फरिश्ते। ये कहानी है, दिस इज़ ए नॉवल, ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रांत के पुंछ जिले में सूरनकोट एक जगह है।
0: Okay.
1: वहाँ पर एक यंग मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसकी कहानी है, और ये किताब अभी 5 महीने पहले ही आई है। दोनों किताबें राजपाल एंड सन्स ने पब्लिश की हैं, और इन दोनों किताबों में मैंने जो भी जम्मू कश्मीर में देखा, मेरे साथियों ने जो देखा, सो इट इज़ जस्ट ए कलेक्टिव एक्सपीरियंसिस। ऑफ कोर्स इट इज़ फिक्शन एंड रियलिटी कम्बाइंड।
0: मैं आपसे मुखबिर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। आपने कहा कि उस वहाँ पे तरह तरह की कहानियाँ हैं, तो ये कहानियाँ जब आप वहाँ सर्व कर रहे थे, आपने तब लिखी या तब मन में बनाए और फिर बाद में?
1: ये कहानियाँ मेरे दिमाग में आती रही, जो मैं देखता रहा
0: जी,
1: जो मेरे साथी देखते रहे। हालांकि किताब ये 3-4 साल पहले आई है
0: जी।
1: कुछ कहानियाँ मैंने तब लिखी जब मैं वहाँ से वापस आ गया
0: जी,
1: और कुछ कहानियाँ मैंने वहाँ पर रहते हुए लिखी, तो मिला जुला संगम है ये। लेकिन जहाँ तक फीडबैक का सवाल है, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इन किताबों को पढ़ के, इन कहानियों को

0: के उन्हें जम्मू कश्मीर के बारे में एक नया नज़रिया मिला,
1: ओके
0: और मेरे लिए एज ए राइटर
1: जी,
0: इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती।
1: कुछ कुछ कहानियों का कुछ अंश यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहेंगे?
0: हाँ, मैं इसमें
1: कि, किस
0: 17
1: तरीके
0: कहानियाँ हैं,
1: किस
0: जैसे
1: तरीके की
0: एक
1: कहानी?
0: कहानी मुखबिर, जो
1: जी
0: पहली
1: जी
0: कहानी है मुखबिर,
1: जी
0: जिसके टाइटल जिसका ऊपर है किताब का, वो कहानियाँ एक बारामूला के पास गुलाम हसन नाम का इंसान रहता है
1: ओके
0: जो कि फौज के लिए मुखबिरी करता है।
1: ओके दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल नेम्स राइट? या
0: या
1: मैं
0: सम ऑफ दीज नेम्स आर रियल
1: रियल ऑल्सो?
0: बट मोस्टली इट इज़ हाइपोथेटिकल।
1: ओके
0: मैंने क्या किया इसमें, जो मेरे साथ रहे लोग,
1: जी
0: जो मेरे साथ ही रहे, जिन्होंने हमारे साथ काम किया, जो मेरे साथ जुड़े रहे, हमने कहीं ना कहीं जो किरदार थे एज माई ट्रिब्यूट, हमने उनके नाम रख
1: ओके
0: दिए। सो मे
1: ओके
0: नॉट बी रियल बट
1: ओ
0: समवेयर दे डू एग्जिस्ट।
1: ओके स्पाई
0: तो
1: नेम्स कह लो?
0: हाँ, स्पाई नेम्स कह लीजिए, कई असली नाम हैं, जैसे मेरे कोई साथी हैं उनके नाम पर, जो मेन किरदार है उनके नाम पर
1: मेरा भी एक
0: है,
1: नाम
0: जैसे
1: था,
0: आपके नाम पर भी लग देंगे अगली किताब।
1: मेरा नाम रखा हुआ है
0: अच्छा, क्या रखा हुआ आपका नाम?
1: फाल्कन वन।
0: अच्छा, आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल पे भी फैल्कन वन आया था, जब आपने मुझे पहली बार कॉल किया था तो
1: या
0: मैंने कहा ये फैल्कन वन कहीं किसी ये
1: बस
0: खतरनाक किसी इंसान का फोन आ रहा है,
1: हाँ
0: लेकिन फिर जब मैंने आपसे बात की और आपकी आवाज़ सुनी तो मुझे फिर पता लगा कि अच्छा, आप तो ऑल इंडिया रेडियो से बोल रहे हैं,
1: जी
0: लेकिन जो स्क्रीन पे नाम आया था फैल्कन, वो सच में काफ़ी खतरनाक था।
1: मेरे एक दोस्त भी हैं आज ही बने, उनका नाम है टैनी।
0: हाँ, वो उनसे आप मिलते रहिए, आपको उम्मीद है मजा आएगा।
1: मेरे सामने बैठे हैं टैनी,
0: हाँ,
1: सही कह
0: मुझे
1: रहा हूँ?
0: फौज में, लोग फौज में एक रिवायत है
1: आपके भी
0: निकनेम्स
1: व्हाट्सएप
0: की।
1: व्हाट्सएप की इमेज के साथ आया था टैनी स्पीकिंग।
0: हाँ, तो हमारी फौज में एक रिवायत है
1: जी
0: निकनेम्स की।
1: जी
0: मडवाल को मैडी बोल देते हैं, संवाल को सैम बोल देते हैं, तो यशराज है तो यश बोल देंगे। तो यू नो, वी हैव ए विद लव एंड विद अफेक्शन वी गिव निकनेम्स।
1: ओके
0: शायद हर पेशे में होता होगा, लेकिन फौज में कुछ ज़्यादा है और ज़्यादा अपनापन है। तो मुझे फौज में लोग टैनी कहते हैं, सीनियर जूनियर सब, कोई सर भी बोलता है तो टैनी सर बोलता है, तो दैट इज़ हाउ
1: एंड यू
0: टैनी
1: एंजॉय
0: केम।
1: इट, वी एंजॉय दीज नेम्स
0: या
1: इज़न्ट?
0: बिकॉज दे आर सेड आउट ऑफ अफेक्शन, और कुछ फिर आदत बन जाती है लोगों
1: आदत
0: की।
1: बन जाती है, एक अपनापन भी होता
0: एक
1: होगा।
0: अपनापन तो है, काफ़ी अपनापन है।
1: तो ये जो फिल्म्स में हम देखते हैं जैसे टाइगर कॉलिंग बारह सिंगा, बारह सिंगा टू टाइगर, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं हमारे।
0: हाँ, क्योंकि जब आप रेडियो पर खासकर बात करते हैं
1: जी
0: तो कुछ कोड वर्ड्स होते हैं,
1: ओके
0: तो टाइगर, लैम्ब, लायन, इस तरीके के होते हैं जो सेट होते हैं, और इसके बाद कुछ इंडिविजुअल नेम्स होते हैं।
1: ओके
0: सो दीज आर कॉल साइंस बेसिकली।
1: कॉल साइंस यस
0: तो यस, दिस इज़ ट्रू, बट फिल्मों में थोड़ा ज़्यादा ग्लैमरस कर देते हैं उसको।
1: ग्लैमरस कर देते हैं। जी हाँ, मुझे याद है कि यहाँ पे हमने ग्रुप कैप्टन मुनीश यादव को आमंत्रित किया था संदेश टू सोल्जर्स में। द पायलट हु फायर्ड एट द टाइगर हिल फ्लाइंग द मिराज 2000 अलोंग विद ग्रुप कैप्टन रघुनाथ नाम्बियर, तो वो आए थे। तो हम बताया वो जो 25 या 26 सेकंड की जो क्लिप है यूट्यूब में जहाँ एयरफोर्स ने टाइगर हिल पे अटैक किया था लेजर गाइडेड बॉम्ब। तो मैंने उनसे पूछा था आपका कॉल साइन क्या है, तो हंसने लगे, बोले इट वॉज टॉम कैट।
0: हाँ, एयरफोर्स में बड़े स्टाइलिश नेम्स होते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: उनके कॉल साइंस आर क्वाइट स्टाइलिश, दैट वे वी आर ए लिटिल ग्राउंडेड।
1: तो कमिंग बैक टू गुलाम अहमद,
0: हाँ, गुलाम हसन,
1: गुलाम हसन,
0: गुलाम
1: ओके
0: हसन, तो ये गुलाम हसन की कहानी है
1: जी
0: जो कि वहाँ पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम के साथ काम करता है,
1: जी
0: और किस तरीके से वो अपने आप को साबित करता है, ये वो कहानी है। उस इलाके में एक टेररिस्ट ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके आ जाता है,
1: ओके
0: और वहाँ पर जो टीम कमांडर है वो उसको टास्क देता है,
1: ओके
0: कैप्टन अभिमन्यु, कि आप पता करें, और वो पूरी जी जान लगा देता है। और देयर इज अ स्लाइट ट्विस्ट इन द एंड अबाउट व्हाट हैपेंस टू गुलाम हसन। तो ये
1: ओके
0: कहानी है,
1: ओके
0: एक कहानी है मुजाहिद, जो एक बहुत यंग लड़के इम्तियाज़ की कहानी है, ये सूरनकोट की कहानी है,
1: ओके
0: और इसमें जो मेन किरदार है वो इम्तियाज़ है, और
1: ओके
0: दूसरा कैप्टन समर है। कैप्टन समर इम्तियाज़ को ट्रेन करता है, उसको पाकिस्तान भेजता है लश्कर तौयबा के साथ काम करने के लिए, और फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है वो आप किताब पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। बट इट इज़ ऑल्सो ए वेरी वेरी टेंडर एंड येट ए वेरी करेजियस स्टोरी। फिर एक कहानी है लव जिहाद,
1: उसमें
0: लव जिहाद एक कहानी है पाकिस्तानी टेररिस्ट की जो

0: हिंदुस्तान आता है घुसपैठ करके जिहाद के लिए, लेकिन यहाँ पर उसको हंडवारा में एक लड़की के साथ इश्क हो जाता है, और उसी वक्त वहाँ पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर होते हैं कर्नल ऋषभ, उनको ये सब बात पता लगती है। तो वो किस तरीके से इन दोनों के रिश्ते को यूज़ करते हैं और किस तरीके से तीनों मिलकर फिर भारतीय सेना के लिए काम करते हैं, ये उस कहानी का मेन प्लॉट है। तो आप पढ़ें कहानियाँ, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस।
1: लेडीज के हाथ में वो पावर होती है, दे कैन चेंज एनीबॉडी।
0: या आई दैट्स व्हाट एवरीबॉडी सेज।
1: होता है सर,
0: कुछ
1: ना कुछ तो होता है सर। मेरे पास बहुत सारे ना SMS आ रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी वो भी लेता हूँ। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें मैसेज कर चुकी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। तेलंगाना से MR मधुसूदन आपको 80th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं भारत माता की जय, और हमारी कंट्री जो 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही है एडवांस में, वो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं।
0: मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं
1: जी। विजय कुमार विश्वनाथन जी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से हमें एक मैसेज भेज रहे हैं। संदेश टू सोल्जर्स दोस्तों आप सुन रहे हैं, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ इस समय ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके माध्यम से हमें जुड़ सकते हैं केवल SMS, केवल व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। नंबर है 9868107070, 9868107070। और एक और मैसेज हमारे पास आया है, एंड दिस इज शमीम रजा, लोकेशन कहाँ से वो उन्होंने नहीं बताई, सो वील नॉट आज दैट। मिस्टर पाटिल ने हमें एक मैसेज भेजा है और उन्होंने आपके बचपन और शिक्षा के ऊपर जो बात पूछी है उसके बारे में आप बता ही चुके हैं। जय हिंद सर, सर मैं NDA की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नियमित रूप से पढ़ नहीं पाता, और NDA के लिए अगर कोई किताब आप मेंशन कुछ सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज़ बताएं। सूर्य कुमार हैं ये, कुछ आप कहना चाहेंगे?
0: हाँ, जो NDA की तैयारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आजकल जो 12th का सिलेबस होता है, रिटन एग्जाम जो UPSC कंडक्ट करती है, उसके लिए काफ़ी गाइड्स एंड काफ़ी गेस्ट पेपर्स आते हैं, तो मुझे तभी अंदाज़ा नहीं है। एक्चुअली मैंने तो NDA 25-30 साल पहले किया था, लेकिन आई विल चेक कि अभी आजकल लोग किस किताब को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा सफलता किसमें मिल रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर आप 11वीं और 12वीं का जो CBSE का सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से करें तो शायद आपको NDA का रिटन एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। और NDA में रिटन एग्ज़ाम सिर्फ पहला पड़ाव है, क्योंकि मेन उसमें SS भी होता है। तो अगर एक बार आप रिटन की तैयारी कर लेते हैं और उसमें क्लियर कर जाते हैं, तो देन SSB इज़ एक्चुअली ए टफर नट टू क्रैक।
1: राइट देन, यहाँ पे यश सिंधे मुंबई से हमें को हमारे को मैसेज भेज रहे हैं, ब्रिगेडियर सुशील जी के जज्बे को सलाम, ऐसे वीरों को हर हिंदुस्तानी सलाम करता है, आपकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं, भारत माँ के सच्चे और वीर संतान हैं आप। सुशील जी आपकी सेवा और त्याग को नमन है, इस मुल्क की हिफाजत को मजबूत चट्टान की जरूरत है, वो आप हैं। इज ऑलरेडी बिकम अ फैन ऑफ यू सर।
0: और नहीं, ये सुनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे क्या, पूरे हमारे जितने भी साथी हैं, हम सिर्फ इस भरोसे से, इस उम्मीद के साथ अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं ताकि ये देश महफूज रहे, ताकि ये देशवासी खुश रहें। और जब हमारे देश के लोग इस तरीके का जज्बात जाहिर करते हैं तो फिर और भी अच्छा लगता है,
1: बहुत सारा।
0: और हमारा जो निश्चय है, वो दृढ़ संकल्प है, वो और मजबूत होता है।
1: दैट्स वंडरफुल। कुछ और मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जल्दी से लेना चाहूंगा। आस्था शर्मा हिमाचल प्रदेश से, एंड शी इज वेरी हैप्पी टू लिसन टू यू, और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि उन्होंने भी NDA के एग्जाम दिए हैं और अभी भी तैयारी कर रहे हैं। फायरमैन भरत कुमार चमोली गढ़वाल से लिख रहे हैं कि हमारा सलूट जो है वो स्वीकार करें, एंड ऑफकोर्स हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उनके खुद के दादा पापा और तीन भाई आर्मी में सर्व कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। तंवर जी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गंगानगर जिला से डॉक्टर गणेश अरोड़ा हमारे को ये मैसेज भेज रहे हैं। हितेंद्र दास ने असम से हमें मैसेज भेजा है। सूरत से उल्हास पाटिल हमें मैसेज भेज रहे हैं, यू आर द रियल हीरो। वृंदावन से भी मैसेज आ गया रोहित रे का, एंड ऑफकोर्स इंडियन आर्मी के बारे में बहुत सारी बातें, ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं एक जनाब जिनका नाम है शशि सिंह यादव। एंड ऑफ कोर्स एक और मैसेज हम लेना चाहेंगे यहाँ पे कि दिल से सलाम कर रहे हैं मोनीश इद्रिसी उत्तर प्रदेश से, बिलासपुर से आपको। सो यंगस्टर्स हैं बहुत सारे जो मैसेज भेज रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि लिसनिंग बहुत ज़्यादा है संदेश टू सोल्जर्स की। इससे पहले कि हम अगला म्यूजिकल ब्रेक लें, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि

0: आप हमारी जो प्रेमे इंस्टीट्यूशन है वहाँ के इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं. कुछ आप बताइए कि जब आप नई जनरेशन के युवाओं को देखते हैं, व्हाट चेंजेस डू यू सी कंपेयर टू द यंगस्टर्स इन योर टाइम?
1: हाँ, मैं भारतीय सैन्य एकेडमी जो देहरादून में है वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहा था,
0: जी
1: और बहुत गर्व महसूस होता है जब हम नई पीढ़ी को देखते हैं,
0: ओके
1: उनकी उनकी काबिलियत, उनका जुनून और हाउ वेल इन्फॉर्म्ड दे आर. बहुत ये बातें होती हैं कि नई पीढ़ी में कमज़ोरी है, वो स्ट्रेस नहीं ले सकते,
0: ओके
1: उनके पास इतना तजुर्बा नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन यू आर विद यंग पीपल, यू योर सेल्फ फील यंगर. आपको लगता है कि इनकी एनर्जी जो है वो कमाल की है,
0: ओके
1: और जब आप एकेडमी में होते हैं तो आपको मौका होता है एज ए इंस्ट्रक्टर टू शेप देयर पर्सनैलिटी, एंड आई थिंक दैट्स ए प्रिविलेज. और अभी भी जब हमारे जो कैडेट्स हैं, अब अफसर बन गए हैं सारे, जब मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है देख के कि हमने उनको, वी हैव सीन देयर इंटायर जर्नी. दे केम एज नोविसिस एंड नाउ दे आर कमांडिंग बटालियंस एंड डूइंग सो वेल. सो इट्स ऑलवेज ए प्लेजर टू इंटरेक्ट विद
0: तो
1: यंग.
0: आपका जो द प्रोसेस ऑफ डीलिंग और टीचिंग देम और ट्रेनिंग देम इज एज टफ एज योर गुरुज वर, और इट्स गॉन टफर, और यू अंडरस्टैंड नहीं यार इसको
1: देखिए, ये जो है डिबेट हमेशा रहती है.
0: रहती है.
1: हमें लगता है कि हमने ज़्यादा मुश्किल वक्त झेला है, और हमारे बाद वाली, अब मैं पीढ़ी तो नहीं बोलूँगा, ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ,
0: नहीं
1: लेकिन
0: नहीं सर, यू लुक
1: लेकिन
0: एब्सोल्युटली फिट,
1: या सो
0: फाइन,
1: लेकिन
0: यंग.
1: वी आर फ्रॉम द सेम जनरेशन. बट आई थिंक दिस इज, एवरी वन सेज कि वी हैव सीन टफर टाइम्स, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सही है, शायद हमने ज़्यादा मुश्किलें झेली हैं.
0: ओके आपने एक सॉन्ग सजेस्ट किया था, कुछ आपकी ट्रेनिंग टाइम्स और कुछ आपके ग्रुप से रिलेटेड, जो मैं चला चुका हूँ.
1: हाँ, ये कजरारे गाना है. जब हम IMA में पोस्टेड थे तो हम यंग ऑफिसर्स, वी वर इंस्ट्रक्टर्स, तो हम ये गाना इतना चलाते थे दिन रात. तब ये नया नया गाना आया था, और ये गाना मैं सुनता हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं, मेरे दोस्त याद आ जाते हैं, एंड आई जस्ट लव दिस सॉन्ग.
0: थोड़ी और याद ताज़ा करते हैं आप, ये गाना हम भी चलाते हैं, और कुछ ताज़ी उस समय की ताज़ी बात कुछ याद आ जाए तो आप शेयर करिएगा हमारे साथ. संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली और मेरे साथ खास मेहमान बैठे हैं ब्रिगेडियर

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ यहाँ ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी बैठे हैं एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ और ढेर सारे श्रोता जो हैं जो हमें मैसेज भेज रहे हैं उनके नाम मैं बहुत जल्दी लेना चाहूंगा। देहरादून की डिफेंस कॉलोनी से कैप्टन वी के एस कार्की आईपीएस हैं, रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें मैसेज भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस मैसेज के लिए। कोटा राजस्थान से राम गोपाल शर्मा जी हमें यहाँ मैसेज भेज रहे हैं एंड ऑफकोर्स मीरा तिवारी नोएडा से कह रही हैं कि आपके बारे में, ब्रिगेडियर सुशील नवर जी के बारे में सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद कोर ऑफ सिग्नल में थी जब कारगिल युद्ध चल रहा था। दैट्स वंडरफुल टू नो मैम। आशा है कि आज की जनरेशन इनकी कहानी सुन के इंस्पायर हो और देश की इज्जत रखें और नेशनल डेवलपमेंट में योगदान दें। हम भी यही आशा करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम सुशील जी से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। वीर सैनिकों को नमन कर रहे हैं शंभवी पांडे एंड ऑफकोर्स वी आर मूविंग अहेड विद लॉट ऑफ अदर मैसेजेस, जहां पर हमारे को सूर्य कुमार एक मैसेज भेज रहे हैं, वो भी एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं। मोहम्मद अली ने विशाखापट्टनम से 80वें इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं लिखी हैं और उन्होंने कहा कि मैं आपकी लिखी हुई किताब जरूर पढ़ूंगा और उन्होंने कहा है इंशाअल्लाह मैं भी अपने देश भारत के लिए सर्व करूंगा एक दिन। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ मैसेजेस हमारे पास जो आ रहे हैं। ग्राम ढाणी कुतुबपुर तहसील जिला हासी हरियाणा से रामधारी अवाना ने हमको मैसेज भेजा और बहुत प्यारा सा मैसेज बनाकर आपके लिए भेजा है एंड ऑफ कोर्स बाकी जो नाम मैं लेता रहूंगा धीरे धीरे बहुत जल्दी से, जैसे भवानी उन्नाव से सुनील कुशवाहा ने हमें मैसेज भेजा है, भुवन जोशी हल्द्वानी से हमें मैसेज भेज रहे हैं और तिरंगा भी उन्होंने भेजा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके साथ जब हमने ये गाना सुना, खैर मैं फोकस कर रहा था मैसेजेस पे, वील गेट बैक टू इट लेटर, आप हमने बात की कजरारे की, तो वर यू आल्सो वेरी नॉटी जब आप एकेडमी में थे, कुछ आपने मिस्चिफ विस्चिफ नहीं की तब?
1: हाँ, मिस्चिफ तो हर इंसान करता है मेरे ख्याल से।
0: ओके,
1: हमने भी किए, सबने किए।
0: ओके,
1: शायद लेकिन उतने नहीं किए जितने अब मैं सोचता हूँ, तो सोचता हूँ कि थोड़ा और करना चाहिए था।
0: ओके,
1: लेकिन आज आप लगता है सारे राज खुलवाने की ठान कर आए हैं।
0: अच्छा लगेगा ना सिविलियन, देखिए सिविलियन को लगता है कि आर्मी के जवान हमारे जो सोल्जर्स हैं जो अफसर हैं कभी मुस्कुराते नहीं हैं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, वो कभी मीठा नहीं बोलते, आप तो मिश्री हैं। अनुराग पांडे एक रेडियो जॉकी हैं एआईआर मथुरा में, वो एक मैसेज भेज रहे हैं और ही इज कॉम्प्लीमेंटिंग यू, तो हमारे सिविलियंस की थोड़ी सी वो बदल जाएगा ना कि आपकी उस यू नो सॉलिड बॉडी के अंदर भी एक नम्र सा दिल है।
1: हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फौजी जो होते हैं वो बहुत नरम दिल होते हैं।
0: ओके,
1: इनसाइड द सॉफ्ट एक्सटीरियर, हार्ड एक्सटीरियर इज अ वेरी सॉफ्ट इंटीरियर, और जब आप लोगों से मिलते हैं तब उनको अंदाजा होता है, तो शरारतें तो लाजमी हैं।
0: पर आप लगते नहीं सर कि आपने शरारती की होगी।
1: नहीं, जैसे आप वाक्य की पूछ रहे थे
0: जी।
1: तो मुझे याद है हम यंग ऑफिसर थे।
0: okay.
1: तो वेरी ब्रीफली माऊ में हम यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे थे। उस टाइम टाइटैनिक मूवी आई थी। ओपन एयर थिएटर है, बहुत मज़ेदार, वहाँ पर बहुत मस्ती होती है ओपन एयर थिएटर में माऊ के इन्फेंट्री स्कूल में। तो जब टाइटैनिक में वो शिप डूबने लगा तो किसी ने बोला यार कुछ ये शिप डूब रहा है तो हम भी कुछ करते हैं, तो मैं चुपके से हम लेके गए थे एक पटाखों की लड़ी।
0: ओके,
1: तो बाकी तो कोई गया नहीं, मैं गया और जैसे ही मैंने लड़ी जलाई उजाला हुआ, उधर शिप डूब रहा था और उधर सबको पता लग गया कि ये भाई साहब जो हैं, और उसमें से एक पटाखा हमारे एक डीएस थे जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, वो उनकी मैडम भी आई हुई थी देखने के लिए, और वो पटाखा सीधा उनकी

0: झोली में जाके गिरा, शायद बड़ी कीमती साड़ी में छेद हो गया, तो पीछे
1: सर
0: से मुझे
1: ये
0: आए कि आप जरा बाहर आइए।
1: बहुत बड़ा नुकसान हो गया सर, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर। सर के ऊपर गिरता तब तक ठीक था,
0: लेकिन उस टाइम लोग थोड़े ज्यादा जिंदा दिल थे ऐसा मुझे लगता
1: पर
0: है।
1: हुआ क्या उसके बाद?
0: कुछ नहीं, मुझे बताया गया कि ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा एक इमेज अच्छी थी। पर ये हुआ कि उसके बाद वो जो हमारे सर थे उन्होंने और बाकी सब इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे क्रैकर बॉय कहना शुरू कर दिया। तो क्रैकर बॉय कम एयर, बट अच्छा था, देर वॉज नो इल विल। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं।
1: टैनी द क्रैकर बॉय,
0: यस
1: ऐसे बुलाते होंगे आपको,
0: हाँ, मतलब अपने अपने अंदाज से बुलाते थे।
1: राइट। यहाँ पे एक जनाब और हैं दीपू, उन्होंने कहा सर आप अपनी किताब के नाम दोबारा ले लेंगे, बहुत सारे लोग परचेज करना चाह रहे हैं, दे वांट टू रीड दी इंसिडेंट्स एंड दी एक्सपीरियंसेस।
0: हाँ, तो पहली किताब है मुखबिर, जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, और दूसरी किताब है अमन के फरिश्ते। ये दोनों किताबें हिंदी में हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में हैं, और राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित की हैं।
1: राजकुमार पाल यूपी जौनपुर से लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी बातें सुन के मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल हैं, वो आपको सलाम भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपकी बहादुरी और राष्ट्र सेवा को सलाम। मैं हरियाणा पुलिस में एक सिपाही हूं, लेकिन हमारी सीमाएं आप जैसे वीरों की वजह से सुरक्षित हैं। ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ मस्त और व्यस्त रखें, रामधारी अवाना। और ये किस जगह पे हैं वो सिक्योरिटी कारण से हम लोग नहीं बता सकते, बट साथ ही साथ कश्मीर से एक मैसेज आया है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, एंड केश राजपूत है, वो एक मैसेज भेज रहे हैं। मेरे पास लगभग 12 मिनट बचे हैं सर, कैन वी डू सम टफ टॉकिंग?
0: या श्योर।
1: ओके, नाउ दिस इज द रियल टॉक सर, इसमें कोई भी स्क्रीनिंग नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारी बातें हुई, अवेयरनेस हुई, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि ऑफकोर्स वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ मॉडर्न एरा कॉम्बैट, लेकिन हमारी आर्मी में, हमारी आर्म्ड फोर्सेस में दिन पर दिन कोई ना कोई इनोवेशंस, कोई क्रिएशन अलग सी तो हो ही रही होगी।
0: हाँ, आप अखबार में
1: मजेदार
0: पढ़ते
1: भी
0: हैं
1: जी।
0: और पब्लिसाइज भी होती है कई चीजें,
1: ओके
0: और लड़ाई के मायने बदल रहे हैं, किस तरीके से जंग लड़ी जाती है वो मायने बदल रहे हैं,
1: ओके
0: नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, ड्रोन, सैटेलाइट्स और बाकी प्रिसीजन वेपन्स आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनका आउटलुक भी चेंज हो रहा है।
1: ओके
0: इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, दी वैल्यू ऑफ नैरेटिव। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंज हो रही हैं और होनी भी चाहिए।
1: मुझे ये बताइए, अभी जैसे ईरान, अमेरिका, इसराइल को लेके जो भी वहाँ पे कॉम्बैट हो रहा है, या कहीं पर भी विश्व भर में यूक्रेन, रशिया को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर भी हमारे कोई ना कोई इंटेलिजेंस, कोई कोई टैप तो रखते होंगे ना कि क्या क्या वेपन यूज़ हो रहा है, कौन सा वेपन कहाँ काम आ रहा है, कितना यूजफुल है, नहीं है। एम आई राइट टू मेंशन लाइक दैट?
0: यस, बिकॉज
1: ओके
0: आर्मीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये नहीं
1: यस
0: कि सिर्फ हमारी सेना, बट वॉर्स कैसे लड़ी जा रही हैं उसकी
1: हम्म
0: स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन रिफाइन आर टैक्टिक्स, वी कैन रिफाइन द वे वी यूज़ आवर वेपन्स। तो दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। और सेना में लोगों को लगता है कि जब लड़ाई नहीं हो रही तो क्या कर रहे होंगे, जब हम लड़ाई नहीं हो रही थी तो हम लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं, और उस तैयारी में ये सब स्टडी करना भी शामिल है।
1: ओके सर, मैंने आपसे बोला था मैं सीधे सवाल सिविलियन के पूछूंगा आपसे। 24 घंटे हम लोग चौकन्ने हैं बॉर्डर पे, अपनी स्काईज को देख रहे हैं कि कोई वहां से कोई वर्सेटाइल ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा।
0: हाँ, ऑब्वियसली, आई मीन ना सिर्फ स्काई, टुडे थ्रेट इज फ्रॉम एवरीवेयर। एंड जहाँ तक आपने जंग की बात की, मैं ये भी बोलूँगा कि इट्स नॉट आर्मीज विच फाइट ए वॉर, इट इज़ द नेशंस विच फाइट ए वॉर।
1: जी
0: तो हम सब चौकन्ने हैं, हम सबको चौकन्ना रहना भी चाहिए।
1: तो आपकी इंटेलिजेंस 24 घंटे काम करती है। कुछ देर पहले आपने कहा कि हम हमारे भी कुछ लोग जो हैं सरहद पार जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनके आते हैं, हमारे भी जाते हैं, बट लेट मी टेल यू दैट वी आर नॉट बॉर्डरिंग द वेस्ट, वी आर बॉर्डरिंग 360 डिग्री, हमें अपनी रखवाली करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि थ्रेट हमें एक ही कंट्री से है या हमें चौकन्ना नहीं होना बाकी जगह। तो हर जगह का पैटर्न अलग है इंटेलिजेंस का, क्योंकि भाषाएं अलग हैं, टेक्नोलॉजी किसी के पास सुपीरियर है, किसी के पास नहीं है।
0: देखिए, एडवर्सरीज डिफरेंट हैं, हालात डिफरेंट हैं, ज्योग्राफी डिफरेंट है, पॉपुलेशन डिफरेंट है, सो थ्रेट्स भी डिफरेंट हैं, कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज भी होती हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से, इंटेलिजेंस के लिहाज से, ये ज़रूरी है कि हम उन डिफरेंट पैटर्न्स को समझें। तो इसीलिए हर तरफ देखना पड़ता है।
1: इज इट इजी टू प्रिपेयर द स्पाइस,

0: यू नो पीपल इन द इंटेलिजेंस हाउ डिफिकल्ट अ जॉब इट इज किसी भी कंट्री के लिए.
1: इट इज़ वेरी चैलेंजिंग ऑफ कोर्स, इट इज़ चैलेंजिंग, इट इज़ डेंजरस, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. और मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस.
0: एक टफ सवाल पूछ लूँ सर?
1: पूछिए, आप टफ ही सवाल पूछ रहे हैं.
0: आप आपका मन करे तो जवाब दीजिएगा. जब हम कहते हैं हमें इंटेलिजेंस चाहिए तो इट्स नॉट लिमिटेड टू आर ओन कंट्रीमैन, इट कैन एक्सपैंड टू वेरियस अदर नेशनैलिटीज ऑल्सो, इज दैट ट्रू सर?
1: हाँ, अगर आप देख ही रहे हैं रोज दुनिया में क्या हो रहा है
0: जी,
1: हर जगह कोई ना कोई एजेंट पकड़ा जा रहा है. सो यू यूज ऑल मींस एट योर डिस्पोजल.
0: राइट. एक रसगुल्ला खिलाने का मन कर रहा है आपको, कोई भी प्यार व्यार नहीं हुआ सर? यू वर नेवर रोमांटिक इन योर लाइफ?
1: देखिए, हर इंसान रोमांटिक होता है.
0: आप भी थे?
1: थे नहीं, हैं. लेकिन लेकिन किस मद्देनजर, किस मायने में है वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट.
0: देश देश से बहुत प्यार है, माय फर्स्ट लव. ठीक है सर, आपने गाना अपनी प्लेलिस्ट में हमें दिया है बाहों में चलेगा, इसका क्या रीजन है?
1: हाँ, ये पुराना गाना है अनामिका पिक्चर का, मूवी का.
0: कोई ना कोई तो रीजन होगा सर.
1: हाँ, एक मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, उनको बहुत अच्छा लगता था ये
0: गाना. थी सर?
1: हाँ थी, और वो गाती भी थी ये गाना. और मैंने आपको बाकी गाने भी दिए हैं जो बाकी दोस्तों के हैं, लेकिन आप इसी गाने को पकड़ के बैठ गए हैं. लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है, तो इसको प्लीज सुनवाइए
0: सर. वो जो लव स्टोरी थी वो आपकी

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली और एक और गाना है जिसकी ख्वाहिश यहाँ पे हमारे ब्रिगेडियर साहब ने रखी है और वो गाना बड़ा सॉलिड है, मिक्का सिंह का. व्हाट अबाउट दिस? आई मीन वी आर जस्ट गेटिंग क्लोज, यू नो, एट द ब्रिंक ऑफ द आर टू क्लोज दिस शो, बट व्हाट इज द सीक्रेट अबाउट दिस सॉन्ग सर? एकदम से मतलब पुरानी और फिर नया दिल में बजी गिटार.
1: नहीं, जब आपने मुझे बताया कि आप पसंदीदा गाने बनाएं बताएं, तो फिर एक मेरे अच्छे दोस्त हैं
0: जी,
1: और हम दोनों मिलके गाना बहुत एंजॉय करते थे.
0: ओके.
1: तो बस सुनी की याद आ गई और उन्होंने बोला ये गाना अगर नहीं बजेगा तो फिर देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा.
0: सर आप परफेक्ट बंदे हो इंटेलिजेंस के लिए, सारी बातें बोल देते हो पर कुछ भी नहीं बोलते. मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं, उन्होंने कहा था अगर नहीं बजेगा तो बाहों में चलाया था कि बहुत अच्छा लगता था. पहला नशा चलाया क्योंकि वो अच्छा था, कजरारे डांस करते थे बस. वो बताया आपने कुछ भी नहीं, यू नेवर रिवील्ड, बट आई थिंक इंडियन आर्मी ने सही बंदे को चूज किया सर इंटेलिजेंस के लिए.

0: समय ना हमारे पास बहुत कम है। क्या होता है ना, जब हम अपने फौजी भाइयों के साथ, फौजी अफसरों के साथ जो प्रोग्राम करते हैं ना, हमें लगता है कि एक घंटा बहुत कम है, अब बातें और होनी चाहिए। बट यू आर बीइंग हर्ड अक्रॉस द बॉर्डर, यू आर बीइंग हर्ड अक्रॉस द ग्लोब। बहुत सारे SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस यहाँ पर हमारे पास आए हैं, सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं, दे आर फीलिंग वेरी प्राउड। लेकिन अब यहाँ से आपका सफर कहाँ जाता है, वेयर डू यू टेक योरसेल्फ फ्रॉम हियर?
1: हम तो फौज में कुछ कह नहीं सकते कि अगला मुकाम, अगला पड़ाव क्या होगा। तो जहाँ भारतीय सरकार, भारतीय सेना में भेजेगी वहाँ जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि वापस जम्मू एंड कश्मीर की तरफ रुख करेंगे और वही करते रहेंगे जो अब तक करते रहे हैं, उसी शिद्दत, उसी जुनून के साथ।
0: तो वो एक कहावत ही ना, इफ देयर इज हेवन ऑन अर्थ इज देयर इन कश्मीर, कुछ अलग बनाता है आपको। आपको प्यार हो गया उस जगह से, आप गए थे भारत माँ की रक्षा करने, आप रक्षा भी कराए और वहाँ अपना दिल भी दिया है कश्मीर को।
1: नहीं, दिल, हाँ दिल की तो बात है, जम्मू कश्मीर मुझे पसंद है, लेकिन जहाँ पर भी मैंने राजस्थान में नौकरी की है, मैंने अब्रॉड नौकरी की है, UN के साथ नौकरी की है, वहाँ भी अच्छा लगा। तो इट इज़ नॉट द प्लेस एक्चुअली, इट इज़ द पीपल अराउंड यू एंड हमारा जो एक इकोसिस्टम है भारतीय सेना का, वो बहुत मज़ेदार है, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है।
0: आपने बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइजेस भी किए हैं अलग नेशंस के, डिड विद द US?
1: हाँ, हमारे साथ जापान में मैंने गया हूँ, okay. मैं UK गया हूँ, मैंने सूडान में नौकरी की है यूनाइटेड नेशंस के साथ, और जहाँ पर भी हम गए वहाँ पर भारतीय सेना को एक अलग तरीके से देखा जाता था, बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता था, बहुत प्राउड फील होता था, बहुत गर्व महसूस होता था हमारे को दूसरे देश में जाके हिंदुस्तानी सेना का नाम रोशन करने में, इट वॉज एक्चुअली ए ब्लेसिंग।
0: तो अभी चलते चलते, क्योंकि अब समय की पाबंदी है, प्रोड्यूसर साहब ने इशारा कर दिया बहुत जल्दी हमें ये प्रोग्राम क्लोज करना है, आपके फाइनल वर्ड्स, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है।
1: ये जो भारतीय सेना एक पेशा नहीं है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इस देश की सेवा करें, एंड हमारे सैनिक, वी आर ब्लेस्ड टू हैव वेरी ब्रेव, वेरी करेजियस सोल्जर्स, और जो हिंदुस्तानी सेना और तीनों सेनाओं का मैं बात करूंगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, एंड ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेस, आई थिंक वी जस्ट सर्व सेल्फलेसली, और हमें उम्मीद है कि इस देश और इस देश के नागरिक भी उसी शिद्दत के साथ देश की सेवा करेंगे जैसे हम करते हैं।
0: इट्स अ शेयर प्रिविलेज टू होस्ट यू सर,
1: इट वाज एक्सट्रीमली गुड, एंड the way people were reacting, I think it just motivates us even more. बहुत मजा आया।
0: There are so many जिनके मैं messages नहीं ले पाया, but Brigadier Sushil Tanwar जी, I think जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और देश की तरफ से, ये मेरा salute कबूल कीजिए सर।
1: Thank you so much, जय हिंद।
0: और इसी तरह हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे संदेश टू सोल्जर्स में।

संदेश टू सोल्जर्स, यह कार्यक्रम अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए CF1 विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका, बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के रामानुज नगर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खजूरी, सतकोना, मेंढरा, कैलाशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर, रामानुजगंज, धमनी और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये खुखनिया, बदौली, जामदोहर, रेवतपुर, जवाखाड़, धंधापुर, उधवा कटरा, नरसिंहपुर, पकरीडांड, जमुनिया, रामपुर, कनकपुर, चीनिया, शिवपुर, इंद्रावतीपुर, कामेश्वर नगर, सिलाजू, आनंदपुर, कोटराही, पेंडारी, तनवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये अस्कला, दोरना, मोहरा, जरहा, डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 19 है। ये पंडरीपानी, फरसकानी, खारी झरिया, बंदरचुआ, लोढ़ा आंबा, डोडा पानी, सरई टोला, डूमर बहार, चट्टी ढाब, साजा पानी, सोनार पहरी, तीता पाकेर, बट केला के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 124 है। ये प्रेमनगर, पोटिया, इंचपारा, कुड़ेकेला, बोजिया, जमाबीरा, आमापाली, पंडोपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला में दो हाथी विचरण कर रहे हैं। ये पीड़िया, सुईयारा, बोतली, सेंद्री पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 45 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटाझरिया, बटुरा कछार, अमलीडी, सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के रवान और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये ताल, दलदली, तालाझर, मुरुमडी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल, दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारीपानी, कोनारी, बुड़ार, जीडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे CF1 विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोठ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए।

जुर्माना ये नाम था फिल्म का, जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे आरडी बर्मन। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है चुपके चुपके। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है इस गीत को एसडी बर्मन ने।

आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अगला गीत, लता मंगेशकर नितिन मुकेश की आवाज़ों में। शब्द हैं निदा फाजली के, संगीत है खयाम का, फिल्म का नाम है ना खुदा।

आइए अब सुनते हैं अगला गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म का नाम है जाने अनजाने। हसरत जयपुरी की लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अगला गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है।

0: ज्यादा। लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।
1: किसे दिल दे दे
2: नहीं ते
1: नहीं ते।

आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अगला गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, अमित कुमार की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं आर डी बर्मन। फिल्म का नाम है लव स्टोरी।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए बहनों का कार्यक्रम महिला सभा।

जिंदगी इंतजार करने का नाम नहीं, अपने सपनों को जीने का पैगाम है। आज ही अपनी बकेट लिस्ट लिखिए, क्योंकि हर ख्वाब पूरा करने का सबसे सही वक्त आज है, अभी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आप सभी का आज की महिला सभा में, जिसमें आज मैं हूँ प्रज्ञा सिंह राणा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार, सलाम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय जोहार। बहनों, महीने की शुरुआत आते ही हमारे मन में राशन की लिस्ट बननी शुरू हो जाती है कि हमारे इस महीने में क्या क्या मंगवाना है, कुछ नया मंगवाना है, त्योहार आने वाला है, तो सब कुछ अपने राशन की लिस्ट बनाते समय लिख लेते हैं और बाजार जाकर सब कुछ अपने बकेट में भर लेते हैं, है ना, और अपनी बकेट लिस्ट के अनुसार सामान खरीदते जाते हैं। ऐसी ही एक सूची होती है जो बाजार से नहीं खरीदी जाती बल्कि दिल से लिखी जाती है, यह है जिंदगी की बकेट लिस्ट। बहनों, कहते हैं जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम नहीं बल्कि उन सपनों का नाम है जिन्हें हम जीना चाहते हैं। बकेट लिस्ट सूची वे सपने हैं, वे इच्छाएं हैं, वे छोटे बड़े चीजें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में एक बार जरूर पूरा करना चाहते हैं। हम अक्सर सुनते हैं किसी ने दुनिया घूमने की बकेट लिस्ट बनाई, किसी ने नई नई चीजें सीखने की, लेकिन आपने कभी सोचा है कि एक महिला की बकेट लिस्ट कैसी होनी चाहिए? हमारी बेटियां तो बचपन से ही सपने देखती हैं डॉक्टर बनने की, खिलाड़ी बनने की, कलाकार बनने की, दुनिया देखने की। फिर धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, पढ़ाई, नौकरी, विवाह, परिवार, बच्चों की परवरिश, और इसी सफर में कई बार अपने सपने अलमारी के किसी पुराने डब्बे में बंद हो जाते हैं। तो आइए आप मिलकर के एक ऐसी बकेट लिस्ट बनाते हैं जो हर महिला को याद दिलाए कि उसकी अपनी पहचान, उसकी अपनी खुशी और उसका अपना जीवन भी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जिसमें सबसे पहला सपना होना चाहिए खुद से दोस्ती। आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराइए और खुद से ही पूछिए, मैं कैसी हूँ और मैं क्या करना चाहती हूँ। दूसरों की उम्मीद के बीच अपनी आवाज को पहचानिए। एक यादगार यात्रा कीजिए, अपने देश, क्षेत्र, किसी भी पहाड़, किसी भी जंगल, किसी भी समुद्र या छोटे से गाँव में ही जरूर जाइए। यात्रा हमें केवल नई जगह नहीं दिखाती बल्कि अपने भीतर की नई ताकत भी दिखाती है। तीसरा सपना है एक नई हुनर सीखिए। जी हाँ, गिटार बजाना हो, चित्र बनाना हो, तैरना, फोटोग्राफी, बागवानी, कंप्यूटर, नई भाषा, डांसिंग या कुछ भी, हर नया हुनर यह बताता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और चौथा सपना होता है आर्थिक आत्मनिर्भरता। जी हाँ, आर्थिक आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, चाहे छोटी सी बचत हो, निवेश सीखना हो, ऑनलाइन काम शुरू करना हो या अपना छोटा सा व्यवसाय। जब एक महिला आर्थिक रूप से सक्षम होती है तो उसके निर्णय में भी आत्मविश्वास दिखाई देता है। और सबसे जरूरी है पांचवा सपना वो है अपनी सेहत से समझौता नहीं करना। जी हाँ, महिला पूरे परिवार का ध्यान तो रखती है लेकिन अपनी जांच, अपनी नींद और अपने खान पान को टालती रहती है। तो आज से अपनी बकेट लिस्ट में लिखिए कि हर दिन 30 मिनट पैदल चलना है, योग करना है, समय पर जांच कराना है, भरपूर पानी पीना है और मन को भी आराम देना है। स्वस्थ महिला ही तो परिवार की सबसे बड़ी शक्ति होती है। और अगला सपना है हर साल एक किताब पढ़ना। जी हाँ, हर साल कम से कम एक अच्छी किताब पढ़िए। कुछ अच्छी किताबें पढ़ने का संकल्प लीजिए, ये इंसान को भीतर से समृद्ध बनाती है और उनसे मिलने वाला आत्मविश्वास जीवन भर साथ चलता है। और अपने अगले सपने में आप किसी का हाथ थाम लीजिए, मतलब किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद कीजिए, किसी बुजुर्ग के साथ समय बिताइए, किसी जरूरतमंद महिला को हुनर सिखाइए। ये तो आप सब जानते हैं कि दूसरों की जिंदगी में रोशनी बनना भी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। साथ ही आपको आपके डर को भी हराना है। आपको अगर मंच पे बोलने से डर लगता है, साइकिल चलाना नहीं आता, तैरना नहीं आता या ऊंचाई से डर लगता है, तो अपने बकेट लिस्ट में शामिल कीजिए कि अपने डर को सामना जरूर करना है, क्योंकि डर वही खत्म होता है जहां पहला कदम उठाया जाता है। महिलाएं कई बार ये सोचती है कि हम अपनी खुशी को बाद में देखेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब, रिटायरमेंट के बाद देखेंगे या समय मिलेगा तब, लेकिन जीवन इंतजार नहीं करता। आज जो सपना छोटा लगता है वही कल सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। तो बहनों, कागज उठाइए और बकेट लिस्ट लिखिए। शायद उसमें लिखा हो, मैं सूर्योदय देखूंगी, मैं

माता पिता के साथ समय बिताऊंगी या हर साल नई जगह घूमूंगी, एक पेड़ लगाऊंगी, किसी जरूरतमंद की सहायता करूंगी या फिर मेरे अपने मुस्कुराने की वजह ढूंढूंगी और अपनी जिंदगी सिर्फ निभाऊंगी नहीं, पूरे मन से जीऊंगी। हो सकता है शुरुआत केवल 5 सपने से हो, लेकिन यकीन मानिए ये 5 सपने आपके जीवन में नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास और नई मुस्कान लेके आएंगे। याद रखिए, जो महिला अपने सपनों को जीना सीख लेती है वही दूसरे के सपनों को भी उड़ान देती है। जी हाँ बहनों, इसी के साथ आइए सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म मुकद्दर के सिकंदर से। आवाजें हैं लता मंगेशकर की, संगीतकार है कल्याण जी आनंद जी और गीत लिखा अंजान ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है रुचि जिगस्कर, प्रीति पान से, दीपा वर्मा, रीता शुक्ला और पूर्णिमा पांडे और मेघा सिंह ने। तो आइए सुनते हैं मुकद्दर के सिकंदर का ये गीत।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: आपकी रक्षा में पूरी।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।

0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर दुल्हन का सपना, हर महिला की पहली पसंद, ऑरा वुमेन सैलून। ब्राइडल मेकअप हो या पार्टी का ग्लैमरस रूप, हेयर स्टाइलिंग, फेशियल, सभी प्रोफेशनल ब्यूटी सर्विसेज एक ही छत के नीचे। बेहतरीन क्वालिटी, अनुभवी एक्सपर्ट और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही आइए ऑरा वुमेन सैलून, मध्य नगरी चौक, क्योंकि आपकी मुस्कान ही हमारी पहचान है।
4: आइए बहनों, अब सुनते हैं पर्यटन स्थल में ए साई लता को, जो कि मेरी यात्रा में उत्तराखंड की यात्रा करके आई है। तो आइए सुनते हैं पर्यटन स्थल में साई लता जी को।
3: बहनों, कहते हैं सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि रास्तों में बिखरे उन अनुभवों का नाम है जो जिंदगी को नई सोच और नई यादें दे जाते हैं। पर्यटन दर्शन मेरी यात्रा में यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उन यादगार सफरों का कारवां है जो हमें नई जगहों, नई संस्कृतियों और नए अनुभवों से जोड़ता है। आज हम चलेंगे उस धरती की ओर जहाँ हिमालय की ऊंची चोटियां आसमान से बातें करती हैं, गंगा की निर्मल धारा मन को सुकून देती है, रोमांच हर मोड़ पर आपका इंतजार करता है और संस्कृति की खुशबू हर गांव, हर शहर में महसूस होती है। जी हाँ, आज की हमारी मंजिल है देवभूमि उत्तराखंड। हमारी आज की अतिथि हाल ही में उत्तराखंड की अविस्मरणीय यात्रा करके लौटी है। तो आइए अनुभवों की इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर सफर बनता है एक नई प्रेरणा। आज हमारे साथ है ए साई लता जी।
4: तो सबसे पहले साई लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी में।
5: धन्यवाद प्रज्ञा।
4: आप किस जगह को घूम करके आई हैं साई जी?
5: अभी अभी मैं उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को घूम के आई हूँ
4: जी,
5: और इसमें कुछ धार्मिक भी है, कुछ एडवेंचरस जगह भी है
4: जी। हमें सबसे पहले ये बताइए कि उत्तराखंड की इस यात्रा का विचार आपको कैसे आया?
5: मुझे भारत के सारे क्षेत्रों को एक एक करके घूमना था, तो उत्तराखंड तो जाना ही था। पर अभी सोशल मीडिया के थ्रू और फ्रेंड्स और फैमिली के थ्रू बहुत वहाँ के बारे में, वहाँ की प्राकृतिक छटा, नदी, पहाड़ और वहाँ की खूबसूरती, ये सब का बहुत मैंने सुन रखा था। तो बहुत था कि जल्द से जल्द जाया जाए, तो इसलिए मैंने इस बार उत्तराखंड का ट्रिप प्लान किया था
4: जी। तो उत्तराखंड के किन किन जगह पर आप घूमी हैं साई लता जी?
5: ऑलमोस्ट मैंने कवर करने की कोशिश करी है, जिसमें कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, ये सब गए थे
4: जी। साई लता जी, ऋषिकेश वो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है
5: जी,
4: तो आपने भी वहाँ के किसी एडवेंचर को ट्राई किया, अनुभव लिया?
5: हाँ, ऋषिकेश जाए और एडवेंचर ना करे तो फिर ऋषिकेश जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है
4: जी।
5: तो वहाँ पर हमने रिवर राफ्टिंग करी, बंजी जंपिंग करी और जॉइंट स्विंग होता है वो किया, काफी एंजॉय किया वो सारे एक्टिविटीज में हमने।
4: जब आप रिवर राफ्टिंग कर रही थी तो आपको थोड़ा डर लगा या रोमांच महसूस हुआ?
5: स्टार्टिंग में तो, क्योंकि गंगा नदी का जो वेग रहता है वो काफी रहता है, और हम लोग जुलाई बारिश ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई थी, तो उस समय जो पानी का वेग था काफी तेज था, तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा लगा था, पर जो हमारे गाइड थे उनने बहुत अच्छे से संभाला और पहले से ही वो गाइड कर दिए थे, और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद हमने वो राइड को बहुत एंजॉय किया
4: जी। ऐसा ही कुछ बंजी जंपिंग में भी?
5: बंजी जंपिंग भी वैसा ही था, जब तक हम ऊपर पहुंच रहे थे बहुत नर्वसनेस थी कि कैसे होगा, कहीं क्लिप टूट गई तो डर तो था, पर एडवेंचर तो करना ही था, तो इसलिए हमने अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग किया और फिर बोले कि नहीं अब करते हैं
4: जी। साई लता जी, पहाड़ों में जब हम यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए?
5: पहाड़ों में जब भी आप प्लान करें, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो सबसे पहले वेदर को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर लैंडस्लाइडिंग वगैरह होते रहती है। दूसरा

0: है कि आप अपना हेल्थ, ऐसा नहीं कि आपका मन किया, उत्तराखंड में ट्रैकिंग के बहुत सारे जगह हैं, तो कि आपको पहले से अपने हेल्थ, अपनी बॉडी को उस हिसाब से, ट्रैकिंग के हिसाब से ढालना पड़ेगा।
1: जी
0: तो पहले से आपको एक्सरसाइज, थोड़ा वॉकिंग, बहुत तो नहीं पर हाँ थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ताकि आप वहाँ के जो चैलेंजेस है उसको फेस कर पाए। तो ट्रैकिंग वगैरह अगर आप शौकीन है, तो ट्रैकिंग के लिए आपको पहले से थोड़ा बहुत तैयारी करके जाना पड़ेगा। दूसरा, आप अपने कुछ मेडिसिन रखिए जो जो आपको ज़रूरी रहते हैं, और वेदर के हिसाब से रेनकोट वगैरह आपको पहले से रखना पड़ेगा। वैसे तो अवेलेबल वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपको कैरी, अगर इनकेस आप कुछ भूल भी जाते हैं तो आपको वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाता है, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है वहाँ पर,
1: जी
0: आपके बजट में आ भी जाता है। पर आप यहाँ से तैयारी करके जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और थोड़ा बहुत आप अपना स्नैकिंग के लिए जो तुरंत आपको एनर्जी दे, जैसे चने हो गए, खजूर हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गया, कुछ प्रोटीन चिक्की वगैरह हो गए, ये सारा पहले से आप अपने साथ रख के जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: जी सही कहा, थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो हम यात्रा का आनंद अच्छी तरीके से ले
0: जी
1: सकेंगे।
0: बिल्कुल सही
1: जी साईं जी, उत्तराखंड की संस्कृति में आपको सबसे खास क्या लगा?
0: उत्तराखंड की सबसे खास बात यह है कि वहाँ के लोगों का अपनापन और सादगी, और सच में आप जब भी जाए तो इतना वार्म वेलकमिंग रहता है, किसी भी रेस्टोरेंट जाए और किसी भी होम स्टे वगैरह जाए तो एक तो उनका वो जो बुराश का जूस रहता है इतना रिफ्रेशिंग वाला रहता है, तो जाते साथ आपको जो बुराश का वो लोग इतने अपनेपन से जो जूस पिलाते हैं, तो आधा तो आपकी थकान वहीं पर दूर हो जाती है।
1: जी
0: और लोग वहाँ के बहुत विनम्र और बहुत सीधे साधे सिंपल लोग होते हैं, और बहुत हेल्पफुल भी होते हैं। उनकी बोली, पहनावा, लोकगीत और जो लोक नृत्य होता है, उनकी अपनी संस्कृति एक समृद्ध विरासत है वो
1: जी
0: उन लोग का।
1: अभी आपने बताया लोकगीत, लोक नृत्य, तो आप जब वहाँ थी तो कोई ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको देखने को मिला?
0: हाँ जी बिल्कुल, मुझे स्थानीय लोक संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ का देखने का अवसर मिला। वहाँ के कलाकारों ने पारंपरिक वाद्य यंत्र और लोकगीतों के माध्यम से अपनी संस्कृति को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। जो कार्यक्रम में स्थानीय लोगों का उत्साह है और अपनी संस्कृति के प्रति जो सम्मान है वो देखकर बहुत अच्छा लगा।
1: जी
0: ऐसे अनुभव किसी भी यात्रा को और अधिक यादगार बना सकते हैं।
1: जी ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, जब आप ये अनुभव ले रही थी तो आपने वहाँ का कोई विशेष व्यंजन चखा हो जिसका स्वाद अभी तक आपके मुंह पर हो?
0: हाँ, तो वैसे तो वहाँ की बहुत सारे व्यंजन पसंद आए, और खासकर वहाँ का काफूली, आलू के गुटके, झंगोरे की खीर और मंडवे की रोटी, ये सब का स्वाद, मतलब अभी भी वहाँ उत्तराखंड बोलने से वहाँ का वो स्वाद मुंह पर आ जाता है। और इन व्यंजनों की सबसे खास बात यह है कि ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी बहुत होते हैं। एक तो वो ऑर्गेनिक रहते हैं और स्थानीय खेतों से जुड़े होने के कारण बहुत पौष्टिक भी होते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस पूरी यात्रा के दौरान कोई मजेदार घटना, कोई रोमांचक पल या कोई भावुक पल कोई सा ऐसा आया साईलता जी?
0: हाँ, जब हम ट्रैकिंग कर रहे थे वहाँ पर, मेरे जो साथी थे उनमें से दो तीन लोगों की कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि हम तो छत्तीसगढ़ से हैं और वहाँ का क्लाइमेट अलग है, और वहाँ पर भी क्लाइमेट हमेशा चेंज हो रहा था, कभी गर्म हो रहा था, फिर हम आगे जाते तो बारिश होने लग गई थी, फिर तो ये सब के बीच उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई थी, तो जिसके कारण मैं काफ़ी घबरा गई थी, और ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा, कैसे हम कंप्लीट करेंगे ये ट्रिप। पर वहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत मदद करी हमारी, गवर्नमेंट भी वहाँ की जगह जगह, मतलब मेडिकल फैसिलिटी मिल रही थी, तो हमको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और भावुक पल के परिप्रेक्ष्य में मैं बोलना चाहूँगी कि जब हम गंगा नदी का जो आरती देखे थे, ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों जगह होती है, तो वो जो पल था, मतलब रोंगटे खड़े करने वाला था, कि वो पल को आज तक नहीं भूल सकते। वो देवप्रयाग में जो गंगा नदी का वेग रहता है, वो आगे आते आते एकदम शांत होता है। देवप्रयाग में जो

0: दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भगीरथी। वो संगम देख के आपके मन को इतनी शांति, एक तरफ भगीरथी चली आती है पूरे वेग से और अलकनंदा शांत एकदम सौम्य, वो दोनों का जो मिलन होता है वो देख के मन को इतनी शांति होती है, बता नहीं सकते उनको, शब्दों में नहीं बता सकते।
1: जी, आपको क्या लगता है शैलता जी, कि ये जो बढ़ता पर्यटन है उत्तराखंड का, तो ये वहाँ के पर्यावरण पर असर डाल रहा है?
0: पर्यटन किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर यह बिना योजना और जिम्मेदारी के बढ़े तो पर्यावरण पर इसका असर भी साफ दिखाई देता है। जैसे उत्तराखंड जैसे संवेदनशील, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर लैंडस्लाइडिंग वगैरह होते रहती है, तो संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में हम जाते हैं टूरिस्ट, और वहाँ पर प्लास्टिक, कचरा, ट्रैफिक और प्रदूषण का जो बढ़ता प्रेशर
1: प्रभाव
0: है,
1: जी,
0: तो वो प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव चिंता का विषय है। तो मेरा मानना है कि हमें रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट की तरह वहाँ पर पेश आना चाहिए, और अपना जो भी वहाँ पर प्लास्टिक बैग वगैरह है तो आप अपना एक कैरी बैग कैरी करिए, और वहाँ फेंकने के बजाय आप वापस लेकर आइए पहाड़ों से, और नीचे आप उसको डिस्पोज करिए।
1: जी
0: अपने एक जिम्मेदार नागरिक के तरह पेश आए पहाड़ों पर जाते हैं तो।
1: जी
0: मुझे लगता है कि हर पर्यटक को यह समझना चाहिए कि वह किसी जगह का सिर्फ मेहमान है, इसलिए वहाँ की प्रकृति, संस्कृति और लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनकी पहली जिम्मेदारी है। वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव हैं, वहाँ नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, कम से कम इतनी कोशिश तो हमको करनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही कहा कि अगर हम घूमने जा रहे हैं तो पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी
0: जी,
1: निभाएं।
0: और एक साथ ही साथ वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और उनकी परंपराएं, रीति रिवाज है, तो उसका भी सम्मान करते हुए अपने ट्रिप को प्लान करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। साईलता जी, हम एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलना
0: जी
1: चाहेंगे।
0: बिल्कुल जी।
1: पहाड़ या नदी,
0: पहाड़,
1: ट्रैकिंग या रिवर राफ्टिंग,
0: ट्रैकिंग,
1: सूर्योदय या सूर्यास्त,
0: सूर्योदय,
1: होटल या कैंपिंग,
0: कैंपिंग,
1: अकेले यात्रा या फ्रेंड्स के साथ,
0: फ्रेंड्स के साथ,
1: एक शब्द में, केदारनाथ,
0: शांति,
1: बद्रीनाथ,
0: आध्यात्म,
1: ऋषिकेश,
0: एडवेंचर, नेचर, मिक्स ऑफ,
1: हरिद्वार,
0: गंगा आरती,
1: लोकल खाना या फास्ट फूड,
0: लोकन खाना,
1: फोटो क्लिक करना या नज़ारों को महसूस करना,
0: नज़ारों को महसूस करना,
1: ऑफलाइन सफर या हर समय सोशल मीडिया,
0: ऑफलाइन सफर,
1: पहाड़ी सड़कें या रोपवे,
0: पहाड़ी सड़क,
1: एडवेंचर या कंफर्ट।
0: यहाँ मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, पर एडवेंचर।
1: चलिए, रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेल के बहुत अच्छा लगा साईलता जी। हमारे श्रोताओं के लिए एक संदेश दीजिए, जो उत्तराखंड घूमने का सपना देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जो भी फर्स्ट टाइम उत्तराखंड जा रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अपनी यात्रा की अच्छी से तैयारी करके जाए, और मौसम के हिसाब से कपड़े रखें, आरामदायक जूते पहने, और अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पीते रहे, और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और जहाँ भी जाए वहाँ की संस्कृति और स्थानीय लोगों का सम्मान करें। सबसे जरूरी जो बात है वो प्रकृति को स्वच्छ रखें और प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, तभी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन खूबसूरत जगहों को सुरक्षित रख पाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने साईलता जी। इस पूरी यात्रा से आपने क्या सीखा साईलता जी?
0: इस यात्रा से मैंने ये सीखा है कि प्रकृति के बीच बिताया गया समय केवल घूमने का अनुभव नहीं होता, बल्कि यह हमें मानसिक शांति, धैर्य और सकारात्मक सोच भी देता है। उत्तराखंड में मैं सिर्फ तस्वीर ही नहीं ली मैंने, कि जीवन भर याद रहने वाले अनुभव, नई सीख और प्रकृति के प्रति अधिक सम्मान लेकर लौटी हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और साईलता जी, आप आई और अपनी यात्रा को इतने अच्छे तरीके से हमारे श्रोताओं के संग साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इसी खूबसूरत संदेश के साथ आज के पर्यटन दर्शन मेरी यात्रा कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। उम्मीद है उत्तराखंड की यह यात्रा आपको भी प्रकृति, संस्कृति और नए अनुभवों से जुड़ने की प्रेरणा देगी। फिर मिलेंगे एक नए सफर और नई कहानी के साथ। हर दुल्हन का सपना हर महिला की पहली पसंद ऑरा वुमेन सैलून, ब्राइडल मेकअप हो या पार्टी का ग्लैमरस रूप, हेयर स्टाइलिंग, फेशियल, सभी प्रोफेशनल ब्यूटी सर्विसेज एक ही छत के

0: नीचे, बेहतरीन क्वालिटी, अनुभवी एक्सपर्ट और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही आइए ऑरा वुमेन सैलून मध्य नगरी चौक, क्योंकि आपकी मुस्कान ही हमारी पहचान है। आइए बहनों, अब सुनते हैं पूजा चौहान जी को, जो बता रही हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में।
1: हर धागे में भारत की पहचान। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ पूजा चौहान। आज हम बात करेंगे उस कला की जो केवल कपड़े नहीं बुनती, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और लाखों परिवारों के सपनों को भी एक एक धागों में पिरोती है। हर वर्ष 7 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों बुनकरों को समर्पित है जिनके कुशल हाथ भारत को समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों को जीवित रखे हुए हैं। भारत का हथकरघा उद्योग दुनिया की सबसे

0: भारत की पहचान। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ पूजा चौहान। आज हम बात करेंगे उस कला की जो केवल कपड़े नहीं बुनती, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और लाखों परिवारों के सपनों को भी एक-एक धागों में पिरोती है। हर वर्ष 7 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों बुनकरों को समर्पित है जिनके कुशल हाथ भारत को समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों को जीवित रखे हुए हैं। भारत का हथकरघा उद्योग दुनिया के सबसे पुराने और सबसे समृद्ध उद्योगों में से एक है। हमारे देश के अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग पहचान है। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी, मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी, तमिलनाडु की कांजीवरम सिल्क, जम्मू कश्मीर की पश्मीना, पश्चिम बंगाल की जामदानी, उड़ीसा की इकर। ये केवल वस्त्र नहीं है, बल्कि भारत की कला, इतिहास और संस्कृति की जीवंत पहचान है। आज के आधुनिक दौर में फैशन लगातार बदल रहा है, लेकिन हैंडलूम की खूबसूरती कभी पुरानी नहीं होती। यही कारण है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारतीय हथकरघा उत्पादनों की मांग लगातार बढ़ रही है। हथकरघा केवल हमारी संस्कृति की पहचान नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों की आजीविका का भी आधार है। देश के अनेक ग्रामीण परिवार की रोजी रोटी इसी कला पर निर्भर है। जब हम किसी स्थानीय बुनकर से हथकरघा उत्पादन खरीदते हैं, तो हम केवल एक कपड़ा नहीं खरीदते, बल्कि किसी परिवार के सपने, मेहनत और भविष्य को भी सहारा देते हैं। आज आवश्यकता है कि हम वोकल फॉर लोकल की भावना को अपनाएं। त्योहार हो, शादी हो, कोई विशेष अवसर हो या फिर रोजमर्रा का पहनावा, यदि हम समय समय पर हथकरघा उत्पादनों को प्राथमिकता दें, तो इससे हमारे बुनकरों का उत्साह भी बढ़ेगा और देश की समृद्धि परंपरा भी सुरक्षित रहेगी। तो प्रिय श्रोताओं, आज की युवा पीढ़ी भी भारतीय हैंडलूम के नए अंदाज में अपना रही है। पारंपरिक डिजाइन आधुनिक फैशन के साथ मिलकर एक नई पहचान बना रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी परंपरा समय के साथ चलना जानती है। आइए इस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें, कम से कम एक हथकरघा उत्पादन अवश्य खरीदेंगे, स्थानीय बुनकर का सम्मान करेंगे और भारतीय हस्तशिल्प व हथकरघा उद्योग को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। याद रखिए, जब हम हाथ से बना वस्त्र पहनते हैं, तब हम केवल एक परिधान नहीं पहनते, बल्कि भारत की संस्कृति, मेहनत, आत्मनिर्भर और अगिनत बुनकरों के सपनों को अपने साथ लेकर चलते हैं। इसी सुंदर संदेश के साथ आप सभी को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: बहनों, आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें चिट्ठी मिली में जरूर बताइएगा। हमारा ईमेल है पत्र ईमेल bsp@gmail.com और अपने कार्यक्रम की समीक्षा जरूर कीजिएगा। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है प्रज्ञा सिंह राणा ने और दीजिए महिला सभा से अब मुझे इजाजत। नमस्कार।

0: पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: हर दुल्हन का सपना, हर महिला की पहली पसंद, ऑरा वुमेन सैलून, ब्राइडल मेकअप हो या पार्टी का ग्लैमरस रूप, हेयर स्टाइलिंग, फेशियल, सभी प्रोफेशनल ब्यूटी सर्विसेज एक ही छत के नीचे, बेहतरीन क्वालिटी, अनुभवी एक्सपर्ट और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही आइए ऑरा वुमेन सैलून, मध्य नगरी चौक, क्योंकि आपकी मुस्कान ही हमारी पहचान है।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला सभा। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। संसद समीक्षा आज रात 8 बजे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। इसके बाद श्रोता सुनेंगे अपना पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिली। किसानवाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम में ईमेल करें, गीत सुनने का प्रसारण किया जाएगा 6:20 पर और शाम 7 बजे। कार्यक्रम विवरण में आगे बढ़ने

0: ना कोई मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
0: आपकी रक्षा में पूरी।
2: हर दुल्हन का सपना, हर महिला की पहली पसंद, ऑरा वुमेन सैलून। ब्राइडल मेकअप हो या पार्टी का ग्लैमरस रूप, हेयर स्टाइलिंग, फेशियल, सभी प्रोफेशनल ब्यूटी सर्विसेज एक ही छत के नीचे। बेहतरीन क्वालिटी, अनुभवी एक्सपर्ट और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही आइए ऑरा वुमेन सैलून, मध्य नगरी चौक, क्योंकि आपकी मुस्कान ही हमारी पहचान है।
3: कार्यक्रम विवरण में आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर भी। कल सुबह 8:30 पर हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे इनसे मिलिया कार्यक्रम। कल सुबह 11:10 पर हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आयोजित 12वें हथकरघा दिवस समारोह का सजीव प्रसारण। छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम गुंजेश्वर गांव के आप सुनेंगे कल सुबह 10:00। इसमें शिवचंद यादव और साथियों से बांस गीत में राजा छौरा के किस्सा और नीलम बैगा, मीना बैगा, सुकरिया एवं अंजोर सिंह बैगा और साथियों से बैगा कर्मा। आपकी पसंद कार्यक्रम का समय होगा कल सुबह 10:30। कल सुबह 9:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे। चित्रपट संगीत कार्यक्रम हम लेकर आएंगे कल शाम 5:05 पर। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 6:10 होने को है छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का जी रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल हा आज 23,731 करोड़ रुपया के राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधनला दीन मंजूरी। मुंगेली जिला में छत्तीसगढ़ के पहली हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित होही। और सिपाही रक्षा सूत्र अभियान के तहत छत्तीसगढ़ ले 1,11,000 राखी देश के सीमा में तैनात जवान मन बर भेजे जावत थे। आप समाचार विस्तार ले। केंद्रीय मंत्रिमंडल हा आज 23,731 करोड़ रुपया के राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधनला मंजूरी दे दिन। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हा आज नई दिल्ली में कहिन कि एखर ले 1,50,000 रोजगार मिलही। योजना के तहत देश के कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगर पालिका जैविक अपशिष्ट और दूसर जैव संसाधन ला स्वच्छ ईंधन जैविक खाद में बदल के ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि के लक्ष्य है।

0: ए योजना 2026-27 ले 2035-36 तक लागू करे जाही। एखर ले कंप्रेस्ड बायोगैस भारत के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण के प्रमुख आधार बनही। योजना के उद्देश्य घरेलू कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन ला करीबन 10 गुना बढ़ाना, निजी निवेश ला आकर्षित करना और देश भर में चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था के निर्माण करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा कि हिनकी राज्य के सरकारी स्कूल मन मा नोनी मन बस शौचालय बनाए के अभियान मेरी बेटी मेरा अभियान मेरा अभिमान 15 अगस्त ले 26 जनवरी तक चलाए जाही। श्री सायहा आज मंत्रालय में पत्रकार मन ले गोठ बात करत बतायन कि ये अभियान विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत संचालित करे जाही। उमन बतायन कि राज्य के सबो गांव में मुक्ति धाम बनाए जाही। उहे मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत राज्य में 10,000 ले ज्यादा खराब बोरवेल पर रिचार्ज पिट बनाए जाही। मुख्यमंत्री हा कहिन कि ये तीनों काम प्राथमिकता के आधार में 26 जनवरी तक पूरा करे जाही। मुख्यमंत्री हा सबो ग्राम पंचायत ले कहिन कि ओमन हा ये तीनों काम बर अपन प्रस्ताव जनपद पंचायत ला भेजे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अध्यक्षता में आज मंत्रालय में पारस पोर्टल के पहली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। श्री साय कहिन कि पारस पोर्टल शासन के योजना के प्रभावी निगरानी पारदर्शिता और जवाबदेही ला नवा मजबूती दी। उमन कहिन कि अभी हर एक महीना के आखिरी मंगलवार के पारस पोर्टल के माध्यम ले राज्य स्तर में सबो प्रमुख योजना और जन सेवा के नियमित समीक्षा करे जाही। एखर ले योजना के काम मा गति आही, संगे संग समस्या के निपटारा बेरा मा होही और लोगन तक शासकीय सेवा के फायदा बने ढंग ले पहुंच सकही। मुख्यमंत्री हा अधिकारी मन ले कहिन कि योजना के काम मा कोनो भी प्रकार के लापरवाही मंजूर नहीं करे जाही। मुंगेली जिला में BEML के हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित होही। एखर बर पथरिया तहसील के ग्राम चंद्रगढ़ी में शासकीय भूमि रियायती दर में आवंटित करे के प्रस्ताव ला राज्य मंत्री परिषद हा मंजूरी दे दे है। ये छत्तीसगढ़ के पहली हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र होही। एखर ले जिला में औद्योगिक निवेश, रोजगार, कौशल विकास और सहायक उद्योग बर नवा अवसर मिलही। छत्तीसगढ़ सरकार हा उत्कृष्ट खिलाड़ी के सूची जारी कर दे है। सामान्य प्रशासन विभाग हा एखर प्रकाशन राजपत्र मा कर दे है। उत्कृष्ट खिलाड़ी मनला शासकीय सेवा मा नियुक्त करे के नीति के तहत 20 ठन खेल के कुल 156 खिलाड़ी मनला ये सूची मा शामिल करेगी है। ये सूची ला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अध्यक्षता मा हुए बैठक मा मंजूरी दे गई रही। राष्ट्रपति भवन डहार ले जारी स्वतंत्रता दिवस एट होम निमंत्रण पत्र में ये बच्चर बस्तर के ऐतिहासिक लोक गाथा झिटको मिटकी के प्रतीक मोटिफला स्थान देगी है। एखर ले बस्तर के समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत ला राष्ट्रीय स्तर में खास पहचान मिले है। वन मंत्री केदार कश्यप कहिन कि राष्ट्रपति भवन के स्वतंत्रता दिवस निमंत्रण में ये प्रतीक ला जगह मिलना बस्तरवासी और छत्तीसगढ़वासी मन भर गौरव के क्षण है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: आऊ अब आगू बढ़ो बाचे समाचार कोती। रक्षाबंधन में देश के सीमा में तैनात वीर सैनिक मन पर सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करे के उद्देश्य ले महिला और बाल विकास विभाग हा ऑपरेशन रक्षा सूत्र अभियान में 1,11,000 राखी बनवाए है। गुड़ियारी के भारत माता चौक में राखे गए कार्यक्रम में विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी शैल ठाकुर और अभियान के संयोजक महेंद्र प्रताप सिंह राणा ला प्रतीकात्मक रूप ले राखी सौंपेगी। कोंडागांव घलो ये अभियान में भारत स्काउट और गाइड जिला संघ डहार ले 1,000 ले ज्यादा रक्षा सूत्र देश के सैनिक मन के नाव भेजे गए है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थी मन पर ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गए है।

0: लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार पात्र विद्यार्थी मन ह राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में आवेदन कर सकते हैं। एकर बर आखिरी तारीख 30 अगस्त तय करेगी है। विद्यार्थी मन के आवेदन के सत्यापन संबंधित स्कूल और जिला शिक्षा अधिकारी मन ह करही। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन हा आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निकार कर्मकार मंडल के बैठका करीन। बैठका में चालू वित्तीय बच्छर भर अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत राज्य के 20 चयनित विद्यालय में 200 निर्माण श्रमिक मन के लेखा मनला कक्षा छठवीं में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए के मंजूरी दीन। वह निर्माण श्रमिक मन के लेखा मनला इंजीनियरिंग मेडिकल प्रबंधन और आने व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ई भर देवैया शैक्षणिक सहायता राशि के एक रूपीकरण कराए के घलो फैसला लेगी। बैठका में अटल करियर निर्माण योजना के तहत 1000 निर्माण श्रमिक मन के लेखा मनला नीट और जेई जैसन प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी भर निःशुल्क कोचिंग दिवाए के अनुमोदन करेगी। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग प्रदेश के सबो जिला कलेक्टर मनला खरीफ फसल के शत प्रतिशत और त्रुटि रहित गिरदावरी निश्चित करे के निर्देश दिन है। शासन हा स्पष्ट करे है कि ये काम मा कोनो भी प्रकार के लापरवाही बर्दाश्त नहीं करे जाही। ये नवा व्यवस्था मा पटवारी मन हा शत प्रतिशत रकबा के सत्यापन करही। वही राजस्व निरीक्षक और कृषि विस्तार अधिकारी 25-25% और तहसीलदार और नायब तहसीलदार ला 10% और अनुविभागीय अधिकारी ला 5% रकबा के सत्यापन के जिम्मेदारी सौंपे गए है। गिरदावरी के काम 20 सितंबर तक पूरा करे के खसरा और भूया सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि और त्रुटि सुधार के प्रक्रिया पूरा करे जाही। अब थोरकुन समाचार सार मा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE हा बच्चर 2026 मा आयोजित करेगे कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिका के स्कैन कॉपी लेबर ऑनलाइन आवेदन के प्रक्रिया शुरू कर दे है। मुख्य बोर्ड परीक्षा और दूसर बोर्ड परीक्षा में शामिल विद्यार्थी मन 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड CSMCL घोटाला के सिलसिला में कारोबारी अनवर ढेबर ला सुप्रीम कोर्ट हा सशर्त अंतरिम जमानत दे दे है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार जेल रिहाई के बाद अनवर ला छत्तीसगढ़ छोड़ना होगी। ये निर्वासन सुनवाई पूरा हुआ तक जारी रही। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हा लोक सेवा आयोग के 2021 में हुए राज्य सेवा परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक और भर्ती घोटाला में गिरफ्तार आयोग के पूर्व सचिव और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी जीवन किशोर ध्रुव के नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। आबकारी आयुक्त हा राज्य के आने आने जिला में शराब दुकान में निर्धारित दर ले ज्यादा कीमत में बिक्री और नियंत्रण में लापरवाही के मामला में 2 जन आबकारी उप निरीक्षक मनला निलंबित कर दे है। और सक्ती जिला के चिजदा हसौद के जवाहर नवोदय विद्यालय में अवैया शैक्षणिक सत्र में कक्षा छठवीं में प्रवेश पर आयोजित होवैया चयन परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के आखिरी तारीख बढ़ा के 7 अगस्त कर दे गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल हा आज 23,731 करोड़ रुपया के राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन ला दीन मंजूरी। मुंगेली जिला में छत्तीसगढ़ के पहली हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित होही और सिपाही रक्षा सूत्र अभियान के तहत छत्तीसगढ़ ले 1,11,000 राखी देश के सीमा में तैनात जवान मन पर भेजे जावत थे। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकार कीजिए रत्ना का नमस्कार। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है पूरब और पश्चिम। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और साथियों की। इंदीवर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। नान घाट कातल बोर्ड से हैं भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री, टिकेश्वर, ऋतु। डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय। कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम। बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, सुरीत, रमेश साहू। कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ। पुनः जंक्शन मस्तानपुरा से

ये हैं अनंता भगत, अरुणा सुलोचना, चेतन भगत। सादुल शहर राजस्थान से हैं राम कुमार रिवाड़ चंद्रकला। दिल्ली शहर से अस्मा परवीन, आमना और वली भाई अंसारी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी। जालंधर से संदीप जटौलिया। मुंबई से अदीबनाश, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया। सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन, माही। देवरी भाटापारा से हैं के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय। बिलासपुर से चन्नूलाल शिवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत, नामदेव, धर्मदास, वाधवानी। गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन अहद, मिफ्रानाज, चाहत। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी। देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या, सविता। बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, टुक टुक प्रिंस, एकांश, सुमित, ध्वनि। जालंधर से हैं मीना कौर, मन्नत, नूर। यवतमाल से पंजाब से हैं रामटेके, यशोधरा, श्राव्या। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोबराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यादव, भुवन कामरी। ओवराठीपारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा, नेहा, मोनिशा। खंडवा से अब्दुल गफ्फार और उनका पूरा परिवार। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: ईमेल करेंगे सुनिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लीजिए सुनिए अपनी पसंद का अगला गीत। पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं मेहर नगर उमड़खेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गवाड़कर, सरिता प्रिंस एकांश, मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस रेहान, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश

साबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल, पोटियाकला दुर्गे से संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निमी शिवम, सतीश मुकेश, डुमराह से वलीउल्लाह, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी, इफ्साल ताश, कोटवा नारायणपुर, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित हैप्पी, चिरमिरी कुरासिया कालरी से हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंदरी गावना थाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर जस्सी, सीता गीता, रोहासी से मुकेश साहू, नंदनी, मनीष, मयंक, जानकी, कर्मा चौक लोहारे डीए जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी कुशांत, निशांत कुमार गली, श्रीरामपुर से अशोक दली, सविता निकेत, रोहिणी ऋषिकेश, जीविका सोंगम मगलोड से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार है अंश कुमार, नरविल महाराष्ट्र से पी हसनावकर, निर्मला, विशाल सरगांव से राजेश वर्मा, हिरोमन पल्लवी, राजेश्वरी पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, खालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सर्वद, दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना चैतन्य और मेघा मस्किन। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये गीत। आवाजें हैं पामेला चोपड़ा, मनप्रीत कौर साथियों की। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

इस गीत के बाद ईमेल करें। गीत सुनी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत। गांव जाखो से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक, पूजा। लगान पंडरिया से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल, भारती। जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति। गांव हीरा वाले फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्वी, हिमाक्ष। रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र। डब्वाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तानिया। बुलढाणा वर्षिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई, दीपाली, श्लोक। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा। तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, गंगा देवी। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। गुमला झारखंड से नजमुल हुदा, एसएम जावेद, शगुप्ता, अंजुम। राजकोट से हैं जूली, जगदीश गुजराती, प्राची, प्रवीण पुजारी। बुड़सरा नीला से हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु। नायवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिठा, अलका मिठा। बठेना से हैं परमेश्वर साहू, राजवती, टोप सिंह, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश रेशमा। जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकैस्ट्रो, रोजी पड़ले, विलिस डिकैस्ट्रो। लोरमी चिचड़ी से हैं कमलकांत मरावी, प्रेमिला नेहा, पुष्पराज ऋषभ। सोंगा जिला धमतरी से हैं कोमल सेन, तोषण विनायक सेन। कुम्हार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा, प्रथमेश और पांडुरंग कुम्हार। रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरभ, शायना, मंडिया। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमिता, होजा। धनौरी तेलीवाला से है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और आयान। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी की रचना। संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

इस गीत के साथ ईमेल करें। गीत सुने कार्यक्रम बस यहीं तक। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे से लेकर 7:30 तक। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 6:45 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा

0: अब बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल,

0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को दी मंजूरी। प्रदेश में मेरी बेटी मेरा अभिमान नाम से अभियान चलाकर आगामी 26 जनवरी तक सभी सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए बनाए जाएंगे शौचालय। राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टरों को खरीफ फसल की शत प्रतिशत और त्रुटि रहित गिरदावरी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और सिपाही रक्षा सूत्र अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से 1,11,000 राखियां देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए भेजी जा रही है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में कहा कि इससे 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। योजना के तहत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगर पालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसल अवशेषों और मवेशियों के गोबर को उपयोग करके नई ऊर्जा उत्पन्न करने का मौका मिलेगा। इस योजना के माध्यम से वे किसान जो सिर्फ खेती करके अपनी आय नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अब गोबर और पराली से भी कमाई कर सकेंगे। यह योजना अगले 9 सालों के लिए लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय बनाने 15 अगस्त से 26 जनवरी तक मेरी बेटी मेरा अभिमान अभियान चलाया जाएगा। श्री साय ने आज मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यह अभियान विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत राज्य के सभी गांव में मुक्तिधाम बनाए जाएंगे। वहीं मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत राज्य में 10,000 से अधिक खराब बोरवेल के लिए रिचार्ज पिट बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तीनों काम प्राथमिकता के आधार पर 26 जनवरी तक पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी ग्राम पंचायतों से कहा कि वे इन तीनों कामों के लिए अपने प्रस्ताव जनपद पंचायतों को भेजें। मुख्यमंत्री ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के लिए 5,591 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।
1: 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत जी राम जी योजना पूरे देश में लागू हुआ है और 318 तरह के काम इसमें जल संरक्षण से लेकर अधोसंरचना और जीविका, गांव को आर्थिक रूप से भी संपन्न करने के लिए काम होंगे। तीन काम अभियान के रूप में ले रहे हैं। 15 अगस्त से प्रारंभ करके 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2027 तक ये अभियान के रूप में चलेगा। इसमें मोर बेटी मोर अभिमान, इसमें प्रदेश भर के जितने भी जो विद्यालय

0: हैं वहाँ पर हमारी बेटियों के लिए, बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण होगा।
1: इस मौके पर उप मुख्यमंत्री और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा और पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ऋचा शर्मा भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में पारस पोर्टल की पहली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। श्री साय ने कहा कि पारस पोर्टल शासन की योजनाओं की प्रभावी निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही को नई मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक महीने के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से राज्य स्तर पर सभी प्रमुख योजनाओं और जन सेवाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को खरीफ फसल की शत प्रतिशत और त्रुटि रहित गिरदावरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि गिरदावरी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत पटवारी अपने हलके के शत प्रतिशत रकबे का सत्यापन करेंगे, वहीं राजस्व निरीक्षक और कृषि विस्तार अधिकारी 25-25 प्रतिशत तथा तहसीलदार और नायब तहसीलदार को 10 प्रतिशत और अनुविभागीय अधिकारी को 5 प्रतिशत रकबे के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गिरदावरी का कार्य 20 सितंबर तक पूरा कर खसरा और भुइया सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि तथा त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उसके बाद 25 सितंबर को ग्रामवार फसल क्षेत्राच्छादन प्रतिवेदन का प्रारंभिक प्रकाशन होगा। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज नव रायपुर में छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की बैठक ली। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत राज्य के 20 चयनित विद्यालयों में से 200 निर्माण श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 8वीं में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं निर्माण श्रमिकों के बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सहायता राशि का एक रूपीकरण करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में अटल करियर निर्माण योजना के तहत 1000 निर्माण श्रमिकों के बच्चों को नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने का अनुमोदन किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुंगेली जिले में BEML का हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित होगा। इसके लिए पथरिया तहसील के ग्राम चंद्रगढ़ी में शासकीय भूमि रियायती दर पर आवंटित करने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। यह छत्तीसगढ़ का पहला हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र होगा। इस जिले में औद्योगिक निवेश, रोजगार, कौशल विकास और सहायक उद्योगों के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे। छत्तीसगढ़ शासन ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति करने की नीति के तहत 20 खेलों के कुल 156 खिलाड़ियों को सूची में शामिल किया गया है। इस सूची को मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी स्वतंत्रता दिवस एट होम निमंत्रण पत्र में इस वर्ष बस्तर की ऐतिहासिक लोकगाथा झिटकू मिटकी के प्रतीक मोटिफ को स्थान दिया गया है। इससे बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिली है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राष्ट्रपति भवन के स्वतंत्रता दिवस निमंत्रण में इस प्रतीक को स्थान मिलना हर बस्तरवासी और छत्तीसगढ़वासी के लिए गौरव का क्षण है। रक्षाबंधन पर देश की सीमाओं पर तैनात वीर सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से महिला और बाल विकास विभाग ने ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान के अंतर्गत 111,000 राखियां तैयार कराई हैं। गुड़ियारी स्थित भारत माता चौक पर आयोजित कार्यक्रम में विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी शैल ठाकुर और अभियान के संयोजक महेंद्र प्रताप सिंह राणा को प्रतीकात्मक रूप से राखियां सौंपी गई। कोंडागांव से भी सिपाही रक्षा सूत्र अभियान के तहत भारत स्काउट और गाइड जिला संघ द्वारा 1000 से अधिक रक्षा सूत्र देश के सैनिकों के नाम भेजे गए हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार पात्र विद्यार्थी राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित की गई है। विद्यार्थियों के आवेदनों का सत्यापन संबंधित स्कूल और जिला

शिक्षा अधिकारी करेंगे। रायपुर में कल छठे इंडिया रूरल कोलोक्वी के छत्तीसगढ़ चैप्टर की शुरुआत हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत ने कहा कि छोटे किसान और स्वसहायता समूहों की महिलाएं ग्रामीण बदलाव के प्रमुख प्रेरक हैं। कार्यक्रम में जलवायु अनुकूल और समावेशी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित रिपोर्ट भी जारी की गई। गौरतलब है कि ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और छत्तीसगढ़ सरकार ने समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने वर्ष 2026 में आयोजित की गई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्य बोर्ड परीक्षा और दूसरे बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र 5 अगस्त से 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट सर्वर संबंधी तकनीकी समस्या के कारण वर्तमान में अस्थायी रूप से बंद है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि तकनीकी समस्या को जल्द दूर करने के प्रयास जा रहे हैं। आबकारी आयुक्त ने राज्य के विभिन्न जिलों में शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिक्री और नियंत्रण में लापरवाही के मामले में 2 आबकारी उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है और सक्ती जिले के चिस्दा हसौद स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली चयन परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को दी मंजूरी। प्रदेश में मेरी बेटी मेरा अभिमान नाम से अभियान चलाकर आगामी 26 जनवरी तक सभी सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए बनाए जाएंगे शौचालय। राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टरों को खरीफ फसल की 100% और त्रुटि रहित गिरदावरी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और सिपाही रक्षा सूत्र अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से 1,11,000 राखियां देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए भेजी जा रही हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुने का शेष भाग

ईमेल करें गीसुनी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर फिल्म मनचली का गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार लीना चंदावरकर की, आनंद बख्शी की रचना है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, पसंद है आप सभी श्रोताओं की। बजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं सत्येंद्र कुमार चौसलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो एलिजा नायाब और लड्डू। हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। जगराव से सुनील पाठक, कमल दीपिका मल्होत्रा, गव्या सुच्चा सिंह पाठक। धुराबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन युवराज। बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, निधि निखिल, यश प्रयाण, शिवम रेखा, धनेश्वरी। रिंगनी से दिनेश वर्मा।

माँ करुणा वर्मा, लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंगल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल, अविराज, लुत्रा खमरिया से हैं अक्रम, अमीन, अर्श और आतिका, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद अलकमा खत्री, रमेश और मोहम्मद शादाब खत्री, कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, गंडई टिकरा टिकरी पारा से हैं जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ और ऋचा, भिलाई से अशोक, श्याम कुमार, प्रमिला, आसमा, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर, राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी, नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढी

0: श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हेना, हर्षित खुशी, नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन और अपार, लुत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीश, तिवर्ता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र जयंती, ममता मनीषा, मंजू मानसी, सुरेंद्र मोहन सिंह, सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थादवानी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ शौर्य, बुड़गहन से हैं राम दुलारी प्रजापति, राम शरण चंद्रेश, कुमार चंद्र कला और शशिकांता, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर, महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख, नाजे नासिर, साजिद और शाहिद। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म मंचली का ये गीत।
1: गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी।

आइए अब सुनते हैं अगला गीत आप सभी की पसंद पर। करनाल से हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और माया। निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक। रसेड़ा से हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डाली, पूर्वेश। इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्जे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी। बागबाहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा, कौशल। फजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विशाल, विशु और उनका पूरा परिवार। खुंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह, पैकरा, घोड़नी, करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हिरमनी, ऐश्वर्या। पांडा कवड़ा से अनिल, उषा, अनुश्री, धनश्री। जालंधर से संदीप मक्कर, ज्योति, मन्नत, भरत और कमल साहनी। पौड़ी भाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल। पैठण से हैं सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिया। अकोला से हैं सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं उदयभान पाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल। बुधकछा लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज। दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती। भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र साहू। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु, सोनाली। बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह। पुरानी भिलाई तीन चरौदा से हैं ये नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन जीशान अहमद, शाहनवाज अहमद। दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना। जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओब्राय। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया। जमशेदपुर से हैं अपूर्व सिंह, अनुपम और राकेश कुमार। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दोस्ताना का ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और साथी की। आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

इस गीत को हमने लिया था फिल्म दोस्ताना से। आवाजें थी किशोर कुमार, आशा भोसले की, आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत। बड़ी खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेश्वरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दुदी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार। महसौल सीतामढ़ी बिहार से हैं मुसर्रत जहां, तलत, फरहत और परिवार के सभी सदस्य। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, नंदा, हनुमान, उत्तम जमदाड़े। भुचो कैचिया बठिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करण वीरकरण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत। गुजरात से हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश शौहरी। विरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिप्पा, कपिल, पूजा परिहार। खमरिया से हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। पायदा पलारी से हैं नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखनलाल, सावित्री बाई। पिपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश। छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन। सरगुजा मेन पार्ट से हैं अजीता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा। राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति ख्याति। समडेल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम। अड़ान नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही, मेहराज जहां। रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन, संजय, दीपक, कमल और परिवार के सभी सदस्य। बलौदा से दिलहरण, गौतम, अंजलि, आनंद पटेल, समृद्धि। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेन शाह। दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा। धाड़ी नांद्रा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य। पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, यशस्वी। देवरी भाटापारा से हैं गनूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम। टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप, तृप्ता, प्रियंका, प्रियंबामिका, वाणी, थांदी। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म सेहरा का गीत। स्वर है लता मंगेशकर का, लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है रामलाल का।

इसके बाद लीजिए सुनिए, ईमेल करेंगे सुने कार्यक्रम का अंतिम गीत। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। नागर कोहरा राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी प्रेम, पूजा दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा आराध्या। महाराष्ट्र से हैं रूपेश संघई, महेश प्रज्ञेश प्रीतेश। भागलपुर से कमल किशोर साह, अश्विनी अमर दीप पशुपति और मुस्कान। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता रुद्र वर्मा। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश, आशीष रवि, शनि रियांश, कान्हा आदित्य। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार, वसुधा वज्रसेन। ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव, एस के पप्पी। सहारनपुर से आशु और परिवार के सभी सदस्य। कस्बा गुनौर से नसीमुल इस्लाम और उनके सभी दोस्त। रायपुर से विनोद मंडलकर, वीणा, विविधा। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म आराधना का गीत। लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है एस टी बर्मन का।

फिल्म आराधना के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने अब समाप्त होता है। रत्ना को दीजिए अनुमति। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 7:30 होने वाले हैं। कुछ ही देर में प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: दीदी, हमन कहूँ कहान त भई भारत एक कृषि प्रधान देश हरे, माने हमर सबले बड़े ताकत किसान मन हरे।
1: हाँ
0: आज के समय में खेती केवल पारंपरिक आजीविका के साधन नहीं, भलुक आधुनिक और लाभकारी व्यवसाय बनत जाते। और ये बदलाव में हमर युवा संगवारी मन के बड़ा योगदान है, काबर की ओमन अपन नवा सोच, नवा तकनीक और डिजिटल ज्ञान संग खेती किसानी ला नवा ऊंचाई तक पहुंचावत है।
1: अब देख सरिता, कहूँ नवा नवा तकनीक के गोट करबो ना, तो हमार युवा संगवारी मन हा आजकल कैसन सुघर ड्रोन के उपयोग करत है और मोबाइल ऐप जेमा जम्मो प्रकार के जानकारी है ना ओमा उपलब्ध रहते है, ओकर उपयोग करके ओमन समय से पहले वाला बीमारी ले बचावत है, कौन प्रकार के कीटनाशक के उपयोग कर सकत है, कैसना खाद अपन पेड़ पौधा में डाल सकत है, अपन फसल में डाल सकत है और कैसना टाइप के ओमन हा बीज उपयोग कर सकते, ये सब जानकारी मोबाइल ऐप ले ओमन लेवत है और मिट्टी परीक्षण करावत है और संगे संग मौसम के पूर्वानुमान। आज पूर्वानुमान हा कतेक ज्यादा मायने रखते कि अगर कहीं हमन ला पता चल गए कि नंगत पानी गिर रहा है, ता आज हमन हा अपन खातू पानी ला नहीं डालबो या कीटनाशक के उपयोग नहीं करबो, काबर की

0: तो आज ही है नहीं, और इसने नवा नवा सिंचाई प्रणाली है, जेमा है क्लाउड सिंचाई है, टपक सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई है, इमन के उपयोग करबो तो पानी के हर बूंद के फायदा हमन ला मिली सरिता। और उन्नत बीज के गोट तो हमन जान बेच करत हन
1: बिल्कुल
0: है
1: सही कहा
0: नहीं।
1: था दीदी। और संगे संग जो तकनीक आज सबके पहुंच में है, शहर लागे न गांव, हर कोई तकनीक से जुड़ना चाहते हैं। इंटरनेट के जमाना है, गांव के युवा पीढ़ी मन पढ़ लिख के हर नवा तकनीक ला अपन खेती किसानी में अपनावा थे और कृषि के क्षेत्र में आगू बढ़ा थे। शासन के हर योजना के लाभ मन ला मिला थे। और मोबाइल भाई आज हर घर में है, तो एक क्लिक में हर योजना के जानकारी मोबाइल में आवा थे। ऑनलाइन पंजीयन के सुविधा हमन ला उपलब्ध है और संगे संग ऑनलाइन बैंकिंग ले सुविधा ज्यादा बढ़ गए है भाई। कोई भी योजना के पैसा आवा थे या कोई लेन देन करत हन, तेकर सीधा जानकारी मोबाइल मिला थे।
0: अब देख सरिता, अब जैसे कि हमन हाँ अगर कहीं अच्छा मूल्य पाना चाहथन अपन उत्पादन के, तो वो जिनिस ला अत्यक सुघर हमन हाँ सजा के बाजार में पहुंचावन, ओकर साफ ओला जब पैकिंग करत हन ना, तो ओकर साफ सफाई के ध्यान रखन और ओला सुंदर तरीका ले तैयार करके बाजार में भेजन, ताकि वो समय तो हमला वो जिनिस के बहुत अच्छा मूल्य मिले और संगे संग आने वाला समय पर भी हमला बाजार तैयार मिले।
1: बिल्कुल सही कहा था दीदी, जो दिखते वो बिकते कथन है नहीं।
0: हाँ
1: तब ऐसने ही आज के संगवारी मन घलो अब बिल्कुल समय के साथ बदला थे। और गांव में भी हमन देखा था महिला स्वयं सहायता समूह मन अपन उत्पाद ला पैकेजिंग करके सुंदर तरीका से सजावा थे और अपन उत्पाद ला सीधा शहर तक पहुंचावा थे और सीधा लाभ कमावा थे,
0: हाँ
1: है नहीं। एमा भी हमार जो इंटरनेट है उकर बहुत बढ़िया योगदान है कि ई बाजार खुल गए और हमार किसान संगवारी मन सीधे उपभोक्ता तक अपन उत्पाद ला पहुंचावा थे और बढ़िया मूल्य पावा। संगवारी हो, सावन के महीना चलत है और हमार किसान भाई बहनी मन बढ़िया चेत लगा के अपन भुइया के जतन करत है। दीदी भाई, बरसात के पानी माने अमृत है नहीं, और ये पानी माँ खेत खार पेड़ पौधा जैसे लहलहा उठते। और हमार करा कोनो परिया भुइया है या खाली जमीन है जेमा हमन कुछ नहीं करथन, उमा फलदार पौधा लगा सकथन या फिर बगीचा बनाए के बारे में यदि सोचा था ना, तो ओकर बार ये मौसम बड़ उपयुक्त है।
0: हाँ सरिता, मैं हाँ तेहा कहना चाहता है कि हमार परिया जन भुइया है तेला ए बरसात के मौसम में अच्छा भुइया बनालन है नहीं, और संगे संग हमन फल भी के पौधा उगालन। ता आज के सलाह क्रम में सुनथन जाम माने अमरुद के उन्नत खेती। विशेषज्ञ है डॉक्टर सेवन दास खुटे, सहायक प्राध्यापक फल विज्ञान विभाग उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सांकरा जिला दुर्ग, और एकर संगोट बात करे हवे सरिता हर।
1: संगवारी हो, जाम या अमरूद एक ऐसे मौसमी फल आए जिन स्वादिष्ट होए के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी है और विटामिन सी से भरपूर ये फल के मांग बहुत ज्यादा है। अच्छा किस्म के फल के उत्पादन करके हमार किसान संगवारी मन अच्छा लाभ कमा सकते। ता आओ जाम या अमरूद के उन्नत खेती के बारे में जानथन। जानकारी देबर हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सेवन दास खूंटे, सहायक प्राध्यापक फल विज्ञान विभाग उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सांकरा पाटन ले। डॉक्टर साहब राम राम।
2: राम राम, जय जोहार किसान भाई हो।
1: सबले पहले डॉक्टर साहब अपन ये बतावो कि अमरूद या जाम बर हमर छत्तीसगढ़ में का का संभावना है, छत्तीसगढ़ के जलवायु और माटी का एकर व्यावसायिक खेती बर उपयुक्त है।
2: किसान भाई हो, सबसे पहले आप मन देखता जाम एक ऐसे फसल है जिन हाँ छत्तीसगढ़ के हर कोने कोने में हमान लगा सका थान। छत्तीसगढ़ के जलवायु को तीन भाग में बांटे गए है। ऊपर में है जिन हाँ हमान उत्तरी नॉर्थर्न हिल्स जो बोलथन, उत्तर का जो एरिया है सरगुजा संभाग जो का एरिया जो है सरगुजा जसपुर कोरिया, एकर जलवायु अलग है। ओकर बाद जैसे हमारे मैदानी भाग में आथन तो छत्तीसगढ़ में रायपुर बिलासपुर जांजगीर महासमुंद गरियाबंद धमतरी ये हमारा मैदानी एरिया में आते आते। ओकर बाद देखथन किसान भाइयों हमन बस्तर के जलवायु देखथन तो बस्तर प्लेटू के थन हमन, तो बस्तर में दंतेवाड़ा बीजापुर ये वह एरिया पूरा बस्तर में आते। तो आप मन देखो किसान भाई हो, अमरूद एक ऐसा फसल है जिन्हें घर घर में होते और बहुत स्वादिष्ट होथे। एकर स्वास्थ्यवर्धक के लिए हमन देखथन ता एकर जेन ऊपर के जेन कोमल कोमल लीफ है तेनो लीफ ला जैसे डायबिटीज पेशेंट है तो सुबह सुबह खाली पेट में खाते। ओकर बाद हमन देखथन जेला पेट के संबंधित बीमारी रहते जैसे पाचन तंत्र से हो गए तो ओकर बाद देखथन हमन इसका अच्छा पके वाले फल ला खाथन।

0: ओकर से भी पेट साफ अच्छा हो जाते। ओकर बाद एमा के 260 mg से लेके 300 mg तक विटामिन सी प्रति 100 ग्राम फल में पाए जाते। तो ओकर अनुसार से हमन देखते हैं किसान भाई हो तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। जैसे किसान भाई हो एकर जलवायु बार देखते हैं हमन, तो एकर बाद जन है तापमान है, वैसे यह हार्डी नेचर के तो यह 40 सेल्सियस तक तापमान में भी आराम से हमन एला ले सकत हन। अब एकर बार जैसे मिट्टी की बात करते हैं हमन, तो ये सभी प्रकार के मिट्टी में ये आसानी से हम लगा सकत हन। बस ध्यान रखना है कि जो दलदली भूमि है और जो पथरीली भूमि है उसको यदि हम छोड़ दे तो सभी प्रकार के भूमि में लगा सकत हन। किसान भाई हो जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में हर तरह के मिट्टी पाए जाते हैं, जैसे मटासी है, डोरसा है ना, तो सभी प्रकार के मिट्टी मेला आराम से लगा सका था।
1: डॉक्टर साहब, जाम या अमरूद यदि हमार किसान संगवारी मन एकर उत्पादन करना चाहते हैं तो यहू बताहू कि एकर सही बेरा लगाए के कौन से है?
0: वैसे अमरूद को वर्ष भर हमन लगा सकत हन, 2 टाइम ज्यादा अच्छा रहते लगाए बार। जैसे फरवरी मार्च में हमन लेकर पौधरोपण कर देना चाहिए, और जैसे जून जुलाई के जो महीना है जैसे मानसून होते ओकर वो समय एला लगा देना चाहिए। ओकर बाद सबसे पहले ध्यान रखना है पौधरोपण जैसे हमन करना है तो गड्ढा कैसे बनान, का साइज के गड्ढा बनान, और गड्ढा ला हमन का चीज में ऐसे भरन जेन एला पोषक तत्व मिल सके। तो ये आप मल्ला पौध रोपण के 20 से 25 दिन पहले हमला गड्ढा बना लेना है, 90 सेंटीमीटर के लंबाई, 90 सेंटीमीटर के गहरा और 90 सेंटीमीटर के चौड़ा का हमला गड्ढा बना लेना है। और वो गड्ढा ला निकाल के जो मिट्टी रही तेला किनारे किनारे रख के सुखा लेना है। तो वो समय क्या है किसान भाई, जेमा एमा हानिकारक जो भी जीवाणु रही तेना तेज धूप के नाम से मर जाए।
1: एमा पौधा के बढ़वार बर कौन कौन से खाद हमला डालना चाहिए और कब डालना चाहिए यहू ला बताहू?
0: किसान भाई हो लगाए के पहली एमा पूरा 40 से 50 kg हमन अच्छे सड़ी हुई गोबर के खाद ला मिट्टी में मिला के हमला गड्ढा ला भर लेना चाहिए। और जैसे हमन पौधा लगाबो तो पौधा में जो पॉलीबैग लाथन जे में पौधा रही ओकर साइज के अनुसार गड्ढा बना लेथन पहले, और गड्ढा बनाए के बाद फिर पौधा ला ओमा डाल के हमन रोपण कर देथन। और उस किसान भाई हो ध्यान रखू अभी बरसात के सीजन चला थे हमारे, तो ए सीजन में आप मन एकर पौध रोपण कर सका था। और पौध रोपण करते समय ध्यान रखू कि जल भराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, तो उससे क्या है उसमें सड़ने की जो जड़ है वो सड़ने की संभावना ना रहे। ओकर बाद किसान भाई हो आप मन ला ध्यान रखना है कि जैसे हमारा पौधा लग गए अपने जून जुलाई में लगा दे हो, अभी पौधा जो लगा दे हो तेकर बाद खाद माटी है बहुत जरूरी है। तो एक बार प्रति पौधा जैसे हमारा पौधा 1 साल की है तो ओमा आप मन किसान भाई हो 50 ग्राम यूरिया और 40 ग्राम पोटास फास्फोरस मिला के अच्छे से आप मल्ला डाल दे हो।
1: ये तो हो इस खाद के बाद, अब संगी मल्ला यहू बताहू कि जाम के खेती में सिंचाई के प्रबंधन हमन कैसे करबो?
0: जैसे किसान भाई हो हमन देखथन जैसे पौध रोपण करथन ओकर बाद तो सबसे पहले आप मल्ला सिंचाई दे देना है, उसी टाइम दे देना है। तो सिंचाई के जो है अमरूद के लिए वो मौसम पर डिपेंड करते, जिन मौसम में रही जैसे बरसात का अभी सीजन चला थे तो आप मन ध्यान रखो अभी तो अक्टूबर तक के पानी दे के जरूरत नहीं पड़े। ओकर बाद जैसे ठंडा मौसम आ तो ठंडा मौसम में 15 से 20 दिन के अंतराल में हमन एक बार सिंचाई कर देबो, और जैसे बरसात खत्म हुई तो अक्टूबर में एक बार वाला खाद माटी भी देना है। ओकर बाद देखते हैं जैसे गर्मी के सीजन है किसान भाई हो तो गर्मी में 5 से 7 दिन में हमला एक बार सिंचाई कर देना चाहिए। और किसान भाई हो ध्यान रखो जेकर तीर बूंद बूंद टपक सिंचाई के माध्यम से यदि पानी दे के साधन हो तब सिंचाई के साथ में एक सिंचाई में 1 महीना 2 महीना के अंतराल में आप मान 19-19 करके जो हमारे खाद आते तेला 2 से 2.5 किलो 1 एकड़ में यदि पौधा लगे है तो प्रति सिंचाई आप मन मिला हो तो पौधे के बढ़वार अच्छा हो ही, काबर पानी के साथ साथ ओला खाद भी मिल जाही।
1: डॉक्टर साहब, पौधा कतना दिन में बड़े हो जाते और एमा फल कतना दिन में लगते।
0: पौधा ला जैसे हम लगाथन तो हमार चयन के ऊपर रहते, जैसे हमन बीजू पौधा के चयन करे हवन तो वो है 3 साल 4 साल में फल आते, और यदि हमन वनस्पति

0: प्रत्येक विधि से, यदि जैसे ग्राफ्टिंग से हमन करे हन या एयर लेयरिंग या गुटी से जो पौधे लगाए हन, तो वो तो साल भर में फल आके चालू हो जाते। तो किसान भाई वो ध्यान रखो, यदि आप मन ला जल्दी फल चाहिए तो आप वनस्पति पौधे ला चयन करो। जैसे एक बार आप मन ला बता देता मैं हाँ, अच्छा वैरायटी जैसे ललित है, इलाहाबाद सफेदा है, श्वेता है, VNR भी है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा चलते, और लखनऊ 49 है, तो इमें साल 1.5 साल में फल आराम से आए चालू हो जाते।
1: डॉक्टर साहब, साल में कतका बार एकर फल लगथे और ज्यादा उत्पादन पाए बर हमर किसान संगी मर का तरीका अपना सकथे, यहुल बताहू।
0: किसान भाई हो, जैसे हमने मां देखन कि गुआवा की जो फसल है वो मां कटाई छटाई की जरूरत पड़ते। कटाई छटाई ला हमान मई और जून के महीना में, 15 जून से पहले यदि हमन कटाई छटाई कर लेबो तो एमा फल हा अच्छा आते। जैसे आप मन देखे हो किसान भाई घर में या बारी में एकाध पेड़ हो अमरूद के, तो एमा 3 बार फूल आते। 3 बार फूल आते तो आप मन देखो किसान भाई हो, एक तो अभी फूल लगे हो ही, और दूसर हमन देखते हैं जैसे नवंबर दिसंबर अभी वाले जो फल आई तेना दिसंबर तक चल ही, तो ओकर बाद भी साथे साथ फूल आए चालू हो जाते। जिन हाँ फरवरी मार्च में फल आते, और ओकर बाद फरवरी मार्च में जिन फल आए फूल आई तेन हाँ जून जुलाई में वो फल आए के बाजार में चालू हो जाते। तो अच्छी क्वालिटी के यदि फल लेना है किसान भाई हो, तो एकर फूल ला रेगुलेट करे के तरीका है, नियंत्रित करे के तरीका बहुत जरूरी है। और हमारे छत्तीसगढ़ में हमन देखते हैं जैसे एला जेन हाँ ठंड के मौसम में जेन फल आते ओला किसान भाई हो ज़्यादा हमन पसंद करते हैं, टेस्टी भी रहते और साइज भी अच्छा मिलते, स्वाद भी अच्छा मिलते और बाजार मूल्य भी सही मिलते। तो ओकर बाद बाकी 2 सीजन के है जेन हाँ गर्मी में फल आए और अभी जेन बरसात के फल है ओला किसान भाई हो यदि आप मन नहीं ले हो तो आप मन के जो ठंड मौसम के जो फल है वो अच्छा है। तो ओकर बाद किसान भाई हो ओकर बाद ट्रेनिंग पुनिंग कहते हैं हमन कटाई छटाई ओला हर साल आप मन ला करेल पड़ी। काबर अमरूद है एक ऐसा फसल है जेन हाँ जैसे नया जो ब्रांच आते शाखा आते तो ओमा ज्यादा फूल लगते और क्वालिटी फूल आते, और ये 20 साल 30 साल तक भी चले जाते। लेकिन एक फल ला यदि लेना है आप मन ला तो 15 साल तक लेना चाहिए। ओकर बाद टैप वर्किंग के माध्यम से या फिर इरिगेशन के माध्यम से जीर्णोद्धार करके हम अपन ऑर्चर्ड ला विकसित कर सका था।
1: जाम या बिही कहान, एमा कौन कौन से रोग या कीट लगते और एकर नियंत्रण कौन रकम ले करे जा सकते?
0: अमरूद के खेती में ज़्यादा समस्या जैसे दूसरा फल के अपेक्षा कम लगते, एमा बीमारी भी कम लगते। एकर लिए सबसे हानिकारक विल्ट करते हैं हमन झुलसा रोग, वो का है पेड़ है पूरा सूख जाते। तो ओकर नाम से क्या होते है कि ओमा अम्ली जो हमारे भूमि रहती है ओमा कम बीमारी लगते, लेकिन जेन है क्षारी भूमि ज़्यादा रहते है जेला हमन एल्कलाइन सॉइल कहते हैं ओमा ये बीमारी है ज़्यादा लगते, या वो एक फफूंद भी लगते फ्यूजीरियम करके जो फफूंद लगते ओकर नियंत्रण और फफूंदनाशक के उपयोग करना है, और ओकर से उपचार करके हमन बीमारी से छुटकारा ले सकत हन। ओकर बाद देखते हैं एमा कीट के 2 कीट ज्यादा लगते, एक तो फल छेदक कीट लगते और दूसर एकर जेन है छिलका है छिलकल खाए बार एक कीट लगते छिलकल खाते। तो ओकर नियंत्रण बार आप मन जैसे कोई भी इंसेक्टिसाइड आप मन ले सकत है, और इंसेक्टिसाइड ले के बाद जैसे छिलका वाले कीट है तो छिलका वाले के तना में छिलका माँ तनम छेद कर देते, तो माँ कैरोसिन डाल के काटन जेन है रुई रही थे रुई में कैरोसिन डुबा के यदि हम वो छेद में घुसा देते हैं और घुसा के वो छेद यदि बंद कर देते हैं तो कीट है मर जाए। और जैसे आपके फल वाले जो बेधक कीट आते वो है बरसात के यदि हमन फल लेते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा कीट लगते। तो बरसात के जो फल यदि अपन लेवा था तो ध्यान रखो या फिर ओला बेगिन कर दो जैसे पेपर या झिल्ली में ढक दो फल ला, और या फिर फल ला पूरा पक जाता है वैसे ना करके उसको यदि अब 60% 70% जैसे फल पका थे उस समय तोड़ लो तो कर बाजार मूल्य आप मल्ला मिल जाए। और इंसेक्टिसाइड जैसे डालो तो बायो इंसेक्टिसाइड या नीम से बना वाले इंसेक्टिसाइड का यदि हम उपयोग करबो तो ये फल छेदक कीट ले राहत मिल जाए।
1: ये बढ़िया बात आप मन बताए डॉक्टर साहब। एकर संग यहू बताहू कि एकड़ पाछू हमला अमरूद या जाम के उपज कतका मिल सकत हे और एकर भंडारण हम कोन रकम ले कर सकथन, भंडारण के संगे संग प्रसंस्करण यदि हमर संगवारी मन करना चाहत हे तो कैसे करही।
0: जैसे हमन अमरूद के खेती करथन, ता अमरूद के खेती के पेड़ के ऊपर

0: करथे कि ओकर पेड़ ह कतेक साल के हो गए हे, दूसर वह कौन से वैरायटी हमन ले हन ओकरो पर लगथे, और सबसे ज्यादा प्रभावित करथे हमन कैसे समय में पानी दे हन, समय में खाद दे हन नहीं दे हन, एकर पर भी ओकर उपज ह निर्भर करथे। तो अच्छा यदि हमन मैनेज करथन, समय में यदि पानी देथन, समय में हमन खाद देवाथन, समय में यदि कटाई छटाई कराथन, तो प्रति पौधा एमा 20 से आपका 30 केजी आपको फल आपको प्राप्त हो जाते। और यदि हम नग की बात करबो तो अच्छा यदि हमार 5 से 10 साल के यदि पौधा है तो एक पौधा ले आप मल्ला 300 से 500 तक के फ्रूट आप मल्ला मिल सका थे प्रति पौधा। तो ये निर्भर करते आपके रख रखाव में। ओकर बाद जैसे हम देखते हैं जैसे बाजार में जिस समय एक रेट कम हो जाते ज़्यादा आते जो ठंड के मौसम में, तो उस समय किसान भाई हो आप मन घर में एकर जैसे हम निक्टर बनाथन RTS बनाथन पेय पदार्थ है जूस बना के एला भी हम 100 से 190 दिन तक 60 दिन तक एला सुरक्षित करके भी हम रख सकते हैं। एकर से जैम जेली बना के भी हम एकर प्रसंस्करण करके एकर मूल्यवर्धक उत्पाद बना के भी एकर मूल्य ला बढ़ा सकत हन, और एला हमन जिन समय हमार अमरूद नहीं रहा वो समय भी हमन अमरूद के स्वाद ले सकत हन।
1: तो हमार किसान संगी मन जिन मन ये जानकारी ला सुनत होही वो मन अपन खेत के मेड़ मा जाम के पेड़ लगा के आमदनी कमा सकते, और हमन आशा करथन कि जिन मन व्यवसायिक रूप ले उत्पादन करना चाहत हे या करत हे वो संगवारी मन जरूर एकर लाभ लिही। तो डॉक्टर साहब आप मन हमार स्टूडियो में आए अतका सुघर जानकारी देव एकर बर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार।
2: संगवारी हो अभी सुनें आज के सलाहक्रम में जाम माने अमृत के उन्नत खेती विषय में विशेषज्ञ रही हैं डॉक्टर सेवन दास खुटे, सहायक प्राध्यापक फल विज्ञान विभाग उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सांकरा जिला दुर्ग।
1: और दीदी अब सुनथनिये संदेश।

0: भारत के किसान हम,
1: किसान हम,
2: किसान हम।
3: सरिता, संगवारी मल्ला अपन प्रश्न के अगोरा रही है नहीं, तो आज के क्रम कृषक प्रश्न मंच में संगवारी मल्ला बता देथन आज के प्रश्न। आज के प्रश्न है, जाम माने अमरुद के उन्नत किस्म कौन कौन से हरा है? और संगवारी हो, एक सही उत्तर आप मन 7 दिन के अंदर हमार कार्यक्रम में पठो दू, ताकि आप मन के नाम ला हमन हा कार्यक्रम में शामिल कर पाबो। और पाछू हफ्ता आजे के दिन के प्रश्न रही से, खेती के संग आर्थिक मुनाफा वाले फलदार पौधा या वन्य पौधा लगाथन ओला का कहे जाते? और एकर सही उत्तर है कृषि वानिकी।
4: और सही जवाब लिख के हमारे संगवारी मन पठोए हैं, लोरमी चचेड़ी ले कमल कांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी मन, कुई ग्राम भंगी टोला ले हैं, ननका राम धुर्वे, जामुनबाई, फिरत राम, मालती धुर्वे मन, भड़गा कोदवा ले हैं, श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी रानी, रजनी, राहुल मरावी मन, पिपरिया ले हैं कमल कांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता मन, मदनपुर कवर्धा ले हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू मन, परसा टोला अंबागढ़ चौकी ले हैं ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुषारणी मसिया मन, फुलझर घटा रानी ले हैं योगेश्वर साहू, डुमेश्वरी, यामिनी, मुस्कान, हर्षिता साहू मन। तसंगवारी हो, आप मन हमर तीर सही जवाब लिख के भेजे, एकर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद और गाढ़ा गाढ़ा बधाई। अब एक संग सुनथन संगवारी हो ये सुघर गीत, जेला स्वर दे हैं ध्रुवा राम मरकाम और दुखिया बाई मन।

0: संगवारी हो अभी सुनें सुघर गीत धुरवा राम मरकाम और दुखिया बाई के स्वर में। संगवारी हो अब बेरा है मौसम के जानकारी के। तो मौसम विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार काली प्रदेश में हल्का ले मध्यम बरसात होए के संभावना बताई गई है। संगे संग एक दो जगह भारी बरसात के भी संभावना बताई गई हवे।
1: मनीषा दीदी, आज हमला मंडी के भाव तको मिले हैं, जेमा हमन संगवारी मन ला बता देथन न्यूनतम ले अधिकतम प्रति क्विंटल का भाव चलत है। गेहूं के भाव है संगवारी हो 2450 ले 2750 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों के भाव है 5800 रुपया ले 7500 रुपया प्रति क्विंटल। चना के भाव है 6000 ले लेके 7200 रुपया प्रति क्विंटल। और मूंग के भाव है 6200 से 7600 रुपया प्रति क्विंटल। धान के भाव है संगवारी हो 1900 ले लेके 2200 रुपया प्रति क्विंटल। संगवारी हो ये रही किसान वाणी, प्रायोजक रहीन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: तो संगवारी हो गए जाए के बेरा फिर जाए के पहले बता देता हूं काली के कार्यक्रम। काली संझा गोट बात हुई कृषि में युवाओं की भूमिका, संगे संग आप मन के जिज्ञासा और समस्या के समाधान हुई फोन इन कार्यक्रम हेलो चौपाल में। और सुघर गीत संगीत संग कृषक प्रश्न मंच तो होबेज करी। तो देवा विदा जम्मू संगवारी मल्ला मनीषा
1: और सरिता के राम राम।

0: किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: राजित कार्यक्रम किसानवाणी अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय रात के 8 बजने को हैं। कुछ देर में संसद समीक्षा हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर आज भी अड़े रहे। इस कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित रही। हंगामे के बीच सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुई अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। इससे पहले पूर्वान 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल की कार्यवाही को शुरू करना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच कुछ सदस्य अपनी सीटों से बाहर आ गए। हालांकि सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का कई बार आग्रह किया। हंगामे के बीच ही शून्यकाल के दौरान भाजपा के राघव चड्ढा ने डॉक्टरों को डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा कथित तौर पर कमीशन राशि दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने और मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीडा ने सरकारी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में इस

वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी के सदानंद महालू शेठ तानवड़े ने कहा कि गोवा में वर्ष 2012 में खनन गतिविधियां बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से खनन क्षेत्र को स्थायी और पारदर्शी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के बयान

इसे पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। सभापति ने उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन कुछ लिखकर लाते हैं और सदन में उसे पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। जब सभापति ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इन सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने की मांग की। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्य शांत रहेंगे तो वो पूरक प्रश्नों के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति देंगे। सदस्यों के शांत होने के बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे से अपनी बात रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। श्री खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कब बोलना है, क्या बोलना है, ये तय करना उनका अपना अधिकार है और इसके बारे में उन्हें अब क्या संसदीय कार्य मंत्री से पूछना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने आसन से कहा कि गृहमंत्री को सदन में आने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गृहमंत्री को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने को कहा। हंगामे के बीच सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को दोहराया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया जाना है, इसलिए सदन में व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को उठाया। तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीजू जनता दल की सुलता देवी, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, ऑल इंडिया अन्ना डीएम के सदस्य डॉक्टर एम थंबी दुरई, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सिकंदर कुमार, महेंद्र भट्ट, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, डीएम डीए के सदस्य एल के सुधीश और मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए धन निकालने की खातिर

मंजूरी देना है, जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस साल के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारालूल हक। लोकसभा ने आज कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा न हो सकी। विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों की तरह आज भी सदन में हंगामा जारी रखा, जिससे लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सदन की कार्यवाही सवेरे 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य जहां अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे, वहीं कांग्रेस सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग को दोहराते हुए हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को चलना चाहिए, सदन में चर्चा और संवाद होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना सदन की गरिमा को गिराता है, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। उन्होंने कहा कि देश आपके आचरण को देख रहा है। शोर शराबा न थमने पर अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे फिर शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा उसे पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रख दिया। पीठासीन अध्यक्ष संध्या रॉय ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका यह व्यवहार उचित नहीं है, यह सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमने पर पीठासीन अध्यक्ष ने बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा न हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने के राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान कानूनी प्रावधान को हटाना है, जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR को लागू करने से रोकता है। RTGS और NEFT के जरिए होने वाले रियल टाइम भुगतान के

0: लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है। हालांकि यूपीआई लेन देन को ऐसे शुल्क से अभी छूट प्राप्त है। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा है। कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर कम शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा भुगतान अवसंरचना कंपनियों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती हैं। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने से रोकती है। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 269SU के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले बड़े व्यवसायों के लिए रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI QR कोड सहित कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है। वर्तमान में कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269SU के निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में तत्काल 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से घायल और विकिरण के शिकार हुए थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती थी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।
1: संसद समीक्षा अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय रात के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिली। प्रस्तुति है मोनाली ठाकरे और नेमी चंद की।

0: चिट्ठी मिली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मोनाली
1: और नेमीचंद का नमस्कार।
0: श्रोताओं, जिंदगी की असली दौलत रिश्ते होते हैं। एक फोन कॉल, एक संदेश या फिर अपने हाथों से लिखी एक चिट्ठी, ये छोटी छोटी बातें दिलों को जोड़ती है। आपकी चिट्ठियां भी हमारे और आपके इसी अपनेपन की डोर को मजबूत करती है। तो आइए इसी अपनेपन के साथ शुरू करते हैं आज का चिट्ठी मिली कार्यक्रम। तो नेमीचंद जी, लेते हैं पहला पत्र।
1: जी, पहला मेल आया है हमें बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा, छुटकी, शरद कुमार डोडवानी, कीरत राय वाधवानी, प्रदीप कुमार साहू एवं पूरा माखीजा परिवार का। आप लिखते हैं, 31 जुलाई को 10 बजे गुंजेश्वर गांव में राजा मोरज ध्वज का किस्सा और राजभजन बहुत अच्छा लगा। साथ ही 31 जुलाई को ही रात 8 बजे फिल्मी हस्ती अभिनेत्री मुमताज जी और मोहम्मद रफी पर केंद्रित प्रोग्राम व गीत सुने, जिसे पेश किया अंतरा जी ने। ये कार्यक्रम भी इनको अच्छा लगा। और 2 अगस्त को मित्रता दिवस पर आरती जी ने रजनीगंधा पेश किया, वो भी अच्छा लगा। साथ ही 3 अगस्त को रजनीगंधा पेश किया श्वेता पांडे ने और तुहार गोठ हमर गीत कार्यक्रम भी इन्हें बहुत अच्छा लगा।

0: 5 अगस्त को हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम भी इन्हें काफ़ी पसंद आया, जिसे सुनील चिपड़े जी ने प्रस्तुत किया था, और साथ ही 5 अगस्त को रजनीगंधा पेश किया था मदन पांडे जी ने। ये कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा। 6 अगस्त आज गुरुवार को सुबह माटी के स्वर में सावन मौसम पर आधारित छत्तीसगढ़ी लोक गीतों ने इनके परिवार के पूरे मन को भा गया। आपने हमें मेल किया, हमारे कार्यक्रमों को सुना, कार्यक्रमों की समीक्षा लिखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: लेते हैं अगला पत्र जो आया है चापा से। सतीश नामदेव, साधना नामदेव, धीरज शेंडे, अम्रपाली शेंडे, सविता रामटेके, कुलदीप यादव, प्रदीप और प्रतिभा यादव लिखते हैं, 31 जुलाई का आज सुबह कार्यक्रम काफी अच्छा लगा। साथ ही यादव के झरोके से जो मोहम्मद रफी जी पर केंद्रित था वो काफी खूबसूरत लगा। अपने शायराना अंदाज और दमदार आवाज में इसकी प्रस्तुति महावीर बरघा जी ने की थी, ये बहुत बढ़िया लगी। और ये साथी लिखते हैं कि आकाशवाणी बिलासपुर के सारे कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमें ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। इसी तरह कार्यक्रम सुनते रहे और हमें लिखते रहिए। पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चांपा से ही सावित्री इंगले, कविता देवांगन, विनीता साहू, प्रभा साहू, मंजुलता और सुनीता ध्रुव लिखे हैं। 4 अगस्त को आज सुबह कार्यक्रम में स्तनपान सप्ताह की महत्ता और पावस में पौधारोपण की सार्थक चर्चा उद्घोषक महावीर बरगाह जी ने किया, और उसी दिन सदाबहार नगमे में रूठने मनाने पर शानदार गीतों के संग रोचक बातें भी किया जो मन को भा गई। रसोई में काम करते करते ये कार्यक्रम सुनने में मजा आ गया। सुंदर प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी बिलासपुर परिवार को हार्दिक बधाई। पत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, लेते हैं अगला पत्र जो आया है लोरमी ग्राम चचेड़ी से। कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी लिखते हैं, 1 अगस्त का ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम मीनाक्षी जी द्वारा प्रस्तुत अच्छा लगा। श्रोताओं के द्वारा भेजे गए ईमेल और अधिक से अधिक नाम शामिल कर हमारी पसंद के शानदार गीत सुनाए गए। आकाशवाणी बिलासपुर को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही लिखते हैं कि 3 अगस्त का तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम श्वेता पांडे जी की प्रस्तुति में बहुत पसंद आया, जिसमें गांव शहर के कामकाज के बारे में पूछताछ कर शानदार गीत सुनाए गए। पत्र लिखने के लिए आपको भी धन्यवाद।
0: ये अगला मेल हमें मिला है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी का। लिखते हैं 31 जुलाई को प्रसारित कार्यक्रम गुंजेश्वर गांव के अंतर्गत पौराणिक गाथा राजा मूरत ध्वज के किस्सा सुनाया गया जो बेहद अच्छा लगा। यह गाथा हमें सत्य के मार्ग में चलने को प्रेरित करता है। इसी दिन पत्र पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण हुआ जो कर्ण प्रिय गीतों से सजा था। कार्यक्रम सुनकर मन झूम उठा। सुंदर प्रसारण के लिए आकाशवाणी परिवार को बधाई। आपने पत्र लिखा, हमारे कार्यक्रमों को पसंद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगला पत्र आया है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू का। ये लिखते हैं कि 3 अगस्त को सुबह तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम बहुत पसंद आया। श्रोता मित्रों की पसंद पर बहुत सुंदर मधुर गीत सुनाए गए। अच्छे प्रस्तुति के लिए श्वेता जी को बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं
0: जी।
1: आपको भी पत्र लिखने के लिए धन्यवाद।
0: मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू लिखते हैं, आकाशवाणी बिलासपुर से प्रसारित कार्यक्रम में हमें ईमेल करे गीत सुने चिट्ठी मिली और माटी के स्वर, युवा जगत, ग्राम सभा कार्यक्रम सर्वाधिक पसंद आता है। इन सभी कार्यक्रमों से हमें सीख व प्रेरणा भी मिलती है। सफल प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई। आपने हमें पत्र लिखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बढ़ते हैं अगले पत्र की तरफ जो आया है बिलाईगढ़ से। लिखते हैं रोशन लाल देवांगन
0: जी,
1: रविवार शाम को प्रसारित आप मन के गीत कार्यक्रम बहुत पसंद आया। मधुर छत्तीसगढ़ी गीतों ने कार्यक्रम को बेहद आकर्षक बना दिया। इसके लिए महेंद्र साहू, राजू भैया को हार्दिक धन्यवाद दे रहे हैं
0: जी।
1: साथ ही सोमवार सुबह 10 बजे प्रसारित तुहर गोठ हमर गीत अच्छा लगा, श्वेता पांडे को बधाइयां दे रहे हैं
0: जी।
1: और आकाशवाणी बिलासपुर को ऐसे ही उत्कृष्ट और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के निरंतर प्रसारण की अपेक्षा रखते हैं। तो बिल्कुल आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए, आपको ऐसे ही उत्कृष्ट और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुनाएंगे। पत्र लिखने के लिए धन्यवाद।
0: नांदघाट कातल बोर्ड से भागसी राजपूत, भाग्यश्री, टिकेश्वर, ऋतु राजपूत लिखते हैं, हेलो किसानवाणी में चर्म रोग विशेषज्ञ से बरसात के दिनों में कंदवा रोग, त्वचा में होने वाले चर्म रोग के बारे में सुघर जानकारी डॉक्टर अजय

0: पांडे द्वारा दी गई। ये कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा। साथ ही श्वेता पांडे द्वारा प्रस्तुत तुम्हार गोठ हमर गीत कार्यक्रम और रजनीगंधा की अच्छी प्रस्तुति के लिए अंशुल जी को बधाई दे रहे हैं। आपने हमारे कार्यक्रमों को सुना, हमें पत्र लिखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगला पत्र सिंगारबाड़ी घुटकू से लिखा है। भगत राम पटेल, किशन, सोनम और मानवी पटेल लिखते हैं।
0: जी।
1: 1 अगस्त का सुबह डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम, जो चर्म रोग कारण लक्षण और उपाय पर केंद्रित था, काफी रोचक लगा। 2 अगस्त का छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अच्छा लगा। राजू भैया को बधाइयां दे रहे हैं। साथ ही 3 अगस्त का तुहर गुट हमर गीत कार्यक्रम श्वेता पांडे जी की प्रस्तुति में अच्छा लगा, बधाइयां प्रेषित हो रही है। 4 अगस्त का चौपाल कार्यक्रम, जो आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित किया गया, इसमें जल संरक्षण एवं भूमि संवर्धन विषय पर रोचक जानकारी दी गई, काफी ज्ञानवर्धक लगी। 5 अगस्त का हेलो आपकी पसंद, जिसमें दूर दराज क्षेत्र के फोन कॉल भी आए, वो काफी अच्छे लगे। प्रस्तुतकर्ता को बधाइयां दे रहे हैं। साथ ही आकाशवाणी बिलासपुर को भी सहृदय बधाइयां प्रेषित कर रहे हैं। पत्र लिखने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। अगला मेल लाया है मोनाली जी।
1: जी,
0: ये है सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन सेन और माही सेन का। ये लिखते हैं, 3 अगस्त के आकाशवाणी बिलासपुर से श्वेता जी लेकर आई थी कार्यक्रम तुम्हार गोठ हमर गीत, बहुत अच्छा लगा। 4 अगस्त का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने, अंशुल गुलकारी जी की लाजवाब प्रस्तुति ने मन को मोह लिया। और 5 अगस्त की हेलो आपकी पसंद सुनील चिपड़े जी ने प्रस्तुत किया। ये सभी कार्यक्रम और युवा जगत में महक जी लेकर आई थी स्वास्थ्य की देखभाल की छोटी छोटी बातें। ये सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे कार्यक्रमों को पसंद किया, हमें पत्र लिखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: निमेचंद जी, ये पत्र जी। आया है कतियापारा जुना बिलासपुर से।
0: जी।
1: सुशील दिवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा और आदित्य दिवांगन लिखते हैं।
0: जी।
1: 30 जुलाई को चिट्ठी मिली, कार्यक्रम सुना डॉक्टर सुप्रिया जी और हमारे नए मित्र नेमीचंद जी ने इसको प्रस्तुत किया।
0: जी।
1: शानदार प्रस्तुति के लिए दोनों को हार्दिक बधाइयां दे रहे हैं।
0: जी, धन्यवाद।
1: साथ ही 31 जुलाई का आपकी पसंद कार्यक्रम महावीर बरघा जी की प्रस्तुति में पसंद कर रहे हैं। और 2 अगस्त का माटी के स्वर कार्यक्रम भी इन्होंने पसंद किया है। सुंदर प्रस्तुति के लिए प्रस्तुतकर्ता को ढेरों बधाइयां दी है। 2 अगस्त का ही किसान वाणी कार्यक्रम, जिसमें आप मन के गीत प्रस्तुत किया गया, राजू भैया को शानदार प्रस्तुति के लिए बधाइयां दे रहे हैं। 3 अगस्त का तुहर गोठ हमर गीत श्वेता पांडे जी की प्रस्तुति में। 4 अगस्त का ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम अंशुल गुलकरी जी की प्रस्तुति में। और 5 अगस्त का हेलो आपकी पसंद सुनील चिपड़ा जी की प्रस्तुति में पसंद कर रहे हैं। सुंदर मधुर गीतों के लिए धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। और 5 अगस्त का ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम मदन पांडे जी की प्रस्तुति में भी पसंद कर रहे हैं। साथ ही ये लिखते हैं कि बिलासपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है
0: जी।
1: जिसके कारण कुछ उमस महसूस हो रही है
0: जी।
1: और तबीयत बिगड़ने की आशंका भी हो जाती है, तो आप अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। तो बिल्कुल यही करना है हमें, क्योंकि इस मौसम में बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी है, हमारे आसपास की जगह स्वच्छ रखनी है और सेहत भरा खाना खाना है और मस्त में रहना है। पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। ये जो हमें ईमेल है बहुत दूर से मिला है मोनाली जी।
1: जी,
0: ये है विनेश कुमार रागिनी और मुस्कान बरेली कैंट चनेहटी उत्तर प्रदेश से।
1: जी,
0: लिखते हैं, 30 जुलाई को प्रस्तुत चिट्ठी मिली कार्यक्रम, इन्हें बहुत अच्छा लगा। और 31 जुलाई को महावीर बरघा जी द्वारा आज सुबह और यादव के झरोखे से प्रोग्राम की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी। रजनीगंधा में अंतरा जी ने रफी साहब के कैरियर से लेकर उनके सुपरहिट गीतों के साथ एक अच्छी प्रस्तुति दी। 1 अगस्त को आज सुबह कार्यक्रम से अच्छी जानकारियां मिली, साथ ही सदाबहार गीतों के प्रोग्राम में शानदार गीत सुनने को मिले। रजनीगंधा में मीना कुमारी के करियर पर अच्छी प्रस्तुति सुनने को मिली। 2 अगस्त को डॉक्टर की सलाह में सोशल मीडिया को लेकर एक ज्ञानवर्धक जानकारी मिली। 3 अगस्त को सदाबहार गीतों के कार्यक्रम में गीतों का चयन अच्छा था। 5 अगस्त के रजनीगंधा में काजोल पर बहुत अच्छी प्रस्तुति सुनने को मिली। आप सभी को शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई प्रेषित कर रहे हैं। आपने भी हमारे कार्यक्रमों को बड़े ध्यान से सुना, हमें पत्र भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम

0: सहोदर नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे लिखते हैं।
1: जी
0: 4 अगस्त किशोर कुमार जी के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम जो विविध भारती से प्रसारित किया गया और आकाशवाणी बिलासपुर से अनुप्रसारित किया गया, ये इन्हें काफी पसंद आया। साथ ही ये आकाशवाणी के सारे कार्यक्रम सुनते हैं और पसंद भी करते हैं।
1: अच्छा,
0: पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी अगला मेल आया है मोनाली जी, ग्राम बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति लिखते हैं। 2 अगस्त को प्रसारित ग्राम सभा कार्यक्रम में क्रम आप मन के गीत में श्रोताओं के अधिक से अधिक पत्रों को शामिल कर उनके पसंद पर सुमधुर गीत सुनवाए, हमें बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम की लाजवाब प्रस्तुति के लिए राजू भैया को हार्दिक बधाई प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही 3 जुलाई को प्रसारित लोकप्रिय कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत को हमेशा की तरह अपने दिलकश अंदाज में प्रस्तुत किए श्वेता पांडे जी ने। श्रोताओं, ये कार्यक्रम इन्हें बहुत ही अच्छा लगा, मन को भा गया। आपने भी हमें पत्र भेजा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला मेल आया है देवरी भाटापारा से, गंदुला रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, मयाराम रजक, पुनेश्वर, फानेश्वर, मुकेश कुमार, कुमारी हाविया और कुमारी टानिया रजक।
1: जी
0: ये लिखते हैं, 2 अगस्त का आप मन के गीत कार्यक्रम राजू भैया जी की प्रस्तुति में काफी अच्छा लगा, मनमोहक प्रस्तुति के लिए उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही 3 अगस्त का तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम श्वेता पांडे जी की प्रस्तुति में और 6 अगस्त का माटी के स्वर कार्यक्रम अंतरा चक्रवर्ती जी की प्रस्तुति में पसंद कर रहे हैं और बधाइयां प्रेषित कर रहे हैं। आपको भी पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मोनाली जी, ये हमें मेल मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से, पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन लिखते हैं। 30 जुलाई के गुरुवार के दिन के चिट्ठी मिली कार्यक्रम इमल्ला बड़ सुघर लगी से, जिला सुप्रिया जी और निमिचंदा प्रस्तुत करी से। साथ ही तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम घलो बहुत सुघर लगी से, जिला श्वेता पांडे जी हा प्रस्तुत करी से। और राजू भैया के खेती खार के बड़ सुघर जानकारी संग आप मन के गीत कार्यक्रम सुंदर सुंदर मीठ मीठ बोली के बोलैया हमर मयारू अंतरा चक्रवर्ती औ आरती के संग आकाशवाणी बिलासपुर के जम्मो उद्घोषक भाई बहनी के मुखार विंदले ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम आपकी पसंद कार्यक्रम माटी के स्वर कार्यक्रम गुंजेश्वर गांव के अमराई कार्यक्रम ला सुन के मन ह गदगद हो गे। ऐसन सुघर आनंदमयी प्रस्तुति खातिर आकाशवाणी बिलासपुर परिवार ला अंतस ले मया भरे बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लिखे है ये संगवारी मन।
0: आप मनला भी हम धन्यवाद प्रेषित करत हन। और लेते हैं अगला पत्र जो आया है, रसेडा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति और कुमार डिकेश साहू का। ये लिखते हैं कि 30 जुलाई का चिट्ठी मिली कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, सफल प्रस्तुति के लिए डॉक्टर सुप्रिया दीदी और श्री नेमीचंद साहू जी को बहुत बहुत बधाई। 1 अगस्त का ईमेल करे गीत सुने मीनाक्षी जी की प्रस्तुति में और 2 अगस्त का ईमेल करे गीत सुने आरती जी की प्रस्तुति में काफी पसंद कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। साथ ही 2 अगस्त का ग्राम सभा और आप मन के गीत जिसकी प्रस्तुति राजू भैया जी ने की थी वो भी काफी पसंद कर रहे हैं। 5 अगस्त का ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम मदन पांडे जी की प्रस्तुति में और 6 अगस्त का माटी के स्वर कार्यक्रम अंतरा चक्रवर्ती जी की प्रस्तुति में पसंद कर रहे हैं और आकाशवाणी बिलासपुर को भी बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं। आपको भी पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगला मेल हमें मिला है मोनाली जी, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत, भृगु, विनय ठाकुर, सूरज बारेकर, चोवा राम, नारायण यदु लिखते हैं। हमें 30 जुलाई का चिट्ठी मिली कार्यक्रम बेहद पसंद आया और साथ ही 31 जुलाई को अंतरा जी की रजनीगंधा की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी जो कि महान गायक मोहम्मद रफी जी पर केंद्रित थी। इतनी शानदार पेशकश के लिए अंतरा जी को बहुत बहुत बधाई। 31 जुलाई को महावीर बरगाह जी की यादों के झरोखे से की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी लगी जो रफी साहब पर ही केंद्रित थी। 1 अगस्त को मीनाक्षी जी की रजनीगंधा की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी जो कि अभिनेत्री मीना कुमारी पर केंद्रित थी। 2 अगस्त का ग्राम सभा कार्यक्रम भी पसंद आया जिसमें आप मन के गीत की राजू भैया ने सुंदर प्रस्तुति दी। 2 अगस्त का रजनीगंधा कार्यक्रम जिसे आरती जी ने मित्रता दिवस पर केंद्रित कर पेश किया था बेहद पसंद आया। दोस्ती पर उनकी बातें एवं सुनवाए गए गीत बहुत अच्छे लगे। 4 अगस्त को अंशुल गुलकारी जी की रजनीगंधा की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी लगी। 5 अगस्त को ऐश्वर्य जी की यादों

0: के झरोखे से कार्यक्रम प्रस्तुति भी बहुत अच्छी लगी। 5 अगस्त को मदन पांडे जी की रजनीगंधा की प्रस्तुति भी इन्हें बहुत अच्छी लगी, जो कि अभिनेत्री काजोल पर केंद्रित थी। और 6 अगस्त को यानी आज सुबह अंतरा जी द्वारा पेश किए गए कार्यक्रम आज सुबह और माटी के स्वर इन्हें बेहद पसंद आए हैं। आपने हमारे कार्यक्रमों को बड़े ध्यान से सुना, हमें पत्रों के माध्यम से कार्यक्रमों की समीक्षा लिखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा लिखते हैं, 1 अगस्त का समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह अच्छा लगा। डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा, पंकज मेश्राम एवं आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं। 3 अगस्त का ईमेल करेगी सुने कार्यक्रम और रजनीगंधा जिसकी प्रस्तुति श्वेता पांडे जी की थी काफी अच्छी लगी। 6 अगस्त का सदाबहार नगमे कार्यक्रम और माटी के स्वर कार्यक्रम काफी पसंद आया, साथ ही आपकी पसंद भी ये पसंद कर रहे हैं। खूबसूरत प्रस्तुति के लिए अंतरा चक्रवर्ती एवं आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं। पत्र लिखने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा हाल मुकाम पिंडरा रोड से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल लिखते हैं, अंतरा जी ने वर्षा ऋतु पर आधारित एक से बढ़कर एक सुमधुर सदाबहार गीत प्रस्तुत किए, साथ ही अधिक से अधिक श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल कर उनका सम्मान करते हुए कार्यक्रम को अत्यंत रोचक और आत्मीय बना दिया। अंतरा जी की सहज, मधुर एवं प्रभावशाली प्रस्तुति ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। उनकी उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए हम उन्हें हृदय से बहुत बहुत साधुवाद एवं हार्दिक बधाई प्रेषित करते हैं। आपने भी हमें इतना प्रभावशाली पत्र लिखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगला पत्र आया है इंदिरा चौक तखतपुर से, मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा, विशाल, मानस, चेतन और गंगा देवी विश्वकर्मा जी का। ये लिखते हैं कि 30 जुलाई को हमारे प्रिय नेमीचंद साहू और डॉक्टर दीदी जी द्वारा प्रस्तुत हमारा बेहद पसंदीदा कार्यक्रम चिट्ठी मिली बहुत ही यादगार लगा। नेमीचंद जी को अपने और करीब हमारे प्रिय आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर में पाकर हम बहुत ही आनंदित हुए हैं। तहे दिल से स्वागत और आपका शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और आगे लिखते हैं
0: जी,
1: 31 जुलाई को अंतरा चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा कार्यक्रम इन्हें काफी अच्छा लगा, साथ ही 1 और 2 अगस्त का ईमेल करेगी सुने कार्यक्रम बहुत ही सुंदर लगा, प्रस्तुतकर्ता को बधाइयां दे रहे हैं। 3 अगस्त को श्वेता जी द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा कार्यक्रम काफी मनभावन लगा, इन्हें भी बधाइयां दे रहे हैं। 4 अगस्त का रजनीगंधा अंशुल गुलकरी द्वारा प्रस्तुत काफी गजब का लगा और इन्हें भी बधाई। 5 अगस्त का वीरेंद्र भैया द्वारा प्रस्तुत ग्राम सभा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा, दिल से बधाइयां प्रेषित हो रही है
0: जी।
1: और इस कार्यक्रम के प्रस्तुति और संयोजन के लिए हमारे प्रिय डॉक्टर दीदी को भी बधाइयां दे रहे हैं। इसी दिन रजनीगंधा कार्यक्रम मदन पांडे जी की प्रस्तुति में भी पसंद कर रहे हैं, इनको ये कार्यक्रम मजेदार लगा। तो मजेदार, मनभावक, ऐसी बहुत सी अच्छे अच्छे शब्दों से इन्होंने अपनी दिल की बात यहाँ पे प्रस्तुत की है और सारे प्रस्तुतकर्ता को बधाइयां प्रेषित की है। आपके इन प्यारे शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला मेल मिला है मोनाली जी, रतनपुर सिल्ली निर्धि से नरेंद्र कश्यप, गणेशिया कश्यप, आयुष कश्यप, लीना कश्यप और करण कश्यप का। चिट्ठी मिली कार्यक्रम और माटी के स्वर और सदाबहार नगमों की प्रस्तुति बहुत ही अच्छा लगा, सफल प्रस्तुति के लिए पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई दे रहे हैं। आपने भी पत्र लिखा, हमारे कार्यक्रमों को सुना, हमें पत्र लिखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: निमिचंद जी। और ये एक बहुत ही रंग बिरंगा पत्र हमारे पास आया है
0: जी। जी,
1: ये लिखा है तेलीपारा बिलासपुर से रंजन साहू, छन्नूलाल श्रीवास, सुशील देवांगन, एसएन प्रजापति जी ने
0: जी।
1: इन्होंने हरेली तिहार के पावन पर्व पर समस्त श्रोता भाई बहन एवं आकाशवाणी परिवार को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है
0: जी।
1: इन्होंने बहुत ही प्यारा चित्र निकाला है, रास्ते के बाजू में एक बहुत ही बड़ा वृक्ष और साथ ही गेड़ी का दृश्य इन्होंने बनाया है
0: जी। जी,
1: तो जैसे छोटे बच्चे इस पे चलते हैं और बहुत ही मजे लेते हैं
0: जी। जी,
1: तो इसी मजे को दिखाते हुए इन्होंने ये चित्र हमारे लिए भेजा है
0: जी।
1: साथ ही हमारे कुछ कार्यक्रमों की समीक्षा भी लिख भेजते हैं
0: जी।
1: जैसे 2 अगस्त का ग्राम सभा कार्यक्रम जिसमें आप मन के गीत की प्रस्तुति राजू भैया की थी, इन्होंने काफी पसंद की है
0: जी।
1: 3 अगस्त का तुहर गोट हमर गीत कार्यक्रम श्वेता पांडे जी की प्रस्तुति में
0: जी।
1: 4 अगस्त का ईमेल करे गीत सुने अंशुल गुलकरी जी की प्रस्तुति में, 5 अगस्त का आज सुबह यादों के झरोके से, जिसकी प्रस्तुति ऐश्वर्या जी की थी, और साथ ही हेलो आपकी पसंद

0: सुनील चिपड़ा जी की प्रस्तुति में जी पसंद किया है। 6 अगस्त का माटी के स्वर, सदाबहार नगमे, आपकी पसंद, अंतरा जी की प्रस्तुति में भी पसंद कर रहे हैं। तो ये सारे कार्यक्रम ये पसंद करते हैं और हरेली की शुभकामनाएं भी देते हैं।
1: तो मोनाली जी, हम लोग भी हरेली की शुभकामनाएं दे देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आपने हमें आने वाले हरेली त्योहार के लिए सुंदर ग्रीटिंग्स कार्ड बना के भेजा है, तो आकाशवाणी परिवार की तरफ से भी आपको भी हरेली त्योहार की बहुत बहुत बधाइयां। ये श्रोता है दतरेंगी से, विश्राम यदु, पार्वती यदु और रीना यदु का। ये पोस्ट कार्ड हमें देरी से मिला था, इस कारण हम पिछले कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए थे। इस बार हमने इनका पत्र शामिल कर लिए हैं।
0: जी नेमीचंद जी, हाँ। और एक पत्र है जो हमारे पास काफी देरी से आया है, बेलगहना शक्ति बहरा से, श्याम शंकर मिस्त्री, बाबा विजय पायलट, रागनी गीता देवी, कैलाश चंद्रवती, कुसुम काशीपुरी, राधा पडवार। ये लिखते हैं कि आकाशवाणी बिलासपुर के हम नियमित श्रोता हैं, आपके केंद्र के सभी कार्यक्रम हमें अच्छे लगते हैं और ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद भी लगते हैं। तो ये जान के हमें बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह हमें पत्र लिखते रहिए, हम आपका पत्र जरूर शामिल करेंगे।
1: जी।
0: तो नेमीचंद जी, अब हम अपने श्रोताओं को हमारा मेल आईडी और पता बता देते हैं। मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है पत्र ईमेल bsp@gmail.com और पोस्ट कार्ड का पता है कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी बिलासपुर, पिन कोड है 495006। तो हमें इंतजार रहेगा आपके प्यार भरे पत्रों का। हम फिर मिलेंगे हमारे इसी कार्यक्रम चिट्ठी मिली में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और स्वीकार कीजिए मोनाली
1: और नेमीचंद का नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे अपने पत्रों के जवाब। पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिली में प्रस्तुति थी मोनाली ठाकरे और नेमी चंद की। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कुछ संदेश।

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।

मिलकर साथ में सबको, हर किसी को साथ लाना है, सभी अपराधों को खत्म करने को, बस हमें चेतना जगाना है। महिलाओं पर अत्याचार और बाल मजदूरी, ये सब बस बन जाए इतिहास। नशे की लत और सड़क दुर्घटनाओं से ना हो अब किसी जीवन का नाश।

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। समाचार कुछ ही देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।

0: कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
0: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, यह है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
2: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
3: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल है जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
4: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

0: विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
1: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
2: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
1: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
0: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
3: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
0: 2 दिन का ब्रिक्स वेब्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। ईशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
5: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन

0: आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को पीओजेके में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves Gobardhan scheme to boost clean energy and rural economy. Also gives nod to 4-lane highway project between Guwahati and Tezpur to enhance connectivity in Assam. Lok Sabha clears legislation providing tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Prime Minister Narendra Modi and his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu reaffirm commitment to deepen bilateral ties. India successfully test fires medium-range Agni-4 ballistic missile in Odisha. Centre rejects claims of ethanol blending in aviation turbine fuel. Student protests over recruitment exam issues intensify in Jharkhand and Kerala. And in badminton, Tanvi Sharma, Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj enter women's singles quarterfinals at Korea Masters. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
3: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है
4: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 करोड़ रुपीज टू द national GDP and generate nearly 1.5 lakh employment opportunities across the country.
3: About 1.5 lakh jobs will be created by this.

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था मेरे हमदम मेरे दोस्त। और आइए अब सुनते हैं फिल्म प्यार ही प्यार का गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं और संगीत शंकर जयकिशन का है।

यह अवस्थी मोहम्मद रफीकी और फिल्म का नाम था प्यार ही प्यार। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है खिलौना। शब्द आनंद बख्शी के हैं और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म खिलौना के इस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: यह है विविध भारती। आज की फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे संगीतकार को जो अपने कॉलेज के जमाने में अच्छे क्रिकेटर रहे थे, लेकिन क्रिकेट के मैदान में जाने की बजाय वो आ गए फिल्मी दुनिया के मैदान में और बन गए संगीतकार और निर्देशक। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है जाने माने संगीतकार, निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर विशाल भारद्वाज पर।

0: बच्चा है जी।
1: विशाल भारद्वाज का जन्म हुआ था बिजनौर उत्तर प्रदेश में। उनके पिता राम भारद्वाज एक जाने माने कवि और गीतकार थे। विशाल की शिक्षा दीक्षा हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। अपनी जवानी के दिनों में विशाल भारद्वाज कुछ गुमनाम गजल गायकों के लिए हारमोनियम बजाया करते थे। दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले बहुत सारे फूड फेस्टिवल्स में उन्होंने अपने प्रोग्राम किए। आगे चलकर आरवी पंडित से उनकी जान पहचान हुई और इस तरह से विशाल भारद्वाज एक म्यूजिक कंपनी में आ गए। एक दोस्त ने विशाल भारद्वाज का परिचय जाने माने गीतकार और निर्देशक गुलजार से करवाया।

उसके बाद विशाल ने जंगल बुक, एलिस इन वंडरलैंड और गुच्छे जैसे कई सीरियल्स में गुलजार के लिखे गानों को स्वरबद्ध किया। जंगल बुक का टाइटल गीत तो आपको याद ही होगा, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। ये गाना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। इसके बाद जब गुलजार बना रहे थे फिल्म माचिस, तो बतौर संगीतकार उन्होंने विशाल भारद्वाज को साइन किया। फिल्म माचिस का संगीत एकदम अलग तरह का था, ये एक ताजगी भरा संगीत था। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए, जैसे ये गाना।

इन सभी गानों को सुनकर लगता नहीं है कि किसी नवोदित संगीतकार की रचनाएं हैं ये, और फिर गुलजार के गानों को स्वरबद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। ये बात तो जाने माने संगीतकार राहुल देव बर्मन पहले ही कह चुके थे। जाहिर है कि विशाल भारद्वाज ने कई चुनौतियों के बीच काम करके अपने आप को साबित किया। विशाल भारद्वाज की दूसरी बड़ी फिल्म थी सत्या।

सत्या के बाद विशाल भारद्वाज ने कमल हासन की फिल्म चाची 420 में भी संगीत दिया और कई अलग अलग फिल्में उनकी आईं। लेकिन जिस फिल्म का संगीत ज्यादा लोकप्रिय हुआ और सुना गया वो थी एक बार फिर गुलजार की फिल्म हू तू तू। इस फिल्म का छई चप छई गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ था।

इसके बाद विशाल भारद्वाज ने सोचा कि वो संगीत की दुनिया से फिल्म निर्माण की दुनिया में आ जाएंगे और फिर उन्होंने साल 2002 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था मकड़ी। शबाना आजमी के अभिनय वाली इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण और इसके अलावा संगीत, ये सारी जिम्मेदारियां खुद विशाल भारद्वाज ने संभाली थी। इसके बाद वो फिल्मी दुनिया में बाकायदा चले आए और उनकी निर्देशित पहली बड़ी फिल्म कहलाई मकबूल। मकबूल के बाद विशाल भारद्वाज ने एक और फिल्म का निर्माण

किया, ये बच्चों की फिल्म थी और रस्किन बॉन्ड की कहानी पर आधारित थी। ये फिल्म थी द ब्लू अम्ब्रेला। इसके बाद विशाल भारद्वाज ने एक धमाकेदार फिल्म बनाई, ये फिल्म थी ओंकारा।

इस दौरान विशाल भारद्वाज का संगीत देने का काम लगातार जारी रहा और उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में आईं, जैसे लव के लिए कुछ भी करेगा।

विशाल भारद्वाज के बारे में आगे बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली में पढ़ाई के दिनों में विशाल भारद्वाज की मित्र बनी रेखा, जो अब उनकी पत्नी और फिल्मी दुनिया की एक जानी मानी गायिका हैं। रेखा भारद्वाज की आवाज में सुनिए ओमकारा फिल्म का।

विशाल भारद्वाज की फिल्में बड़ी अनूठी हुआ करती हैं। वो फिल्मी दुनिया के सामान्य चलन से अलग हटकर अपनी फिल्में पेश करते हैं। जैसे फिल्म कमीने एक अलग तरह की कहानी थी और इसका संगीत भी अपने आप में बिल्कुल अलग था।

आपको बताएं कि विशाल एक अच्छे गायक भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विशाल कितनी बहुमुखी प्रतिभा है। एक तरफ संगीत देते हैं, दूसरी तरफ कथा पटकथा संवाद लिखते हैं, निर्माण निर्देशन भी करते हैं और गायक भी हैं। जी हाँ, फिल्म यू मी और हम का ये गाना सुनिए।

अमिताभ बच्चन की अभिनय वाली फिल्म निशब्द की कहानी विशाल भारद्वाज ने तैयार किए थे। फिल्म हाले दिल का ये शीर्षक गीत सुनिए, कमाल का गाना है ये और विशाल भारद्वाज की प्रतिभा को अच्छी तरह से दर्शाता है।

0: अब विशाल भारद्वाज निर्माता भी बन चुके हैं और अपनी कंपनी के जरिए नई प्रतिभाओं को उतार रहे हैं। जैसे कि विशाल भारद्वाज ने बतौर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म बनाई है इश्किया। फिल्म इश्किया के गाने भी गुलजार ने ही लिखे हैं और इनका संगीत खुद विशाल ने तैयार किया। जरा इब्ने बतूता सुनिए।
1: इब्ने बतूता

विशाल भारद्वाज अपने खास तरह के सिनेमा के लिए और अपने खास तरह के संगीत के लिए जाने जाते हैं। साल 2011 में वो लेकर आए फिल्म सात खून मां।

साल 2013 की शुरुआत विशाल भारद्वाज ने की अपनी एक दिलचस्प फिल्म के जरिए, जिसका नाम था मटरू की बिजली का मंडोला। इस फिल्म का ये दिलचस्प गाना सुनिए, विशाल भारद्वाज की जीवन संगिनी रेखा भारद्वाज ने।

0: विशाल भारद्वाज लेकर आए एक बड़ी ही चर्चित फिल्म जिसका नाम है एक थी डायन। विशाल भारद्वाज अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। आज उनकी गिनती हिंदी फिल्म उद्योग के संवेदनशील निर्देशकों में होती है। साल 2014 में विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर की कृति हेमलेट पर बनाई अपनी फिल्म हैदर 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते।
1: बिस्मिल

विशाल भारद्वाज की एक और फिल्म आई डेढ़ इश्किया, जो इश्किया का सीक्वल है। आपको बता दें कि इन दोनों ही फिल्मों के निर्देशक अभिषेक चौबे, निर्माता विशाल भारद्वाज, संगीत भी विशाल का ही।

विशाल भारद्वाज एक संगीतकार होने के साथ साथ एक निर्माता, निर्देशक और लेखक भी हैं। पिछले दिनों उन्होंने फिल्म तलवार का निर्माण भी किया और इसकी कहानी भी तैयार की। आपको बता दें, फिल्म तलवार का निर्देशन जाने माने शायर, निर्माता, निर्देशक और लेखक गुलजार की बेटी मेघना गुलजार ने किया था और फिल्म तलवार ने कई महत्वपूर्ण पुरस्कार हासिल किए थे। पिछले दिनों आई निशिकांत कामत की फिल्म दृश्यम में विशाल भारद्वाज ने संगीत दिया था। इसके अलावा फिल्म जुगनी में विशाल भारद्वाज ने ये गीत गाया था।

विशाल भारद्वाज बहुत ज्यादा फिल्मों में संगीत नहीं देते। आजकल वो उन फिल्मों का संगीत निर्देशन कर रहे हैं जिन्हें या तो उन्होंने प्रोड्यूस किया है या फिर उनका निर्देशन उन्होंने किया है। लेकिन पिछले दिनों एक फिल्म में उन्होंने कुछ गाने बनाए। ये फिल्म थी मदारी। विशाल भारद्वाज प्रोडक्शंस की एक महत्वपूर्ण फिल्म पिछले दिनों आई और वो फिल्म थी रंगून। टपके टपके

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक, लेखक और संगीतकार विशाल भारद्वाज पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। सुन ले ए महबूब, मेरी दुनिया को तेरे साथ की जरूरत है, मेरी आंखों को तेरी एक नजर का इंतजार, और मेरे दिल को विश्वास है तेरे सहारे का। जब तन्हाइयां मेरा दामन थाम लेंगी तो तेरी यादें मेरे साथ चलती रहेंगी। जब जिंदगी की राहें मुश्किल हो जाएंगी तो तेरी मोहब्बत मेरा हौसला बन जाएगी। मुझे दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, बस तेरे दिल में एक छोटी सी जगह मिल जाए, यही मेरा ख्वाब है।

इस दिल का क्या करूं जो हर पल तुम्हारा ही नाम लेता है। बहुत दिनों से अपने जज्बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब खामोशी मेरा साथ नहीं देती। पहली बार प्रेम पत्र लिखा है मैंने। अगर मेरी बातें तुम्हें नागवार गुजरे तो इसे नादान दिल की भूल समझकर माफ कर देना। बस इतनी सी इल्तिजा है तुझसे कि तू बस नाराज ना होना।

जिस राह पर तुम बढ़ोगे उस राह की हर आहट में मुझे ही पाओगे। हमारी जिंदगियां अब दो नहीं रही, एक ही धड़कन की दो सदाएं बन चुकी है। तुम्हारे दिल की हर अनकही बात मेरी नजरें कब की पढ़ चुकी हैं। अब लफ्जों की जरूरत नहीं, खामोशियां ही जुबा बन गई है। अब लफ्जों की जरूरत नहीं, खामोशियां ही जुबा बन गई है। तेरी मोहब्बत ही अब मेरी दास्तां बन गई है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। आज न जाने क्यों ये खामोश रात भी मुझसे कुछ कह रही है। हवा की हर सरगोशी में जैसे तुम्हारा ही नाम सुनाई देता है। दिल की धड़कनें भी कोई अनजान सा नगमा गुनगुना रही है जिसे सिर्फ मेरा दिल ही समझ पा रहा है। ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत ने बिना दस्तक दिए मेरे दिल में अपना आशियाना बना लिया हो। अब हर खामोशी में एक मीठी सी आहट है, हर तन्हाई में तुम्हारा एहसास। शायद इसी अनकहे एहसास का नाम मोहब्बत है।

आज न जाने क्यों ये होठ यूं ही गुनगुनाए जा रहे हैं। दिल में जो राज बरसों छिपा कर रखा था, लगता है अब आंखें उसे ही बयां कर देंगी। डर ये है कि कहीं मेरी मुस्कान सबको मेरी मोहब्बत का पता ना बता दे। अजीब सी बात है, इस एहसास में मिठास भी है और एक मीठी सी चुभन भी। लगता है इस दिल ने प्यार का ऐसा जाम पिया है जिसमें शहद भी घुला है और जहर भी। अब खुदा ही जाने ये राज मेरे दिल में रहेगा या मेरी धड़कनों की जुबां बनकर सबके सामने आ जाएगा।

जब भी बदरा घेर आते हैं, दिल में एक गड़गड़ाहट सी होती है। बिजली की हर चमक मेरे दिल को और बेचैन कर जाती है। ऐसे मौसम में दिल कहता है, काश साजन की

बाहों का सहारा मिल जाए। फिर ना बरसात की बूंदों का डर, ना गरजते बादलों का, उसे एक पल में सारी दुनिया से मिट जाए। बस धड़कनों की सरगम हो, बारिश की रुंझुन हो और साजन का साथ। शायद मोहब्बत का सबसे हसीन मौसम वही होता है जब बरसात बाहर भी बरस रही हो और दिल के अंदर।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।

0: राजा गोरी चोरी चोरी
1: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। रात के 11 बजने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
3: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में

एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और

0: 5. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu has debunked the claim stating that the government plans to blend ethanol with aviation turbine fuel ATF are completely false and irresponsible. He said ethanol and sustainable aviation fuel are entirely different and should not be conflated. And that is the end of this news bulletin.
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय रात के 11:10 हुए हैं। अब हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।